दोस्तों, आज का विचार, अपनी सुबह को शिकायतों से नहीं, शुक्रिया से शुरू कीजिए। शुक्रिया इस बात का कि हम जागे हैं, शुक्रिया कि हमारे पास आज का एक और दिन है, शुक्रिया उन लोगों का जो हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में हमारे साथ हैं, और शुक्रिया उस जीवन का जो हर दिन हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है।

अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आज सुबह कुछ मिनट प्रकृति के साथ बिताइए। बालकनी में खड़े हो जाइए, खिड़की खोलिए, आसमां को देखिए। अगर आसपास पेड़ हैं तो उनकी हरियाली को महसूस कीजिए, हवा को महसूस कीजिए। सच में प्रकृति के पास हमारे मन को शांत करने की एक अद्भुत क्षमता है। सुबह की हवा जैसे कहती है, थोड़ा धीरे चलो, जिंदगी को सिर्फ हासिल मत करो, उसे महसूस भी करो।

दोस्तों, धीरे धीरे भोर बहुत ही खूबसूरत और सुहानी हो चुकी है। तो मुस्कुराइए, दिल से कहिए आज का दिन मेरा है, मैं इसे खुशी, उम्मीद और सकारात्मकता के साथ जीऊंगा। इसी खूबसूरत विचार के साथ आपसे विदा लेने का समय हो गया है। फिलहाल अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ देर बाद यानी समाचारों के बाद 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे विजय सिंह। 6:45 पर श्री रामचरितमानस गान के अंतर्गत आप सुनेंगे अयोध्या कांड।

7:10 पर गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 7:30 पर कार्यक्रम होगा सवेरे। देश विदेश की खबरें आप सुनेंगे दिन हिंदी में सुबह 8 बजे और अंग्रेजी में 8:15। 8:30 उर्दू में समाचार होंगे। आठ बजकर 45 मिनट पर म्यूजिकल दिल्लगी कार्यक्रम होगा, जिसमें आप स्वच्छता, भोजन, स्वास्थ्य, युवा वर्ग, रोड सेफ्टी जैसे विषयों पर बात सुनेंगे। प्रस्तुत करेंगे विजय सिंह। इसी कार्यक्रम को फिर से 9:10 पर सुनवाया जाएगा। पेश करेंगी कुसुम लता। सुबह 9:30 प्रायोजित कार्यक्रम वतन का रंग प्रसारित किया जाएगा। 10:10 पर विश्व दर्पण कार्यक्रम और 10:20 पर वर्ल्ड न्यूज कार्यक्रम होगा। 10:30 पर आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स रिक्वेस्ट पर आधारित कार्यक्रम। कार्यक्रम को होस्ट करेंगी कुसुम लता।

ग्यारह बजकर 10 मिनट पर कार्यक्रम आज के मेहमान में हमारी मेहमान होंगी इमानी कल्याणी लक्ष्मी नारायण और पद्मिनी पशुमर्थी। बारह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी। इसमें हमारी आज की फिल्म रहेगी 1978 की फिल्म अखियों के झरोके से। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे आशीष बग्गा। तो ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले एफएम गोल्ड पर कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को है अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाईयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवाद हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृति और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानारती नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आरना सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का यह पहला अमेरिकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमेरिका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइड्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉस्मिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। वियतनाम के फान थिएट में स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फाइनल में जापान के यामातो सुएओका और नाओकी ताजिमा की जोड़ी को 6-1, 7-6 से हराया।

100.1 आकाशवाणी गोल्ड, विजय सिंह नमस्कार कहता है आप सबको। प्रातः के इन पवित्र क्षणों में अर्पण लेकर प्रस्तुत हूं मैं। खुद पर विश्वास रखें, आज का दिन आपका है और आपकी लगन आपको आपके हर सपने के करीब ले जाएगी।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

सुबह उठकर ईश्वर को इस खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद दें। जब आपकी सोच सकारात्मक होती है तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल बन जाते हैं।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर विजय सिंह आपके साथ अर्पण लेकर आप सुन रहे हैं अर्पण विजय सिंह के साथ, और हम गुरबाणी का एक शब्द सुनेंगे इस विचार के साथ कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपका दिन कितना बड़ा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसकी शुरुआत कितनी सकारात्मकता और उत्साह से करते हैं। हर नया सवेरा बीते कल की चिंता छोड़ नए लक्ष्य, नई ऊर्जा और असीम संभावनाओं के साथ आगे बढ़ने का अवसर लेकर आता है।

अर्पण के सफर की अंतिम प्रस्तुति के रूप में श्रुति साडोलीकर द्वारा गाया ये प्यारा सा रचना सुनिए, भजन गुरबाणी में से लिया गया है।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में जैसा राजा दशरथ ने चाहा था सुमंत्र सफल नहीं हुए।

शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगरवासियों के लिए उन्होंने विनय पूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

0: 6:55 होने को हैं। आइए सुनते हैं समाचार। संस्कृत में होंगे पहले, फिर हिंदी और अंग्रेजी में, उसके बाद पुनः आपसे मुलाकात होगी।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने का संकल्प दोहराया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल शुरू हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास का संकल्प दोहराया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी चिंता जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल ब्रिक्स नेताओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी, एक लय, कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह पुस्तकालय का अवलोकन भी करेंगे। गृह मंत्री एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों के निरीक्षण के बाद जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियानों के कमांडर को पद से हटा दिया है। साथ ही ईरान के साथ लगी शलाम सीमा चौकी को एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस बीच हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के तटवर्ती इलाकों में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बढ़त हासिल कर ली है। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की आशंका है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मौजूदा विजेता श्रीलंका से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। 7 बार का विजेता भारत ग्रुप में सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रहा। वहीं श्रीलंका ने भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। अलीना रैबाकिना ने अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रैबाकिना ने बेलारूस की आरेना सबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रैबाकिना का यह पहला अमरीकी ओपन खिताब है, जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने इसी वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी जीता था। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव का मुकाबला अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Today is the second and final day of the BRICS summit. The two-day summit began yesterday at Bharat Mandapam in New Delhi. The BRICS

चला जा रहा है। हमने समाचार भी सुन लिए, उससे पहले हमने भक्ति संगीत से रचे हुए कार्यक्रम में हमने भजन भी सुने, गुरबाणी का भी श्रवण किया, रामचरितमानस का श्रवण किया। और अब हम दिन जैसे जैसे ढल बन आगे बढ़ता जा रहा है और अपने उरूज पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो हमारे दिमागों में कई ख्याल और कई सवाल आ रहे होंगे कि आज हमें दिन में क्या करना है, कहाँ जाना है और क्या क्या काम करने हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मौसम पर भी निर्भर करती हैं, तो मौसम के बारे में वैसे तो आप समाचार सुन ही रहे थे, हमारी दिल्ली में तो धूप भी रहेगी और बारिश की संभावना भी रहेगी, दोनों चीज़ें एक साथ रहेंगी, तो देखें क्या होता है। फिलहाल तो गोल्ड सुप्रभात में हमारी कामना यही रहती है कि आपका दिन की शुरुआत अच्छी हो, और अच्छी शुरुआत के लिए अगर कुछ अच्छा संगीत सुनने को मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। विजय सिंह आपके साथ आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर लेकर आया है गोल्ड सुप्रभात।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: दिन की योजना बनाएं, बिल्कुल दिन की योजना जरूर बनाएं और उस पर अमल भी करें, लेकिन ट्रैफिक एडवाइजरी वगैरह देख लीजिएगा। हमने अपनी थोड़ी देर पहले विज्ञापन के द्वारा भी ये बात कही है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में नई दिल्ली में हैं और महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी चल रही है, ब्रिक्स के तहत बातचीत चल रही है और सुरक्षा के इंतज़ाम उसी हिसाब से, आखिर हमारे भारत देश की बात है तो उस हिसाब से बहुत चाक चौबंद है। इसलिए रास्तों में कहीं कहीं आपको अपना रूट बदलने के लिए कहा जाएगा, तो उस हिसाब से थोड़ा सा देख कर चलें। पहले से अगर आप फ़ोन वगैरह करके पता कर लेंगे, अखबारों में भी इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, तो आप उस हिसाब से अपने जाने का रूट तय करें। जाए ज़रूर, रास्ता बदलें मंजिल नहीं, बहुत अच्छा कहा गया विज्ञापन में। और तैयारी करते हुए, दिन के बारे में सोचते हुए अच्छे अच्छे गाने सुने। लो जी, एक गाना आप

एक प्यारा सा गाना और सुनेंगे, थोड़ा सा एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं ज्ञानेंद्र पति की। ट्राम में एक याद में एक हिस्सा है, कोलकाता को लेकर उन्होंने लिखा है। उतना ही शोर है इस शहर में, वैसा ही ट्रैफिक जाम है, भीड़ भाड़ धक्का मुक्का ठेल पेल तामझाम है, ट्यूब रेल बन रही चल रही ट्राम है, विकल है कोलकाता, कलकत्ता लिखा है, दौड़ता अविरम अनवरत अविराम है। इस महावन में फिर भी एक गौरैये की जगह खाली है, एक छोटी चिड़िया से एक नन्ही पत्ती से सूनी डाली है, महानगर के महाटहास में एक हंसी कम है, विराट धक धक में एक धड़कन कम है, कोरस में एक कंठ कम है, तुम्हारे दो तलवे जितनी जगह लेते उतनी जगह खाली है, वहां उगी है घास, वहां चुई है ओस, वहां किसी ने निगाह तक नहीं डाली है। इस महानगर में और इस पूरी दुनिया में चाहे जितना मर्जी जो कुछ हो, लेकिन हमारी अपनी एक जगह है, वो जगह हमें हमारे महत्व की याद दिलाती है। और जीवन के सफर में चलते जाएं अपने महत्व को ध्यान में रखते हुए।

0: अभी तक हम गोल्ड सुप्रभात सुन रहे थे और हमने संगीत गीत संगीत का आनंद लिया। देश दुनिया की खबरों के लिए अब हम वापस समाचार सेवा प्रभाग की ओर चलते हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और आज मेरा साथ दे रही है मेरी सहयोगी रेनू कटारिया। नमस्कार रेनू।
1: नमस्कार फरहत एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क।
0: जी बिल्कुल, आज के इस अंक में बहुत कुछ होगा, खास देश और दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी और मौसम का हाल जानेंगे और इतिहास के पन्नों को पलटेंगे।

0: रेनू और अंत में कुछ जानी मानी शख्सियतों को भी हम याद करेंगे.
1: यस एंड दिस इज लेट मी टेल आवर लिसनर्स वंस अगेन दैट दिस इज द 13th ऑफ सितंबर एंड वी हैव सो मच इन स्टोर. सो प्लीज पे अटेंशन, बी इन योर बेड्स विद योर कप ऑफ टीज बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल संडे मॉर्निंग एंड वी आर बिगनिंग विद आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे.
0: बिल्कुल, और अपनी श्रोताओं को हम बता दें कि आज ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन है. ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था. सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया. ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया. उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया. भारत चौथी बार इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है. आज के कार्यक्रम के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र.
2: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे. ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम. इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे. यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण. दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: And Farhad, we have a report by Jigyasa Pandey on Prime Minister Narendra Modi's bilateral meetings with the leaders of the BRICS countries, which was held yesterday. So let's listen in.
3: Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping have reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of BRICS summit, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since their last meeting in Tianjin in August last year. The two leaders expressed commitment to a fair, responsible and mutually acceptable resolution of the boundary question, proceeding from the political perspective of their overall bilateral relations and their long-term interests of the two peoples. The two leaders agreed that both sides must continue to expand common ground on regional and global issues and in addressing challenges. Earlier in the day, Prime Minister Modi met his Ethiopian counterpart Dr. Abiy Ahmed Ali, Malaysian counterpart Anwar Ibrahim and Vietnamese counterpart Lee Minh Hung. The leaders reviewed cooperation in trade, defense and security, people-to-people ties and also covered regional and global issues. Mr. Modi also held talks with Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Both sides reiterated the importance of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership and agreed and also welcomed the UAE's International Holding Company's planned $11.5 billion investment in an integrated greenfield aluminium project in Odisha. With BRICS Team's report, Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल मुंबई का 3 दिन का दौरा शुरू किया. इस दौरान वे मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जाएंगे और हिंदी पर केंद्रित 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भी शामिल होंगे. श्री शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे.
1: इंडिया विल गेट अनदर वेपन एंड मिसाइल टेस्टिंग रेंज इन बंगाल्स जोनपुर कोस्टल विलेज इन पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट. वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर सुवेंदु अधिकारी हैज अप्रूव Defense Research and Development Organization's proposal, that is DRDO's proposal, to set up weapon and missile testing range in the state. The Chief Minister said this will be a big project for West Bengal's development. The proposed testing range in Jaunpur will be the third major hub for DRDO after the Chandipur sites in Odisha and the proposed testing center in Andhra. India has one missile testing facility known as the Integrated Test Range, which operates across two launch complexes in Odisha. The proposed Jaunpur range, located approximately 70 kilometers along the Bay of Bengal from Chandipur, will share the workload of the Odisha testing range and will give a boost to the country's defense testing capabilities.
0: और रेणु नेपाल में जिस तरीके से त्रासदी आई थी वहां पर अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है
4: जी।
0: और बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांव में भारी तबाही मचाई थी।

0: To you, Farhad, what do we have from the rest of the three metros, that is दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता?
1: जी रेनू, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से। ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिशकियन की बेटी जहरा फिजिशकियन ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और ब्रिक्स बाजार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देखा। इस संग्रहालय में भारत के प्रधानमंत्री और देश पर उनके प्रभाव की झलक मिलती है। साथ ही जहरा फिजिशकियन ने महिला और बाल विकास राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ हस्तकला संग्रहालय में आयोजित ब्रिक्स बाजार का भी भ्रमण किया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में शेख सराय में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बनाने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को परियोजना का निर्माण कार्य 2 वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य दिया है। और अब मुंबई चलते हैं, बात करते हैं गणेश आरोग्य चा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा परिकल्पित श्री गणेश आरोग्य चा अभियान 2026 गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में 14 से 25 सितम्बर तक पूरे महाराष्ट्र में चलाया जाएगा। इस पहल का आयोजन मुख्यमंत्री सचिवालय के अंतर्गत कार्यरत मुख्यमंत्री राहत कोष प्रकोष्ठ और धर्मार्थ अस्पताल प्रकोष्ठ द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों में विभिन्न प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी। वहीं बृहन्मुंबई नगर निगम ने इस वर्ष के श्री गणेश उत्सव के लिए अपने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मोदक महोत्सव 2026 का आयोजन किया है। मुंबई वासी इन महिला समूहों द्वारा तैयार किए गए ताजे भाप में पकाए गए और तले हुए मोदक ऑर्डर कर सकेंगे। बीएमसी की सीमा में रहने वाले नागरिक shgeshop.com पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण कराने वालों के लिए मोदक की होम डिलीवरी 14 सितंबर से शुरू होगी और ये सेवा केवल मुंबई में ही उपलब्ध होगी। और अब बढ़ते हैं आगे, कोलकाता का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राज्य को मछली और मांस पर बहस करने के बजाय रोजगार और निवेश पर ध्यान देना चाहिए। कल कोलकाता के केस्टोपुर में गणेश पूजा के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग और निवेश की कमी के कारण प्रतिभाशाली छात्र राज्य छोड़कर अन्य राज्यों और देशों में जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि विभिन्न मौजूदा मुद्दों पर प्रकाश उन्होंने डाला और इस मामले में जन जागरूकता और सार्थक बहस की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निवेश लाने और रोजगार सृजित करने पर गंभीरता से विचार किए बिना केवल गणेश पूजा का आयोजन करना पर्याप्त नहीं है।
0: एंड देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज फरहत, व्हिच आई हैव फ्रॉम बेंगलुरु मेट्रो। सी कैंप नेशनल बायो एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटिशन फाइनलिस्ट वर अनाउंस्ड इन बेंगलुरु। ओवर 3,200 competitors from across 34 states and union territories had taken part in the competition. As part of the exercise, 15 startups and 4 student teams were declared the winners of this 9th edition of the competition. The winning startups received over 35 crore rupees cash prizes, while the student teams secured 4 lakh rupees in cash prizes. The winners declared will receive mentorship and handholding support from the industry leaders. They will work on solutions in the areas of next-gen cancer pathology, screening kidney injury through quantum sensing, biopolymer-based in-situ bone regeneration, affordable insulin patch pumps, frugal surgery resources and training platforms for low-resource surgery settings, compact grey water treatment appliances for home use, satellite imagery embedded smart spraying of agri inputs in farms and bioformulations to enhance soil health. So this is all that is happening in Bengaluru Metro.
1: और श्रोताओ, आइए मौसम का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज बारिश की संभावना है यहाँ पर और दोपहर तक मौसम बदल सकता है। न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मुंबई की अगर बात की जाए तो वहां पर भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में भी बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
0: एंड चेन्नई विल हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाइल द मैक्सिमम इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु विल हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 21 डिग्री सेल्सियस, व्हाइल द मैक्सिमम मे रीच 32 डिग्री degrees Celsius. And Hyderabad will also have

0: Likely partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The minimum temperature will be around 24 degrees Celsius, while the maximum may reach up to 31 degrees Celsius.
1: और रेनू इतिहास के पन्नों की अगर बात की जाए तो 13 सितंबर की तारीख कई महत्वपूर्ण घटनाओं, राजनीतिक बदलावों और चर्चित शख्सियतों के जन्म और निधन के लिए दर्ज है। इसी दिन भारत में हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय की कार्रवाई से लेकर दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों तक कई अहम घटनाएं हुई।
0: जी बिल्कुल। सो बिगनिंग विद द ईयर 1788, ऑन 13th ऑफ सितंबर न्यूयॉर्क सिटी बिकेम द टेम्पररी यूएस कैपिटल। द कांग्रेस ऑफ द कन्फेडरेशन डेजिग्नेटेड न्यूयॉर्क सिटी as the national capital and authorized the first national election. In 1814, on this day, bombardment of Fort McHenry was during the War of 1812. The British bombardment inspired Francis Scott Key to write what became the Star-Spangled Banner. In 1948, Margaret Chase Smith made history. She was elected to the US Senate, becoming the first woman to serve in both the US House and Senate.
1: बिल्कुल। और सन 2000 की बात की जाए तो भारत के विश्वनाथन आनंद ने शेनयान में पहले फिडे शतरंज विश्व कप जीतने का नाम जो है वो दर्ज करवाया, और 2006 में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के त्रिगुटीय संगठन इप्सा का पहला शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में शुरू हुआ।
0: एंड यू वर टॉकिंग अबाउट हैदराबाद integration into India, Farhad.
1: Ji.
0: That happened in the year 1948 on this day when the Indian forces began Operation Polo, leading to the incorporation of the princely state of Hyderabad into the Indian Union. In 1971, on this day, Attica prison uprising ended. A police and National Guard assault ended the four-day uprising at Attica Correctional Facility in New York, where 32 inmates and 11 hostages were killed.
1: और सन 2007 की अगर बात की जाए तो नासा के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से करीब 3 गुना बड़े ग्रह की खोज की। वहीं 2008 में दिल्ली में महज 30 मिनट के भीतर 3 स्थानों पर 5 बम विस्फोट हुए। इन धमाकों में 19 लोगों की मौत हुई थी और 90 से अधिक लोग घायल हुए थे।
0: एंड टॉकिंग अबाउट सुपर मारियो ब्रदर्स, आवर लिसनर्स आर श्योरली अवेयर ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। दिस वाज रिलीज्ड इन जापान इन द ईयर 1985। द निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम गेम लॉन्च द ह्यूजली इन्फ्लुएंशियल सुपर मारियो प्लेटफॉर्म गेम सीरीज ऑन द 13th ऑफ सितंबर। In 1993, Oslo Accord signed, Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin and PLO Chairman Yasser Arafat shook hands at the White House after signing an agreement providing for limited Palestinian self-government. In 1997, on this day, it was Mother Teresa's funeral day. A state funeral was held in Kolkata, India, following her death earlier that month. Another important day today, in the year 2007, UN adopts Indigenous Rights Declaration. The United Nations General Assembly adopted the Declaration on the Rights of the Indigenous People, and 2010 में आज के दिन राफेल नडाल completed the career Grand Slam. Nadal defeated Novak Djokovic to win the US Open, becoming one of the few men to win all 4 major singles titles. So this is also another Sunday wherein the US Open final is going to take place.
1: जी रेनू, और अब अंत में हम कुछ जानी मानी शख्सियतों को याद करेंगे, क्योंकि आखिरी सेगमेंट हमारा इसीलिए होता है कि जहां पर हम प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले फेयर लिस्ट में कौन है?
0: आप पहले गाना सुनिए, फिर मैं बताती हूँ।

0: और श्रोताओं, अब हम बात कर रहे हैं परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय मेजर रामास्वामी परमेश्वरन की। जी हाँ, इन्हें आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 13 सितंबर 1946 और शहादत हुई 25 नवंबर 1987 में। हम बात करते हैं ऑपरेशन पवन की, जो 1987 से 1990 तक श्रीलंका में चला, जिसमें भारतीय सेना के वीर मेजर रामास्वामी ने शांति विरोधी तत्वों के हाथों अपने प्राण गंवाए और इसके लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
1: यस, एंड टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रॉयल्ड डाल, हु वाज अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, poet, screenwriter and fighter pilot. His books have sold more than 250 million copies worldwide. Dahl was born in the Wales to Norwegian immigrant parents and he served in the Royal Air Force during the Second World War. He rose to prominence as a writer in the 1940s with works for children and for adults, and he became one of the world's best-selling authors, and he's also been referred to as one of the greatest storytellers for children of the 20th century. And his main works include Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The Witches, Fantastic Mr. Fox, The Twits and George's Marvelous Medicine. But here, Farhat, we will be listening to a dialogue between Matilda and her father from the movie Matilda, You're Too Smart.
2: The first car your brilliant father sold cost $320. I sold it for $1,158. The second one cost $512. I sold it for $2,269. What was my profit for the day?
3: Can you repeat the last one?
4: $10,206.
2: You're a little cheat. You saw the paper.
4: I'm all the way over here.
2: If you're being smart with me, young lady, you're going to be punished.
4: Punished for being smart?
2: When a person is bad, that person has to be taught a lesson.
5: Harry Wormwood had unintentionally given his daughter the first practical advice she could use, that children could punish their parents.
1: So this is how stories were created by Roald Dahl, and beautiful movies. If our listeners want to watch and if their kids also want to watch, please do so.
0: और अब हम याद कर रहे हैं भारत की किराना घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका प्रभा अत्रे को, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ। शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाना उनका सपना था। उनका मानना था कि इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। किराना घराने की सशक्त हस्ताक्षर स्वर योगिनी प्रभा अत्रे को संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा इन्होंने 11 पुस्तकें एक चरण में ही जारी की, जिसका उन्हें विश्व रिकॉर्ड भी प्राप्त है।

एंड ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट मलकीत सिंह, जिनका आज बर्थडे है, हु इज अ पंजाबी भांगड़ा सिंगर. सिंह वॉज द फर्स्ट पंजाबी सिंगर टू बी ऑनर्ड विद एन MBE बाय Queen Elizabeth II at Buckingham Palace. And MBE means, for all our listeners, Member of the Order of the British Empire, a British civilian honor awarded for significant community or public service. और उनके बहुत सारे गाने हैं जो आपने जरूर सुने होंगे, जैसे गुर नाल इश्क मिठा, तूतक तूतक तूतियां. But here we're going to listen to a beautiful, beautiful song, which is where Malkit is talking about mothers as such.

0: और श्रोताओं, अब हम बात कर रहे हैं भारतीय हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार और अपने समय के ख्याति प्राप्त शायर अनजान की। इनका वास्तविक नाम था लालजी पांडे और 1966 में आई फिल्म बहारे फिर आएंगी का गीत हसीन रुख पर सभी लोगों को आज भी दिल छू लेता है। और मोहम्मद रफी की आवाज में क्यों ना रेनू इस गीत को सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: फरत, अगर आप ऐसे ही गाने सुनवाएंगे तो आई वुड लव टू टेल आवर लिसनर्स कि आज संडे है, प्लीज़ आज अनजान के गाने ज़रूर सुनिए. इतने प्यारे गाने हैं, क्यों ना आज हम संडे अपनी कॉफ़ी और चाय और पकौड़ों के साथ सिर्फ अनजान के गाने सुनते हुए निकालें.
1: बिल्कुल. और एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, क्योंकि अमिताभ बच्चन पर फिल्म आए गए, उनके गीत काफ़ी लोकप्रिय भी हुए थे. 1981 में आई फिल्म याराना का ये गीत भी अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं. जी.

0: और इसके अलावा उनकी फिल्म दाता जो है वो काफी लोकप्रिय रही और उनका जो गीत है ना रेनू वो काफी प्रचलित रहा शादियों में। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है।
1: ओ या।

और श्रोताओं, वक्त तो चला है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आज भारतीय अभिनेत्री महिमा चौधरी का भी जन्मदिन है और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म परदेश से। तो इस फिल्म से भी ये गीत सुन लेते हैं।

0: बिल्कुल, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया
1: जी बिल्कुल. एंड डियर लिसनर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब संडे. नमस्कार.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया. मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी.

0: कीना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
3: I would like to say that the outcome document,
4: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov

0: www.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
4: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
5: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आर्यना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़ेमिन की जोड़ी ने ATP टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
0: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने की

0: बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्ता के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता, साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी, 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद, जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी, कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी, डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार, एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा। आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें, हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास, रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा, संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, ब्रिक्स लीडर्स कंडेम 2025 पहलगाम टेरर अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर, कॉल फॉर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ऑल्सो एक्सप्रेस कंसर्न ओवर एस्केलेशन ऑफ टेंशंस इन वेस्ट एशिया। Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi today on sidelines of BRICS summit. West Bengal government approves DRDO's proposal to set up weapon and missile testing range in Purva Medinipur district of the state.

0: ब्रिक्स रहनुमाओं ने अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। एक मुश्तरका बयान में ब्रिक्स रहनुमाओं ने दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अख्तियार करने की अपील की और हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने के इलाकाई इत्तेहाद के अज़्म का इरादा किया। ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के पहले दिन मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किए गए नई दिल्ली एलानिया में कहा गया कि हर किस्म की दहशतगर्दी मुजरिमाना अमल और नाकाबिल कबूल है, ख्वाह इसके महरकात कुछ भी रहे हों और ये कार्रवाई किसी ने भी की हो। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: नई दिल्ली एलामिया में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है, जिसमें 26 अफराद हलाक और कई दिगर जख्मी हुए थे। बाद में इस हमले का ताल्लुक पाकिस्तान के पुश बनाने वाले और तरबियत हासिल करने वाले दहशतगर्दों से बताया गया। एलामिया में दहशतगर्दों की सरहद पार नकल व हरकत, दहशतगर्दी की माली मदद और दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम करने के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया है। ब्रिक्स रहनुमाओं ने रुकन मुल्कों पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी को यकीनी बनाएं और दहशतगर्दी से निपटने में दोहरे मेयार को मुस्तरद कर दें। रहनुमाओं ने अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से नामजद तमाम दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मरबूत कार्रवाई का भी मुतालबा किया। मुश्तरका एलामिया में मगरबी एशिया में कशीदगी मुसलसल इजाफे पर भी तश्वीश का इजहार किया गया और ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करने के साथ ऐसे इकदामात से गुरेज करने की अपील की गई जो हालात को मजीद खराब कर सकते हैं। एलामिया में कहा गया कि ब्रिक्स ममालिक बातचीत और सिफारतकारी के जरिए तवील मुद्दती मुफाहमत पैदा करने की कोशिशें बढ़ाएंगे ताकि खित्ते में देरपामन सलामती और इस्तेहकाम को फरोग दिया सके। ब्रिक्स रहनुमाओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि काबिल इतलाब अल-अक़वामी कानून के मुताबिक आलमी तजारत सप्लाई चेन और तवानाई की मुसलसल और बिला रुकावट फराहमी को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। ब्रिक्स इत्तेहाद ने दुनिया के कई हिस्सों में जारी तनाजात और आलमी निज़ाम में मौजूदा दौर में बढ़ते इख्तलाफात और धड़ेबंदी की सूरतहाल पर भी तश्वीश का इजहार किया। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अपने खिताब में कहा कि नई दिल्ली एलामिया रुकन ममालिक के लिए मुश्तरका अज़्म की वाज़ह सिमत का तायुन करता है। उन्होंने कहा कि ये अब इन रुकन ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो इन अजायम को नतायज में तब्दील करें।
2: बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के तसलसल और निफाज का मैकेनिज्म जारी रखने की तजवीज पेश की ताकि हर साल सदारत की तब्दीली के बावजूद ग्रुप की इदारा जाती रफ्तार बरकरार रह सके। उन्होंने कहा कि यह मैकेनिज्म सैरुखी इश्तराक के जरिए सभी इकदामात और माहसल पर अमल आवरी जारी रखने के काबिल बनाएगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: आज ब्रिक्स सरबरा मीटिंग का दूसरा और आखिरी दिन है। दो रोजा सरबरा मीटिंग का आगाज कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। सरबरा मीटिंग के पहले ही दिन ब्रिक्स ममालिक ने नई दिल्ली एलामिया 2026 को मंजूरी दी। रहनुमाओं ने पिछले बरस 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमले के सख्त अल्फाज में शदीद मजम्मत की और हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने के अपने अज़्म का इरादा किया। भारत चौथी मरतबा ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: आज ब्रिक्स के रुकन ममालिक और शराकत दार ममालिक मजबूत इख्तरा ताउन और पायदार तरक्की का क्याम जामे आलमी तरक्की के लिए मुस्तकबिल की तश्कील के मौजू पर मुनक़िद होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। ब्रिक्स के 10 शराकतदार ममालिक में बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं। इजलास के अख्ताम के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और ब्रोंडी के सदूर के साथ दो तरफा मीटिंगें करेंगे। वो नाइजीरिया और युगांडा के नायब सदूर के साथ भी मीटिंग करेंगे। ये सरबराह मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत मुनक्किद की जा रही है।

0: नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग ने इस बात का यादा किया कि भारत और चीन को अपने बाहमी ताल्लुकात और इख्तलाफात के बारे में हिकमत अमली पर मबनी और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र इख्तियार करना चाहिए और इख्तलाफात को तनाज़ात में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर कल दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली दोतरफा मीटिंग में दोनों ने पिछले साल अगस्त में टिनजिन में होने वाली अपनी पिछली मुलाकात के बाद भारत और चीन के दोतरफा ताल्लुकात में होने वाली मुसलसल पेशरफ का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि दोनों ममालिक को इलाकाई और आलमी उमूर पर मुश्तरका नुकात को मुसलसल वसत देनी चाहिए और मुख्तलिफ चैलेंजों से निमटने के लिए भी बाहमी तआवुन जारी रखना चाहिए। इससे कबल दिन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स ममालिक के रहनुमाओं के साथ कई दो तरफा मीटिंगें कीं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इथियोपिया के अपने हमनसब डॉक्टर आबे अहमद अली, मलेशिया के अपने हमनसब अनवर इब्राहिम और वियतनाम के अपने हमनसब ली मिन हंग के साथ भी मीटिंग की। जनाब मोदी ने अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अनहियान के साथ भी बातचीत की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल शाम ब्रिक्स रहनुमाओं के एजाज में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दिए गए इशाइये के दौरान एक खसूसी सकाफती प्रोग्राम नोरस मुश्तरका जज्बात की कायनात पेश किया गया। इस सकाफती प्रोग्राम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई सकाफत भी पेश की गई, जिसमें ब्रिक्स के रुकन और शराकतदार ममालिक के मौसीकारों ने एक मुनफरद मुश्तरका मौसीकी प्रोग्राम में हिस्सा लिया।

ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत को मगरबी बंगाल के मशरक़ी मेदिनीपुर ज़िले के साहिली गांव जुनपुट में एक और हथियारों और मिज़ाइलों के तजुर्बे के लिए आजमाइशी रेंज मिलने जा रही है। मगरबी बंगाल के वज़ीर-ए-आला शुभेंदु अधिकारी ने रियासत में दिफाई तहकीक और तरक्की के इदारे DRDO की जानिब से हथियारों और मिज़ाइलों का तजुर्बाती मरकज़ कायम करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि यह मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा। जुनपुट में मुजव्वजा आजमाइशी रेंज, ओडिशा के चांदीपुर में मौजूद तजुर्बाती मरकज़ और आंध्र प्रदेश में तजुर्बाती मरकज़ के बाद DRDO का तीसरा बड़ा मरकज़ होगा। भारत में इस वक्त मिज़ाइलों की आजमाइश के लिए एक अहम मरकज़ मौजूद है जिसे मरबूत आजमाइशी रेंज कहा जाता है। ये ओडिशा में मौजूद दो लॉन्च कॉम्प्लेक्स के जरिए काम करता है। जुनपुट में मुजव्वजा आजमाइशी रेंज खलीज बंगाल के रास्ते चांदीपुर से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ होगी। ये नया मरकज़ ओडिशा के तजुर्बाती मरकज़ के काम का बोझ कम करेगा और मुल्क की दिफाई टेक्नोलॉजी और हथियारों के आजमाइश की सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज गुजरात खित्ते के मुख्तलिफ मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि मध्य प्रदेश, मगरबी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में आज दिन में मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं महकमा मौसमियात ने साहिली आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, सिक्किम और शुमाल मशरक़ी भारत के हिस्सों में भी आज दिन में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। वहीं महकमा मौसमियात ने कौमी राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिन के दौरान बहुत हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। नेपाल में अचानक आने वाले सैलाब की वजह से हलाकतों की तादाद 1386 हो गई है। कुदरती आफात से निपटने की कौमी अथॉरिटी के मुताबिक अब तक बरामद होने वाली 104 लाशों को शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। तकरीबन 5130 अफराद अब भी लापता हैं। अब तक 13700 अफराद को बचा लिया गया है जबकि 339 अफराद जेर इलाज हैं। तलाश और बचाव कार्रवाई अब भी जारी है। त्रियासना, रसुआ, नोवाकोट और धारडिंग ज़िलों में 3700 से ज्यादा अफराद आर्जी पनाह गाहों में मुकीम हैं। गुज़िश्ता महीने की 26 तारीख को नेपाल तिब्बत सरहद के नज़दीक बर्फ़ानी तोदे गिरने से आने वाले सैलाब ने शुमाली और वस्ती नेपाल के कस्बों और देहातों को तबाह कर दिया था। इराक ने मायसन सूबे की फौजी कार्रवाइयों के कमांडर को बरतरफ कर दिया है और ईरान के साथ अपनी शलमचे सरहद क्रॉसिंग को आर्जी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों के बाद जाँच के दौरान ये कार्रवाई की गई। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि इन हमलों की शुरुआत इराक से हुई है, तहम सऊदी अरब ने कोई

0: जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला किया था। टेनिस में एलिना रायबाकीना ने यूएस ओपन के खवातीन के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। रायबाकीना ने कल शाम न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अरीना सबालेंका को 6-4, 5-7 और 6-2 से शिकस्त दी। इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद ये रायबाकीना का पहला यूएस ओपन खिताब और करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। इस जीत के साथ ही रायबाकीना WTA आलमी रैंकिंग में सबालेंका को हटाकर आलमी नंबर एक बन गई हैं। खवातीन के T20 एशिया कप क्रिकेट फाइनल में आज भारत का मुकाबला दिफाई चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये खिताबी मुकाबला भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। 7 मरतबा की चैंपियन भारतीय टीम बिना कोई मैच हारे फाइनल में पहुंची है और सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से शिकस्त देने से पहले वो 3 फुतूहात के साथ ग्रुप ए में सरफहरिस्त रही। वहीं श्रीलंका भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त देने से पहले अपने 3 ग्रुप मैच जीतकर फाइनल में पहुंची है। मर्दों के क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 बैन अलावी मैचों की सीरीज का आगाज करेगा। सीरीज का पहला मैच आज शाम 7 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा T20 मैच मंगल के रोज जबकि तीसरा मैच जुमेरात को होगा। सभी तीनों मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने ब्रिक्स सरबराह इजलास के दौरान ब्रिक्स एलामिया को मंजूर किए जाने की खबर को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए पेश किया गया ब्रिक्स का नई दिल्ली एलामिया इत्तेफाकी राय से मंजूर, बैन अलाक्वामी अमन सलामती को फरोग देने के लिए मजबूत आलमी इकदाम पर जोर। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीन के सदर के साथ मुलाकात की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, ब्रिक्स समिट में शी जिनपिंग की शिरकत से भारत चीन तालुकात में बेहतरी की उम्मीद। ब्रिक्स सरबराह इजलास के मौके पर रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग और ईरान के सदर मसूद पजश्कियान के भारत इन्वेस्ट नुमाइश के दौरे की खबर को सुर्खी बनाया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर में 2025 पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अपनाने का मुतालबा किया है। इसके अलावा मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और ब्रुंडी के सुदूर के साथ दोतरफा मुलाकातें करेंगे। मगरबी बंगाल हुकूमत ने DRDO की जानिब से रियासत के मशरकी मेदिनीपुर जिले में हथियारों और मिजाइलों की आजमाइश के लिए तजुर्बाती मरकज कायम करने की तजवीज को मंजूरी दी है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज गुजरात में बहुत शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और न्यूयॉर्क में US ओपन टेनिस में कजाकिस्तान की एलिना रायबाकीना ने बेलारूस की अरियाना सबालेंका को हराकर खवातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।

रविवार की सुबह और सुबह का दिन से ऐसा नाता कि पता नहीं चल रहा है कि सुबह कब ख़त्म हो रही है और दिन कब चढ़ रहा है, और नींद खुली नहीं है, बहुत सारे काम बाकी हैं और दिन देखते देखते हाथ से निकल जाएगा, है ना। और होमवर्क कई सारे हैं। एक होमवर्क तो हमें समाचार सेवा प्रभाग से मिल गया, सुबह 7:30 बजे के समय में जब मैं उनकी खबरें सुन रहा था तो उन्होंने अनजान के गाने सुनने के लिए कह दिया, बस पकौड़े खाओ।

और गाने सुनो अनजान के। हो सकता है उन्होंने किसी वेबसाइट पर उनसे जुड़ा दिन देख लिया हो। बहुत सारी वेबसाइट्स आज के दिन बताती हैं कि आज के दिन उनका इस दुनिया से जाना हुआ था, और बहुत सी वेबसाइट्स 3 सितंबर बताती हैं। खैर जो भी हो, अनजान साहब ने गीत तो बहुत ही प्यारे लिखे थे, और अमिताभ बच्चन के साथ तो उनकी जोड़ी खास तौर पर उनकी फिल्मों के लिए, खई के पान बनारस वाला एकदम से याद आता है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने 2 होमवर्क दिए थे, अनजान के गाने भी सुनने और पकौड़े भी खाने। तो 5 समोसे तो मैं नीचे खा के आ गया था जी, गाना तो कम से कम 1 सुनवा सकता हूँ ना। तो ये गीत मुझे बड़ा प्यारा लगा, अनजान साहब का लिखा हुआ और महेंद्र कपूर और उषा खन्ना का गाया हुआ ये गाना, कंगन फिल्म से। आप भी सुनो और संडे मनाओ। ये कहने की जरूरत है कि ये म्यूजिकल दिल लगी है विजय सिंह के साथ, FM गोल्ड 100.1 MHz आकाशवाणी का चैनल।

बस जी, हमारी आपकी पृथ्वी बालपन की बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन क्या करें, 9 बजे तक मेरे को वाइंड अप भी करना और फिर इतनी सारी बातें आपसे करनी थी, और कुछ बातें बहुत जरूरी सुनानी भी तो है ना आपको।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: देखो जी, अब क्या बताएं, टाइम ऐसे भाग रहा है, समझ नहीं आ रहा आपसे कितनी बात करें और कितनी छोड़ दें, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपना ख्याल ज़रूर रखें और आज रात को इम्पोर्टेंट मैच है ना, हमारी एशिया कप फाइनल में हमारी महिला क्रिकेट टीम का मुकाबला श्रीलंका के साथ है और 2020 का ये एशिया कप ज़रूर देखें और उससे पहले अपने सारे काम खत्म करके रखें ताकि मैच आराम से देख सकें। फिर कल का दिन जो है वो भाग दौड़ वाला शुरू हो जाएगा, बहुत सारे काम हैं और फेस्टिविटीज़ भी, हमारी उत्सव धर्मिता का देश है हमारा और ऐसी चीज़ें साथ साथ शुरू होती चली जाती हैं। खैर, तो आप बिज़ी रहेंगे बहुत ज़्यादा, हम भी बिज़ी रहेंगे, हम तो हमेशा ही बिज़ी रहते हैं आपके लिए, हमें और कोई काम नहीं है आपको अपनी बातें से बोर करना, नहीं नहीं कुछ काम की बातें भी करते हैं हम और कुछ गाने बड़े अच्छे अच्छे सुनवाते हैं, वो हमें भी पसंद आते हैं तो आपको भी पसंद आएंगे ना। तो ये साहब बड़ा प्यारा एक गीत किशोर दा और लता मंगेशकर की आवाज़ में, बहुत सुंदर सा गीत आपके लिए आखिरी पेशकश के रूप में इस हिस्से में छोड़े जा रहा हूँ। इसके बाद जब हम समाचार सुनकर वापस आएंगे तो 2 in 1 यानी कुसुम और लता दोनों मिलकर एक कुसुम लता 9 से 12 बजे तक आपके साथ रहेंगे। पराया धन फिल्म का ये गाना किशोरदा, आनंद बख्शी द्वारा लिखित, आर डी बर्मन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक है। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन से अलग कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल भारत मंडपम में रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी, एक लय, कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में एक और हथियार तथा मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी परियोजना होगी। ये उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद संगठन का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश इसे आगामी क्षेत्रीय बैठक में अन्य खाड़ी देशों के समक्ष रखने की योजना बना रहे हैं। इसके अंतर्गत खाड़ी में प्रवेश मार्ग पूरी तरह से ईरानी क्षेत्रीय जल सीमा के भीतर होगा। इसके निकास मार्ग का एक हिस्सा भी ईरानी नियंत्रण में होगा। इसके लागू हो जाने से जलमार्ग का दक्षिणी मार्ग बंद हो जाएगा। ये अमरीका की मांगों का सीधा विरोध है। ईरान के अधिकारियों ने कहा कि समझौते का मतलब ये नहीं है कि होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोला जा रहा है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। एलिना रायबाकीना ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। रायबाकीना के ये पहला अमरीकी ओपन खिताब और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्पुस्की ने जर्मनी के केविन क्राइविट्स और टिम पुइट्स को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़िवरेव का सामना अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा और भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉजमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर के डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. BRICS leaders have condemned the April 2025 Pahalgam terrorist attack in Jammu and Kashmir. In a joint statement, BRICS leaders have called for zero tolerance towards terrorism, reaffirming the regional bloc's commitment to combating terrorism in all its forms. The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the opening day of the summit, said that all acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation and who committed such an act. The declaration condemned in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April 2025, during which 26 people were killed and many more injured. The joint declaration also expressed deep concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. Today is the second and final day of the BRICS summit. Our correspondent has filed this report.
4: Today, BRICS member and partner countries will participate in the session based on resilience, innovation, cooperation and sustainability, shaping the future for inclusive global growth. The 10 partner countries are Belarus, Bolivia, Kazakhstan,

सुरीला सा सफर, सुरीली सी डगर, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं स्कल दिल्ली के इस सफर पर अब मैं हूँ आपके साथ कुसुम और लता। जी कुसुम, साथियों रविवार यानी छुट्टी का दिन कितना खुशनुमा एहसास देता है ना। आराम से उठो, धीरे धीरे सिप सिप करके चाय पियो। कितनी हसरत से हम इसकी राह देखते हैं, सोम मंगल बुध वीर दिन और पल गिनते हैं। जब भी बात चलती है मनचाहा कुछ करने की तो

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2020.

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष की। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर साल 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। ये एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य 2 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण करना है ताकि वे बीमारियों से बचे रहें और परिवार निरोगी और खुशहाल बने, है ना।

साथियों, खुशी के खुमार का महीना है, त्यौहार का महीना है, यानी उल्लास का महीना है। इसी महीने जहां महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत और खास त्यौहार हरतालिका तीज मनाई जाती है, तो वहीं गणेश उत्सव की भी शुरुआत अक्सर इसी महीने से होती है। तो कल 14 सितंबर को एक महा संयोग बन रहा है जिसमें हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी एक ही दिन मनाई जाएगी। जी हाँ, उदया काल में तृतीया तिथि होने से हरतालिका तीज व्रत इसी दिन मनाया जाएगा और दोपहर के समय चतुर्थी तिथि होने से इसी दिन गणेश चतुर्थी का भी पर्व मनाया जाएगा। जी हाँ, जिसमें गणपति बप्पा की स्थापना की जाएगी। तो चलिए, इस महत्वपूर्ण त्यौहार को मनाने की हम भी तैयारी करते हैं।

0: इसी गीत के साथ ही मैं इस कल दिल्ली की यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 पर दिल का मेल बॉक्स लेकर मैं कुसुम एक बार फिर से आपके साथ रहूंगी। फिलहाल अब आपके लिए FM गोल्ड पर है प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि पंडित हरिभाव उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 24 मार्च। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जमशेदपुर झारखंड से सुमित कुमार मिश्रा और रिंकी राय। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

कुछ आवाजें केवल मनोरंजन का साधन भर नहीं होती, वो भीतर उतरती हैं और मन के किसी शांत कोने में दीपक की तरह जलती रहती हैं। कुछ स्वर केवल संगीत नहीं होते, वो प्रार्थना बनकर उठते हैं और आत्मा तक पहुंचते हैं। कर्नाटक संगीत के आकाश में गूंजते एक ऐसे ही स्वर का नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी। एक ऐसा स्वर जिसमें भक्ति की निर्मलता थी, शास्त्रीय संगीत की गहराई थी और भारतीय संस्कृति की आत्मा का स्पंदन था। जैसे भोर की पहली किरण मंदिर के शिखर को छूकर वातावरण में पवित्र उजास भर देती है, वैसे ही MS सुब्बुलक्ष्मी के कंठ से निकले स्वर सुनने वालों के अंतर मन को पवित्र और प्रकाशित कर देते हैं। उनके लिए राग केवल सुरों का अनुशासन नहीं था, वो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग था। और गायन केवल कला नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति। कर्नाटक संगीत की इस महान साधिका ने अपनी आवाज के माध्यम से देश की सीमाओं को पार किया और भारतीय संगीत की गरिमा को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। वो केवल एक महान गायिका ही नहीं थी, बल्कि भारतीय संगीत, संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवतावादी चेतना की सजीव प्रतीक थी। उन्होंने ईश्वर प्रदत्त अपनी गंधर्व वाणी को कभी व्यावसायिक लिप्सा का साधन नहीं बनने दिया। उन्होंने संगीत को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग, समाज कल्याण के माध्यम और विश्व मंच पर भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को स्थापित करने वाले सशक्त माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया।

मिस सुबुलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर सन 1916 को तमिलनाडु के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर मदुरई में हुआ। उनकी माताजी का नाम षणमुखा वदिवु था। वो एक प्रतिष्ठित और निपुण वीणा वादक थीं। इस तरह सुबुलक्ष्मी का पूरा नाम मदुरई षणमुखा वदिवु सुबुलक्ष्मी हुआ। उनके पिता सुब्रमण्य अय्यर एक वकील थे। एमएस सुबुलक्ष्मी के व्यक्तित्व और कलात्मक विकास पर उनकी माताजी और मदुरई के संगीतमय वातावरण की अमिट छाप पड़ी। उनका बचपन मीनाक्षी मंदिर की गलियों में नादस्वरम की धुनों, मंदिरों के भजनों और उनकी माताजी द्वारा बजाई जाने वाली वीणा की झनकार के मध्य व्यतीत हुआ। संगीत उन्हें किसी औपचारिक कक्षा से अधिक अपनी पारिवारिक परंपरा और घर के वातावरण से संस्कार के रूप में प्राप्त हुआ। उनकी माताजी ने बचपन में ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था और बहुत कम उम्र में उन्हें वीणा और कर्नाटक गायकी का कठोर अभ्यास कराना आरंभ कर दिया था। उन्होंने संगीत के पितामह कहे जाने वाले सीमंगुडी श्रीनिवास अय्यर से कर्नाटक गायकी के गूढ़ तत्वों को ग्रहण किया। संगीत के प्रति उनकी लगन इतनी अधिक थी कि उन्होंने केवल कर्नाटक संगीत तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि पंडित नारायण राव व्यास से उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बारीकियां भी सीखीं तथा भारत के संगीत जगत में एक दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह स्थापित हो गईं।

मिसेस सुबोलक्ष्मी ने बहुत कम उम्र में ही मंचीय प्रस्तुतियां आरंभ कर दी थीं और शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ और आम श्रोता सभी उनकी प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित थे। उनकी विशेषता थी कि वो स्वर, ताल और लय की पूर्ण शुद्धता के साथ कठिन रागों को गाया करती थीं। यही कारण है कि सुनने वालों को ये अंदाजा हो चुका था कि एक महान गायिका का उदय हो चुका है। इस तरह उनकी रिकॉर्डिंग और प्रस्तुतियों का सिलसिला चल पड़ा। उन्होंने मलयाली से लेकर पंजाबी तक भारत की अनेक भाषाओं में गीत रिकॉर्ड किए। सन 1940 में उनका विवाह प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्राम सेनानी, राष्ट्रवादी पत्रकार और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के निकट सहयोगी के सदाशिवम के साथ संपन्न हुआ। सदाशिवम के साथ परिणय सूत्र में बंधने के बाद एमएस सुबोलक्ष्मी के जीवन को एक नया वातावरण मिला। सदाशिवम केवल उनके जीवन साथी नहीं थे, बल्कि उनके सांस्कृतिक और सामाजिक अभियानों के मुख्य मार्गदर्शक भी थे। इस विवाह ने एमएस सुबोलक्ष्मी को सीधे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, महात्मा गांधी के विचारों और तत्कालीन नेताओं के संपर्क में लाकर खड़ा कर दिया। उनका घर स्वतंत्रता संग्राम के रणनीतिकारों और शीर्ष कलाकारों की आवाजाही का केंद्र बन गया। एक कलाकार के रूप में एमएस सुबोलक्ष्मी की सबसे बड़ी विशेषता थी श्रुति शुद्धम, यानी स्वर की निरपेक्ष शुद्धता, और साहित्य भाव, यानी शब्दों के भाव की अंतरात्मा से अभिव्यक्ति। उनके गायन में अलौकिक तन्मयता थी। वो सीधे सुनने वालों के हृदय में प्रवेश कर जाती थीं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की कठिन रचनाओं को क्लिष्टता के बंधन से मुक्त कर उसे आम जनमानस के लिए भक्ति का सुगम मार्ग बना दिया।

एक्ट्रेस सुबुलक्ष्मी के दिव्य स्वर ने भक्ति संगीत को व्यापक तौर पर लोकप्रिय बनाया। उन्होंने दक्षिण भारत के संत कवि अलवार और नायनार के संकीर्तन से लेकर उत्तर भारत के संत कवियों की रचनाओं को देश भर में घर घर तक पहुंचाया। एम एस सुबुलक्ष्मी

ने फिल्मों में भी अभिनय किया। इनमें सबसे यादगार है सन 1945 में आई फिल्म मीरा। इसमें उन्होंने मीरा की भूमिका निभाई तथा कई मधुर मीरा के पद गाए। उनके स्वर माधुर्य ने पूरे देश को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। इस तरह उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की भाषाई और सांस्कृतिक सीमाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया। उनके गाए भक्ति संगीत की सूची में ऐसी कई रचनाएं हैं जो कालजयी हैं। उनके द्वारा किया गया विष्णु सहस्रनाम का सस्वर पाठ केवल एक संगीतमय प्रस्तुति नहीं बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभूति है। उनकी आवाज में वेंकटेश सुप्रभातम भी एक अनमोल सांस्कृतिक धरोहर है।

एमएस सुबुलक्ष्मी ने आंध्र प्रदेश के महान संत कवि अन्नमाचार्य की रचनाओं को गाकर उसे व्यापक लोकप्रियता दिलाई और जब जगतगुरु आदि शंकराचार्य रचित वैराग्य और भक्ति से परिपूर्ण स्रोत भज गोविंदम को एमएस सुबुलक्ष्मी ने स्वर और भाव प्रदान किया तो जैसे हर मन इस ज्ञान के आलोक से प्रकाशित हो उठा।

0: एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने कई वैश्विक मंचों पर भारत के समृद्ध शास्त्रीय संगीत की ध्वजा फहराई और पश्चिमी दुनिया को भारतीय संगीत के आध्यात्मिक और शास्त्रीय वैविध्य से परिचित करवाया। उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में सबसे ऐतिहासिक और अविस्मरणीय क्षण 23 अक्टूबर सन 1966 का था, जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी दिव्य प्रस्तुति दी। इस सभा में गाने वाली वो पहली भारतीय कलाकार थीं। ये वो दौर था जब पूरा विश्व शीत युद्ध के तनाव से गुजर रहा था। इस कार्यक्रम में अपनी तमाम प्रस्तुतियों के बाद उन्होंने विशेष प्रार्थना गाई, मैत्रीम भजता। ये केवल एक गीत नहीं था, ये पूरे विश्व के लिए भारत का शाश्वत शांति संदेश था, जिसमें सबके हृदय को जीतने वाले मैत्री भाव की स्थापना का आह्वान था।
1: मैत्री भजता अखिल जेत्रे, मैत्री भजता अखिल।

एमएस सुबुलक्ष्मी का नाम उन चुनिंदा कलाकारों की सूची में शामिल है जिन्होंने अपनी कला से अर्जित अधिकांश धन समाज कल्याण के लिए दान कर दिया। बताया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 200 चैरिटी कॉन्सर्ट किए। वो एक विलक्षण कलाकार थीं। यही कारण है कि उनके समय के दिग्गज कलाकारों ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने उन्हें सुस्वर लक्ष्मी कहा। किशोरी अमोनकर ने उन्हें संगीत का आठवां सुर कहा और स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने उन्हें तपस्विनी कहा। महात्मा गांधी भी उनके बड़े प्रशंसक थे। गांधी जी के 78वें जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली में एक प्रार्थना सभा रखी गई थी। गांधी जी ने अपनी इच्छा जताई कि वो इस दिन एमएस सुब्बुलक्ष्मी के स्वर में मीराबाई का भजन हरि तुम हरो जन की भीड़ सुनना चाहते हैं। जब ये संदेश चेन्नई पहुंचा तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी ने विनम्रतापूर्वक संदेश भिजवाया कि उन्हें ये भजन पूरी तरह याद नहीं है और इतनी जल्दी इसे गाकर वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगी। गांधी जी को ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि यदि वो इसे केवल बोल भी दें तो भी वो मुझे किसी अन्य के गायन से अधिक शांति और आनंद देगा। गांधी जी के इन शब्दों को सुनकर एमएस सुब्बुलक्ष्मी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने तुरंत ये भजन सीखा और रिकॉर्ड किया और 2 अक्टूबर की सुबह ये भजन दिल्ली पहुंचाया गया और प्रार्थना सभा में बजा। लेकिन ये भी कैसा संयोग था कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई। उस समय ऑल इंडिया रेडियो ने इस दुखद समाचार की सूचना देने के तुरंत बाद एमएस सुब्बुलक्ष्मी द्वारा गाया गया यही भजन प्रसारित किया।

एमएस सुबुलक्ष्मी एक विलक्षण कलाकार थीं। यही कारण है कि उन्हें अनेक पुरस्कारों से विभूषित किया गया। कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च सम्मान संगीत कलानिधि प्राप्त करने वाली वो पहली महिला कलाकार हैं। वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतज्ञ हैं। इसके साथ ही भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली वो पहली संगीतज्ञ हैं। संगीत जगत को अपने अनगिनत गीतों की अनमोल विरासत सौंपकर 11 दिसंबर सन 2004 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी विलक्षण स्वर साधिका को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज।

संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, एमएस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है WATANKARAAG@gmail.com और RADIOAZADHIND@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन से अलग कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के

0: सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में हथियार तथा मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगी। यह उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। ईरान और ओमान हॉर्मुज जलडमरू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश इसे आगामी क्षेत्रीय बैठक में अन्य खाड़ी देशों के समक्ष रखने की योजना बना रहे हैं। योजना के अंतर्गत खाड़ी में प्रवेश मार्ग पूरी तरह से ईरानी क्षेत्रीय जलसीमा के भीतर होगा। इसके निकास मार्ग का हिस्सा भी ईरानी नियंत्रण में होगा। ईरान के अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा रहा है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। उधर टेनिस में एलेना रायबाकिना ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। रायबाकिना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्पुस्की ने जर्मनी के केविन क्रार्वेटेस और टिम पुइट्स को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का सामना अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला बृहस्पतिवार को होगा। सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. BRICS leaders have condemned the April 2025 Pahalgam terrorist attack in Jammu and Kashmir. In a joint statement, BRICS leaders have called for zero tolerance towards terrorism, reaffirming the regional bloc's commitment to combating terrorism in all its forms. The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the opening day of the summit, said that all acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation and who committed such an act. The declaration condemned in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April 2025, during which 26 people were killed and many more injured. The joint declaration also expressed deep concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. Today is the second and final day of the BRICS summit. Our correspondent has filed this report.
3: Today, BRICS member and partner countries will participate in the session based on resilience, innovation, cooperation and sustainability, shaping the future for inclusive global growth. The 10 partner countries are Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan and Vietnam. After the conclusion of the session, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi. He will also hold meetings with vice presidents of Nigeria and Uganda. The summit is being held under India's BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With Dipendra Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah has paid tribute to freedom fighter Jatindranath Das on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Shah said that even at a young age, Jatindranath Das

0: Satyendranath Das chose the path of struggle against British rule. The tortures of jail could not shake his resolve. The minister said that his hunger strike in protest against the inhuman treatment of freedom fighters in jail stands as an example of patriotism and indomitable courage. India will get another weapon and missile testing range in Bengal's Jonpur coastal village in Purba Medinipur district. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has approved Defence Research and Development Organisation's proposal to set up weapon and missile testing range in the state. The Chief Minister said this will be a big project for West Bengal's development. Iran and Oman have agreed on new entry and exit shipping routes for the Strait of Hormuz, which they plan to present to other Gulf nations at an upcoming regional meeting. A report.
1: Under this new plan, the entry route into the Gulf will sit entirely within Iranian territorial waters, and a section of the exit route will also fall under Iranian control. Once this new system starts operating, the waterway's southern route will be closed, directly opposing the United States' demands to keep it open. Furthermore, Iranian official emphasized that this agreement does not mean that the Strait of Hormuz is being reopened. Iran has set 7 conditions for the US before the waterway can open. Iran's foreign ministry spokesperson Ismail Baghai announced that Gulf littoral states' foreign ministers are scheduled to meet in Oman tomorrow to exchange views on regional issues. Vishal Kumar, Akashvani News, Delhi.
0: In tennis, Kazakhstan's Elena Rybakina defeated Belarusian Arina Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 to win US Open Women's Singles Final at Arthur Ashe Stadium in New York last night. This is Rybakina's first US Open title and her third career Grand Slam championship following her Australian Open victory earlier in the year. With the win, Rybakina officially takes over the WTA World No. 1 ranking from Sabalenka. The men's singles final will be played between Germany's world number 2 Alexander Zverev and local favourite Ben Shelton in New York tonight. The match is scheduled to begin at 11:30 p.m. Indian time. And the India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places in Gujarat today. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall conditions over Madhya Pradesh, West Madhya Pradesh, Saurashtra and Kutch during the day. Meanwhile, in the national capital, very light to light rainfall is expected during the next 3 days. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ईरान और ओमान हुर्मुज जल डमरू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हुए। सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों के बाद इराक ने सैन्य कमांडर को बर्खास्त किया। एलिना रायबाकीना ने आरियाना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज बेन शेल्टन का सामना अलेक्जेंडर ज़वरेव से और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई न बर्दाश्त करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
3: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद

0: आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश इसे आगामी क्षेत्रीय बैठक में अन्य खाड़ी देशों के समक्ष रखने की योजना बना रहे हैं। इसके अंतर्गत खाड़ी में प्रवेश मार्ग पूरी तरह से ईरानी क्षेत्रीय जल सीमा के अंदर होगा। इसके निकास मार्ग का हिस्सा भी ईरानी नियंत्रण में होगा। इसके लागू हो जाने से जलमार्ग का दक्षिणी मार्ग बंद हो जाएगा। ये अमरीका की मांगों का सीधा विरोध है। ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा रहा है। ईरान ने जलमार्ग के खुलने से पहले अमरीका के सामने शर्तें रखी हैं। उसने कहा है कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये मार्ग बंद रहेगा। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियानों के कमांडर को पद से हटा दिया है। साथ ही ईरान की सीमा से लगी शलामचेह चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला

0: मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रावेट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़ेमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
1: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा दल ने बताया कि अब तक बरामद शवों में से 104 की पहचान कर ली गई है और उन्हें परिवारों को सौंप दिया गया है। अभी लगभग 5130 लोग लापता हैं। सुरक्षा बल खोज और बचाव अभियान चला रहे हैं। अब तक 13,700 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 339 लोगों का अस्पताल में उपचार जारी है। एआई कंपनी एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोदेई ने एआई उद्योग के तेजी से हो रहे विकास को कम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा उपायों को तकनीक के साथ तालमेल में समय लगेगा। श्री अमोदेई ने चेतावनी दी कि मजबूत सुरक्षा उपायों के बिना एआई 6 से 12 महीनों के भीतर एक समूह का नेतृत्व करने में सक्षम हो सकता है। ये संभावित रूप से इंटरनेट पर कब्जा कर अन्य जोखिम भी पैदा कर सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हुए। सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों के बाद इराक ने सैन्य कमांडर बर्खास्त किया। एलिना रायबकीना ने आरेना साबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप क्रिकेट फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. BRICS leaders condemn 2025 Pehelgam terror attack in Jammu and Kashmir, call for zero tolerance towards terrorism, also express concern over escalation of tensions in West Asia. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi today on sidelines of BRICS summit. Iran and Oman agree on new entry and exit shipping routes for Strait of Hormuz. Iraqi military commander dismissed after drone attacks against Saudi Arabia. Alina Rybakina of Kazakhstan beats Belarusian Arina Sabalenka to win women's singles title of US Open tennis in New York. And in cricket, India to take on defending champion Sri Lanka in Women's Asia Cup final in Dubai this evening. And now the news in detail. BRICS leaders have condemned the April 2025 Pehelgam terrorist attack in Jammu and Kashmir. In a joint statement, BRICS leaders have called for zero tolerance towards terrorism, reaffirming the regional bloc's commitment to combating terrorism in all its forms. The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the opening day of the summit, said that all acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation and who committed such an act. More from our correspondent.
3: The New Delhi Declaration condemned in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April 2025, during which 26 people were killed and many more injured. The attack was later traced to terrorists backed and trained in Pakistan. The declaration also called for action against the cross-border movement of terrorists, terrorism financing, and safe havens. BRICS leaders also urged the member nations to ensure zero tolerance for terrorism and reject double standard in countering terrorism. They further called for concerted actions against all UN-designated terrorists and terrorist entities. The joint declaration also expressed deep concern

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं। आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: ये आकाशवाणी है। ब्रिक्स समिट 2026 में आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन।
1: ब्रिक्स के विस्तृत परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज यह सभागार अलग अलग महाद्वीपों, संस्कृतियां और विकास यात्राओं को एक साथ जोड़ रहा है। यह ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, आकर्षण और अभूतपूर्व विश्वास का प्रमाण है। फ्रेंड्स, भारत की अध्यक्षता में हमने सभी प्रयास, रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, इन चार स्तंभों पर केंद्रित किए हैं। मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हम अपने साझा विजन को विन विन सहयोग में बदल सके। आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवी के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है। ब्रिक्स लॉजिस्टिक सप्लाई चेन कोऑपरेशन फ्रेमवर्क हमारी सप्लाई चेन्स को अधिक रिलायबल, रिजिलियंट बनाने में सहायक होगा। फ्रेंड्स, इनोवेशन के अंतर्गत ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क हमारे स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स को आपस में जोड़ेगा। इनोवेटिव और स्केलेबल सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए हमने ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का प्रस्ताव रखा है। ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से एआई, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है। फ्रेंड्स, भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेनर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, वीमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है। छोटे उद्यमों को नॉलेज, फाइनेंस और नए मार्केट से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई कोऑपरेशन पोर्टल का इनिशिएटिव लिया गया है। हमारे शहरों के बीच बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। फ्रेंड, भारतीय सभ्यता में प्रकृति को मां का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं, पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। यह भावी पीढ़ियों के प्रति

0: हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है। स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे। कम्युनिटी बेस्ड क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए तैयार किए गए सिद्धांत इंडिजीनियस नॉलेज को क्लाइमेट एक्शन का महत्वपूर्ण आधार बनाएंगे। फ्रेंड्स, इन चारों स्तंभों पर आगे बढ़ते हुए ब्रिक्स के माध्यम से हमने इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि ब्रिक्स में विकसित सॉल्यूशंस का लाभ केवल ब्रिक्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इन्हें ग्लोबल साउथ की आवश्यकताओं के अनुरूप एडेप्टेबल और एक्सेसिबल बनाना चाहिए। साथियों, मैं मेरे निजी अनुभव से कह सकता हूं कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज, बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मीडिया के अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया वे यहां से प्रस्थान करें, ताकि आगे की गतिविधि हम जारी रख सकें।
1: अभी आप ब्रिक्स लीडर्स समिट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन रहे थे। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
2: दूसरे दिन के सेशन की शुरुआत।
3: The 10 partner countries of BRICS are Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan and Vietnam. After the conclusion of the session, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral meetings with President of Kazakhstan, Qasim Yamart Tokayev, President of Philippines, Ferdinand R. Marcos Jr., President of Egypt, Abdel Fattah el-Sisi, President of South Africa, Cyril Ramaphosa and President of Burundi, Evariste Ndayishimiye. BRICS leaders have condemned the April 2025 Pahalgam terrorist attack in Jammu and Kashmir. In a joint statement, BRICS leaders have called for zero tolerance towards terrorism, reaffirming the regional bloc's commitment to combating terrorism in all its forms. The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the opening day of the summit, said that all acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation and who committed such an act. The declaration condemned in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April 2025, during which 26 people were killed and many more injured. The joint declaration also expressed deep concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. Finance Minister Nirmala Sitharaman today met the Iranian Minister of Economic Affairs and Finance, Sayed Ali Madinzadeh, in New Delhi. Ms. Sitharaman thanked Iran for its participation in the BRICS summit and its productive engagement in the deliberations in the finance track. The Ministry of Finance informed that during the meeting, both sides exchanged views on issues

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान कार्यक्रम में हम आपको विविध क्षेत्रों के सुप्रसिद्ध फनकारों से मिलवाते हैं, उनसे जिनका फन ही बोलता है देश दुनिया में, समाज में, और वो अपने फन से, अपनी कला से हम श्रोताओं के दिलों में, जहनों में हमेशा हमेशा के लिए अपना घर बना लेते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने वीणा वादन से दुनिया में देश का नाम रोशन किया है और 5 पीढ़ियों से ये परंपरा विरासत के रूप में अगली पीढ़ी को सौंपी भी जाती रही है। विरासत में मिली इस कला के बावजूद कैसी रही उनके जीवन की कहानी, इस सफर में क्या क्या उपलब्धियां उनके नाम रही और किन किन बाधाओं और संघर्षों से उनका सामना हुआ, आइए सुनते हैं ये कहानी उन्हीं की जुबानी। हमारे साथ आज स्टूडियो में है प्रसिद्ध वीणा वादक एमनी कल्याणी लक्ष्मी नारायण और उनके साथ है उनकी बेटी पद्मिनी पशुमर्थी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: एमनी जी और पद्मिनी, मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा कभी हुआ कि आप दोनों ने साथ साथ भेंट वार्ता की हो?
1: एक मदर्स डे के लिए हैदराबाद में एक टीवी चैनल के जरिए हम दोनों ने बात की।
0: ये दो पीढ़ी है और पीढ़ियों का अंतराल बदलाव का, परिवर्तन का, विकास का होता है। कैसा लग रहा है आप दोनों को, खासकर कल्याणी जी आपसे, क्योंकि आकाशवाणी से आपका बहुत गहरा रिश्ता है, इस प्रांगण से आप पूरी तरह से परिचित हैं, तो हमें बताइए।
1: सब श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बचपन से मैं ऑल इंडिया रेडियो यहाँ मैं आया करती थी। मेरे पिताजी पूज्य महामहोपाध्याय पद्मश्री इमिनी शंकर शास्त्री जी, जो दुनिया सब जानती हैं, उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। तो उनके साथ मैं अक्सर वाद्य वृंदा करके एक बहुत बड़ा यूनिट रहा करता था, तो उसमें सुनने में बहुत आनंद आता था। वीणा तो मैं वैसे मैं बजाती थी, लेकिन टीचिंग में नहीं गई उस टाइम। युवाणी शुरू किया यहाँ पर, तो पहला प्रोग्राम, मतलब युवाणी जो पब्लिक परफॉर्मेंस, मुझे बुलाया सप्र हाउस में, मैं और मेरे साथ एक और सुतार वादक थे। तब से लेके मैं युवाणी में बजाना, फिर उन दिनों में चेक करना, सारा एकदम खुशी की बात हुआ करती थी। तो वहां से शुरू हुआ मेरा करियर AAR में। फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेडिंग में ऑडिशन दिया, फिर B, B High, A, A Top, ऐसे ऐसे करते करते मैं पहुंच गई। मेरे साथ पिताजी का रिश्ता ऐसा है, पिता और बेटी का, माँ और बेटी का, हर एक का कुछ अलग वो रिश्ता होती है, और वी ऑल लाइक टू टॉक अबाउट देम, बट ही हैपेंस टू बी माय गुरु। गुरु होने से और भी मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने मेरे शोल्डर पे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देके गए, और उनसे सीखना, उनके साथ बजाना, हर एक चीज उनके साथ, कहीं भी मैं जा सकती थी कभी।
0: बहुत कम उम्र से, 13 वर्ष की आयु से ही आपने,
1: एग्जैक्टली उनके साथ मतलब इतना मेरे रिश्ता ऐसा बन गया कि मैं हर बार उनके नाम से मैं भावुक होती हूँ। तो इसलिए मैं जब कभी भी ऑल इंडिया रेडियो कहीं भी, मैं तो हर जगह कॉन्सर्ट्स देने जाती हूँ। अभी मैं रिटायर हुई हैदराबाद, लेकिन मैं यहाँ से फिर कलकत्ता में भी गई।
0: यहाँ तो, भी थी आप आकाशवाणी?
1: हाँ, यहाँ आकाशवाणी में। यहाँ
0: कितने सालों?
1: टॉप आर्टिस्ट आई वाज 5-6 साल।
0: शुरुआत यहीं से की?
1: यहीं से। तो उसके बाद मैं कलकत्ता चली गई। तो जब भी हम गुजरते हैं इस पार्लियामेंट स्ट्रीट से, कुछ कभी टैक्सी में, ऑटो में, कार में, जब भी जैसे हम लोग मंदिर को देख, मतलब नमस्कार करते हैं, मैं करती हूँ।
0: क्या बात, क्या
1: हर
0: बात?
1: हर शहर में
0: जी।
1: अरे ये हमारा, क्योंकि यही हम पले हैं, यही
0: परिवार है आपका।
1: हाँ, ऑल इंडिया हैज गिवन मी सो मच। हर एक आर्टिस्ट को
0: सम्मान
1: होना चाहिए, है भी।
0: बिल्कुल। इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को अपने मेहमान के पसंद के गीत भी सुनवाते हैं, तो पहला गीत हम पद्मिनी जी की पसंद का सुनें क्या?
1: जरूर जी, जरूर। वो तो गायक भी है, आप उनसे गवाही है
0: जरूर।
2: मेरे ख्याल से तेरे मेरे मिलन किए रहना,
0: अभिमान फिल्म का गाना।
2: जी बिल्कुल, लता जी का और किशोर जी का गाया हुआ।
0: तो जब ये गीत हम सुनवाने ही जा रहे हैं अपने श्रोता को, तो मैं चाहती हूँ कि आप बहुत सुंदर गाती हैं, ईश्वर की कृपा है, बहुत प्यारी मीठी आवाज है आपकी, तो 2 लाइन से हम शुरुआत करते हैं।

0: बहुत ही सुंदर आवाज है आपकी पद्मिनी, तो आप
1: जी
0: गाने में भी कुछ हाथ आजमाती हैं या सिर्फ वीणा वादन में?
1: जैसे कि आप जानते हैं, मैं बड़े ही म्यूजिक वाले परिवार को बिलोंग करती हूँ। मेरे परम पूज्य नाना जी जो इतने बड़े कलाकार थे, तो मुझे जीन्स में थोड़ा म्यूजिक मिला है, जिसे मैंने बहुत सालों तक जो है रियलाइज नहीं किया। सीखना तो काफी पहले शुरू किया था। मम्मी ने आई थिंक मैं 5 साल की थी जब मेरे लिए एक ट्यूटर रखा था, और वो आते थे मुझे चॉकलेट दे के चले जाते थे, क्योंकि मेरे को गाना उनके लिए गाना नहीं पसंद था, मुझे खुद के लिए गाना पसंद था। तो बाद में जाके डेवलप हुआ इंटरेस्ट, और मैंने आई थिंक सीरियसली 7-8 साल की रही होंगी जब मैंने सीरियस ट्रेनिंग लेनी शुरू की, और कर्नाटक क्लासिकल ट्रेनिंग ली मैंने, और खुद के लिए गाती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कलाकार बनना है, और कभी इस दिशा में मैंने सोचा नहीं था कि मुझे आगे जाके इसको एक अपना प्रोफेशन बनाना है। बट आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट म्यूजिक, सो मैं काफी पैशन के साथ सीखती थी, और मेरी जो गुरु रह चुकी हैं वो भी काफी अच्छे तरीके से मुझे सिखाती थी। और फिर वीणा भी मैंने साइड बाय साइड सीखना शुरू किया। पर जैसे
0: कब सीखना शुरू किया वीणा?
1: बहुत सालों बाद, आई वुड से आई वाज इन माय टीन्स।
0: गाना पहले शुरू किया?
1: जी जी, सो गाना बहुत पसंद था, और आगे जाके मैं एकेडमिक्स में भी काफी अच्छी थी। फ्रेंच में अपना मास्टर्स किया, और मैं एक फ्रेंच लेक्चरर बन गई। और वहां पे आफ्टर आई गॉट मैरिड, शादी होने के बाद, लंदन मूव होने के बाद, वीकेंड्स के टाइम पे जो है मैं शास्त्रीय संगीत को काफी मिस करती थी। पर वहां पे जाके मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी इसमें आगे कुछ करना चाहिए, और मैं परफॉर्म तो करती थी। शादी से पहले भी मम्मी के साथ कई कॉन्सर्ट्स मैंने दिए थे, पर वहां पे जाके मैंने फ्रेंच कंपनी में काम करना शुरू किया। और वीकेंड्स में एक बार, एक द आई ओपनर कहते हैं ना, वैसा कॉन्सर्ट था जो मैंने नेहरू सेंटर इंडियन एम्बेसी के लिए एक वीणा कॉन्सर्ट दिया था, और वहां पे एक बड़े ही बुजुर्ग, वो तकरीबन 96-97 ईयर्स के रहे होंगे, उन्होंने आके कहा कि बेटा यू आर द फोर्थ जनरेशन प्लेयर ऑफ योर फैमिली जिनको मैं आज सुनने आया हूँ। आपके मम्मी को सुन चुका हूँ, आपके नाना जी को सुन चुका हूँ, और आपके परनाना जी को भी सुन चुका हूँ। और वो मेरे लिए बड़े ही गर्व का क्षण था। तो मैंने सोचा, और उनसे जब कॉम्प्लीमेंट मिला, बता नहीं आपको, मैं जाहिर नहीं कर पा रही हूँ कितनी खुशी हुई मुझे कि एक ऐसे श्रोता जिन्होंने 3 जनरेशन को सुना है। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे

0: कोई भी नहीं
1: बिल्कुल
0: है। कल्याणी जी, आपके विषय में जब मैं जानकारी हासिल कर रही थी तो मैंने पढ़ा दैट यू हेल फ्रॉम द फैमिली ऑफ नोटेड वेनिकास फ्रॉम आंध्र प्रदेश, और फिर पूज्य पिताजी को और अपने गुरुजी जो आपके पिताजी थे 108 वेनिका से श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरी अपनी जिज्ञासा तो थी ही, और मैं श्रोताओं की तरफ से भी आपसे पूछना चाहूंगी कि वेनिकास का क्या अर्थ होता है,
2: वेनिका उसका परिभाषा क्या है। वीणा जो बजाते हैं वेनिका, वेनिका इज द वीणा, सो उनको वेनिका बोलते हैं। सो इसका कोई टाइटल नहीं है, लेकिन जस्ट इट इज ओनली द उसका नाम है, लाइक यू नो सिनोनिम ऑफ वीणा प्लेयर। हमारे पिताजी जब से मतलब 87 ही पास्ट हुए, मैं हर साल उनका बर्थ एनिवर्सरी में सेलिब्रेट करती हूँ। दिल्ली में भी काफी मैंने सेलिब्रेट किया है, फिर यहाँ से हमारा ट्रांसफर हुआ था कलकत्ता में, फिर वहाँ भी कभी छोटे मतलब पैमाने में या कभी इन अ वेरी ग्रैंड स्केल, मतलब जैसे जैसे मेरा टाइम और वो सब निकलता है। तो उस सिलसिले में मैं हैदराबाद जब थी तो 108 हम ऐसे सोच के हम 108 काला, जैसे हम 108 पुष्प जो बोलते हैं ना, जैसे पूजा करते वक्त भी 108 हम करते हैं या 1008
1: माला भी होती है,
2: माला भी 108 का, ऐसे वी वांट टू उनको पुष्प अर्पित करना। वो कैसे पुष्प थोड़ी है, मतलब
1: बिल्कुल
2: लोग आए हैं, बहुत गवर्नर आए होते और ऑल इंडिया रेडियो के ए ग्रेड आर्टिस्ट जो थे वो सब बहुत प्यार करते हैं मेरे पिताजी से
1: जी।
2: तो वो सब हमने बजाया एंड देन अनदर बाकी सब 108 उनका शिष्य और हमारे शिष्य सब वो एक अच्छा सा हमने एक प्रेजेंट किया था।
0: आपके नाम के साथ भी एमनी कल्याणी है, तो एमनी परंपरा है या शैली है, और इस पर मैं चाहती हूँ आप कुछ प्रकाश डालें, क्योंकि आप इस एमनी परंपरा को पढ़ाने वाली इकलौती महिला हैं, और जैसा कि मैंने पढ़ा कि इसका अर्थ क्या है ये तो मैं जानना चाहती हूँ, और वीणा वादन की एमनी शैली की विशेषताएं क्या है या ये किस प्रकार अलग है और शैली से।
2: इमनी एक जगह है आंध्र प्रदेश में, जो भी वहां से आते हैं उनका नाम से जुड़ा होता है इमनी, तो ऐसे पिताजी का इमनी शंकर, शंकर शास्त्री इज इज नेम ओके। उसके बाद इमनी जो है इनका नाम जो इतना प्रचलित हुआ, इतना फेमस हो गया कि उनका शैली जो है, जैसे यहाँ पे घराना जो बोलते हैं ना, ये घराना नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका एक अलग सा एक शैली था। वीणा सभी लोग एक तरफ अच्छा ही होता है मतलब सुनने में और उनका वो बजाने का स्टाइल वाइज, लेकिन इन्होंने क्या है, शुरू से उन्होंने बचपन से ही हैज लिसन टू यहाँ पर नॉर्थ का, क्योंकि एकदम कर्नाटक क्लासिकल बैकग्राउंड था उनका, और उनको इतना पसंद है हिंदुस्तानी शैली का अंश वो सब लेते थे, उसको कैसे वीणा में वो डालना, उनका थिंकिंग और इतना प्रोग्रेसिव था। ऊपर से बाख, बीथोवन ये सब वेस्टर्न का, उनका भी एकदम देयर इज अ स्टाइल उनका एक्सप्रेशंस में। माय फादर वाज वेरी डेयरिंग, और उनका हाथ में जो वीणा दो ही विल प्ले एनीथिंग वॉट एवर ही हैज, मतलब गमकास वो गमक्स होते हैं ना
1: जी,
2: यस इंट्रोड्यूस, तो उनका शैली को इमनी स्टाइल
1: जी।
2: एंड बिकॉज आई एम हिज डॉटर इमनी, सिर्फ शादी के बाद यू नो, इसलिए मैंने लक्ष्मी नारायण को सुना, मेरे हस्बैंड नेम इज लक्ष्मी नारायण, लेकिन उनका जो घर का नाम है अलग, फिर मुझे पहचानेंगे नहीं कोई, तो मैं इमनी कल्याणी बोलूंगी तो फिर
1: समझ जाएंगे कि उस परंपरा से
2: या तो डॉटर है या मतलब कोई सिस्टर है समथिंग, दे नो इट। अकेले का प्रोग्राम से मेरा कोई मतलब नहीं, पिताजी के साथ ही बैठना है, ऑल द एक्सपीरियंस ऑन द स्टेज जो मिलता है कहीं नहीं मिलेगा।
0: यहाँ पे हम एक गाने का ब्रेक लेते हैं, आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं,
2: उसके
0: अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। कौन सा गीत सुनवाएंगे आप?
2: भोर भयो।

0: एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान और हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में हैं सुविख्यात वीणा वादक एमिनी कल्याणी लक्ष्मी नारायण और उनकी पुत्री पद्मिनी पसुमर्थी। हम बातें कर रहे थे कि आपकी और भी भाई बहन हैं, उनका कितना रुझान था वीणा वादन में।
1: मेरे भाई दोनों मृदंग, एक जैसे तबला जहाँ नॉर्थ में होता है मृदंग सीखते थे, और मेरे सिस्टर सभी गाना भी गाते हैं और वीणा भी बजाते हैं। लेकिन क्या हुआ, मैं शुरू से ही वीणा को सीरियसली लेना चाहती थी। आई वॉन्ट टू बिकम अ वीणा आर्टिस्ट।

0: पैशनेट थी उसको लेके, पैशनेट
1: थी बचपन से ही। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगी, पिताजी के पास जाना बहुत मुश्किल था, घर में पिताजी है इसलिए इट वॉज नॉट ईजी, क्योंकि वो काफी बिजी थे, फिर उनसे पूछना भी डर सा लगता था। फिर मेरे माँ ने, माँ को पता नहीं क्यों मुझे चुना उन्होंने आफ्टर ऑल द चिल्ड्रन, कल्याणी को आप सिखाओ। तो उन्होंने शुरू में बोला ऐसे सिखाने में ऐसा इतना आसान काम नहीं है, देखते हैं।
0: निकल जब कितनी छोटी थी उसमें?
1: मैं बहुत छोटी थी, बस इन थर्ड स्टैंडर्ड, वहां से मेरे को याददाश्त है मेरा। तो एक बार मैं युवावाणी में मैंने कहा ना, शुरू किया मैंने, तब सिखा नहीं पिताजी से। एवरी वीक हमारे घर में लोग आते थे, उनका बिना बजाना सब लोग, ऑल दिस थिंग्स नो। मैंने सोचा देखो कोई ये नहीं पूछता तुम कौन से क्लास में हो, तुम क्या बनना चाहते हो, इंजीनियर या डॉक्टर या आर यू वीणा प्लेयर, आप वीणा बजाती हैं? तो इसमें वीणा बजाने में कुछ खास है, सब लोग पिताजी को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, इतने बड़े बड़े लोग।
0: आप जब पिताजी के साथ वीणा बजाती थी, बैठती थी, तो आपके बाकी जो भाई बहन थे, बहने थी, दो भाई थे, उनका क्या रिएक्शन होता था? वो कैसे देखते थे कि आप पर ही ज्यादा ध्यान है?
1: नहीं,
0: वो सीखना तो सीखती तो वो भी थी, पसंद उनको भी था, लेकिन आप पर ही इतना ध्यान क्यों केंद्रित?
1: देखिए यहाँ मैं एक अच्छी सी मतलब बता सकते हैं एग्जांपल। मैं पिताजी के पास गई, गुरु के पास गई, ये बात नहीं, गुरु विल पिकअप। तो एक बार मैंने युवानी में बजाया, वो सुन रहे थे, उन्होंने कहा हाँ इस लड़की को मैं अगर मैं सिखाऊं तो ये मेरा नाम रोशन करेगी, बस उन्होंने डिसाइड कर दिया। एक बात बताऊंगी, एकदम मेरे को बड़े प्रोग्राम में बिठा दिया, जब तक मेरे को कुछ नहीं आता, इतना उनको मेरे ऊपर विश्वास।
0: मैं जानना चाहती हूँ आपका वो बचपन, साथ खेलना, स्कूल जाना, भाई बहनों में जो छोटे छोटे बड़े होते रहते हैं, वो बचपन कैसा था?
1: ऐसे मेरे अभी तक भी मेरे भाई लोग, मेरे बड़े बहन हो या मेरे छोटी बहन, किसी को भी ईर्ष्या नहीं थी, ना झगड़ा किया पिताजी से मेरे को क्यों नहीं सिखाता, ऐसे कुछ नहीं था। दे ऑल नो।
0: पढ़ाई में कैसी थी?
1: मैं आई वॉज वेरी गुड, उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहती थी। मेरे टीचर भी बोलती थी कि मतलब मेरे इंग्लिश विंग्लिश सब देख के तुम आईएएस बनो। नो मैम, आई डोंट वांट टू बिकम आईएएस, आई वांट टू बिकम अ म्यूजिशियन, फिनिश्ड। वो पक्का हो गया मेरे दिल में और माइंड में। वो जब पिताजी, मैंने टैलेंट को थोड़ा सा भी हो तो पिताजी लोग
0: बिल्कुल। और इस पॉइंट पे मैं कहना चाहूंगी कि एक्चुअली मेरी मासी जो है, जैसे बड़ी है, मासी और मम्मी दोनों ने काफी स्टेज परफॉर्मेंसेस भी देते थे जब वो 13-14 साल के थे, और बाद में जाकर वो एक्चुअली एकेडमिक्स में बहुत ही अच्छी थी, और उन्होंने वन ऑफ द वेरी अर्ली कंप्यूटर पर्सन, सो बाद में वो यूएस शिफ्ट हो गई और 60 साल से तकरीबन वो वहीं पे हैं। और मैंने जब रिसेंटली एक कॉन्सर्ट के लिए हम जब यूएस गए थे, मैंने उनसे ऐसी बातचीत की और मैंने इस बात के बारे में गहराई से जानने की कोशिश की कि आपने क्यों छोड़ दिया वीणा जब मम्मी बजा रही थी, आप दोनों साथ बजा रहे थे। तो उन्होंने बहुत ही गर्व से कहा कि मैं ऐसे नहीं बजा सकती हूँ। तो मम्मी में वो शिष्या दिखी नाना जी को, तो और वो सभी पहचान गए। ओके पद्मिनी, कौन सा गीत सुनवाएंगे?
2: इसुदास जी का कोई गाना, चित चोर मूवी का,
0: चलिए सुनते हैं।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान, और हमारे साथ स्टूडियो में हैं सुविख्यात वीणा वादक एमिनी कल्याणी लक्ष्मी नारायण और उनकी प्यारी सी पुत्री पद्मिनी पसुमर्थी। पद्मिनी, आपने बताया कि बहुत बाद में आके आपने वीणा वादन शुरू किया, तो गाना जो आप गाने लगी या आपको शौक हुआ, प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि घर में गाने वाले लोग तो नहीं थे?
1: मेरी मासी जो है एक्चुअली वो बहुत ही नामी गजल गायिका है, सो मल्लिकाए गजल श्रीमती देवी रमण मूर्ति जी, जो मम्मी की छोटी बहन है, तो उनको मैं काफी
0: जॉइंट फैमिली है कैसे
1: नहीं, बट उनके जो कैसेट्स वगैरह काफी थे घर पे,
0: अच्छा।
1: तो मैं मम्मी सुबह को कोई ना कोई कैसेट चला देती थी और सुन सुन कर मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि ऐसे गाना चाहिए, और कर्नाटिक म्यूजिक की ट्रेनिंग तो ले ही रही थी, कभी ऐसा नहीं था कि मेरे मन में था कि मुझे कलाकार बनना है, पर देखिए भगवान की कृपा रही और बड़ों का आशीर्वाद रहा।
0: माँ ने नहीं कहा कि वीणा वादन
1: नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि कितने लोग कितने सारे स्टूडेंट्स को मम्मी सिखाती थी, मन में था कि मुझे भी सीखना है, पर ये मैं आज शायद खुलकर बताना चाहूंगी कि दिल में काफी था कि मुझे वीणा सीखना है, और मम्मी के सोने के बाद मैंने 2-3 बार वीणा लेके मैं बैठ भी गई थी। आई थिंक आई वॉज लाइक 7-8 years old, और उस टाइम पे कैसे लगता है ना कि कितने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार घर में रहे हैं, मैंने नाना जी को सुना है, मम्मी को सुना है, और मैंने जैसे ही बजाया मुझे लगा कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है। देखिए, एंट्री इनटू द फील्ड इज ईजी, बट अगर टैलेंट हो तभी आप वहां पे टिक पाओगे।
0: कल्याणी जी, इस वादन शैली के दिग्गजों की 5वीं पीढ़ी है मेरे ख्याल से, पद्मिनी 5वीं पीढ़ी है ना, तो एक गुरु की तरह आपको अपनी शिष्या से, बाकी शिष्याओं से भी, और एक तो आपकी पुत्री ही है, तो क्या अपेक्षाएं हैं?
2: जैसे मेरे पिताजी मुझे चुना है तो मैं भी इसको शिष्या के दर्जा भी देती हूँ। इससे अलग शिष्या बहुत है मेरे, इतने प्यारे, मैं सबसे प्यार करती हूँ
0: जी।
2: मेरे पिताजी मेरे ऊपर छोड़ के गए रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर मैं भी अभी देखिए जब उम्र होता है देन यू नो एवरीबडी, एक दिन दूसरा पीढ़ी उसको लेके जाना पड़ता है। ये जो क्लासिकल जो ये इमनी स्टाइल ये जो है ना, अगर वो चला गया तो पिताजी का इतना वो सब व्यर्थ हो जाता है, तो उसको पूरा के पूरा

0: रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं देना चाहती हूँ, दे रही हूँ।
1: पद्मिनी जी, क्या कहेंगी आप? मुस्कुरा रही हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
0: बहुत ही बड़ी। और देखिए, मेरे नाना जी मेरे लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए इतने दिग्गज कलाकार एक महासागर ही हैं। मैं तो एक तालाब की बूंद भी नहीं हूँ उनके सामने। तो मुझे बचपन से इस बात का डर था कि अगर मैं टेकअप करूँ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और इमीडिएटली जो है सब कंपेयर करना शुरू कर देंगे कि मम्मी के जैसे बजा रही है कि नहीं। क्योंकि जब मैं बजाती हूँ, जैसे मैंने एमए और बीए भी किया था म्यूजिक में, तो उस टाइम पे भी जो जजेस आते थे जिनको पता चलता था तो ये मेरी जी की बेटी है, तो जो 5 मिनट में मेरा खत्म होने वाला था एग्जाम प्रैक्टिकल, वो लोग 40 मिनट सुनते थे। पहले तो मुझे डर लगता था कि बहुत ज्यादा ही कीन ईयर्स से मुझे सुन रहे हैं, मैं तो अपने लिए सीख रही हूँ तो क्यों जबरदस्ती मुझ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। क्योंकि कोई भी सुनता था, बालसुब्रमण्यम जी ने भी मुझे कहा कि फ्रेंच वेंच छोड़ो, चलो इतना बड़ा लेगेसी है तुम्हारे पीछे, उसको आगे लेके जाओ, और कोई नहीं कर सकता, तुम्हें ही करना। तो बार बार ये बातें सुन के मुझे एक्चुअली डर लगने लगा था, जिसकी वजह से मैं अपने आप को थोड़ा दूर करने लगी थी। जैसे कहते हैं ना, किसी के कहने से नहीं आती ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद महसूस करना पड़ता है।
1: फ्रेंच का ये शौक किधर से आया?
0: आई हैव अ फ्लेयर फॉर लैंग्वेजेस, मुझे था कि मुझे एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना है, और फिर मैंने एडवांस्ड डिप्लोमा किया और मास्टर्स किया।
1: इतनी प्यारी आवाज है आपकी, तो वीणा वादन को अब आप आगे बढ़ाएंगी, कल्याणी जी ने भी कहा और आपने भी तय किया है, तो गाना के साथ क्या करेंगी?
0: गाना भी सिखाती हूँ। मेरा जो है, मेरे म्यूजिक स्कूल का नाम है ईमनी स्वर वीणालय। मैं टीचिंग बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ वोकल म्यूजिक में, और सुगम संगीत की भी मैं ऑल इंडिया रेडियो की आर्टिस्ट हूँ। सो
1: कभी फिल्मों की तरफ ध्यान नहीं गया?
0: ऑफर्स तो आ चुके हैं, और पता नहीं क्यों, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं था टूवर्ड्स इट। और जैसे मैं कॉलेज में थी, जब 2-3 गानों के लिए कंपोजर्स ने मुझे अप्रोच किया था, उस टाइम पे मैं एफएम रेनबो की ही आरजी थी। मैंने ऐसे ही कोई गाना गुनगुनाया होगा और मुझे कॉल्स आए थे तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर्स के, और मैंने उस टाइम पे फोकस एकेडमिक्स को लेके मैंने कहा नहीं, मुझे अभी फिलहाल इसमें नहीं जाना।
1: कल्याणी जी, आपके पूज्य पिताजी के दौर से लेकर वर्तमान दौर तक वीणा वादन के प्रति श्रोताओं के आकर्षण में क्या कोई उतार चढ़ाव आया है, आपको नजर आता है?
2: हाँ, कुछ कुछ नजर आता है। जैसे नो, आजकल लोगों को 3-3, 4-4 घंटे बैठने का रिवाज ही चला गया, लेकिन है कुछ कुछ, मैं देखती हूँ सबका वो रुचि अभी भी है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि हर एक स्कूल में हमारे वीणा हो या मतलब और भी अच्छे अच्छे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, सब दे हैव टू इंट्रोड्यूस क्लासिकल म्यूजिक इज क्लासिकल म्यूजिक।
1: आपको कल्याणी जी कई उपाधि और सम्मानों से नवाजा गया, एक लंबी फहरिस्त है, विद्वान मणि, विदुषी, वीणा गाना कला सरस्वती, वीणा पानी, वाद्य भूषण, श्री कला पूर्ण सपना, कलाए मामणि लंदन इत्यादि। लेकिन क्या इसमें कोई ऐसी उपाधि भी है जो दिल अजीज है और उससे कोई याद, कोई वाक्या, कोई घटना जुड़ी हुई हो?
2: हर एक आर्टिस्ट को अपना हुनर दिखाना अच्छा लगता है, हुनर के बाद वो लोग हमें, श्रोता सब हमें पसंद करे, तालियां बजाए, ये अच्छा लगता है। और मतलब दे गिव मी यू नो लॉट ऑफ सम्मान पत्र हो, जो भी है, मैंने भी इससे ये अच्छा है, उससे अच्छा है, वी कैन नॉट कंपेयर। लेकिन अभी हाल ही में मुझे श्री श्री आश्रम है ना, रविशंकर जी, उन्होंने कला सारधी, तो वो मुझे अच्छा लगा, चलो हमें अच्छा सा एक साथ साथ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दिए।
1: आर्ट ऑफ लिविंग से भी आपका जुड़ाव है, श्री श्री रविशंकर जिनका जिक्र किया अभी आपने, बेंगलुरु आश्रम में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में वीणा वादकों ने हिस्सा लिया था, और ये आपके निर्देशन में हुआ था, तो क्या अनुभव थे वो और क्या यादें हैं? लगभग आज 10 साल हो गए, 2016 की बात है ये।
2: सबसे पहले मैं यूएस ट्रिप से आई थी वापस, तो उन्होंने क्या किया, अरे आप इमली जी की बेटी हैं तो आप क्या कर रही हैं, जाओ जल्दी जाके वीणा बजाओ। 10 मिनट सोचा, लेकिन उन्होंने काफी देर तक सुन के ऊपर देन स्टेज में गई, उन्होंने बहुत हमारी प्रशंसा की, और उन्होंने कहा आप 200 लोगों का वीणा लेके मतलब अगले 3-4 दिनों में आके प्रस्तुत कीजिए, यू आर लीडिंग। तो वो दिन आया, देन मेरे सामने पूज्य गुरुजी बैठे हुए हैं, तब भी मुझे 20 या 30 मिनट ही दिया, उनके साथ रहते ना स्ट्रिक्ट, ज्यादा मत बजाना ये वो, मतलब अच्छा ठीक है, हम रेडियो लोग हैं, हम 30 मिनट में ही हम खत्म करेंगे। तो मेरे साथ और भी वीणा वादक सब

0: कर्नाटका और दिल्ली बेंगलोर सबसे आए, सब अच्छे कलाकार थे। देन मैंने सोचा फिर अभी खत्म करने वाले हूँ, तो वहां से गुरुजी बोल रहे थे आप शर्म कपरी को एक राग है वो बजाओ, तो मैंने बजाया। होते होते एक घंटा हो गया,
1: समय आधा घंटा दिया गया,
0: आधा घंटा दिया गया।
1: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं एमिनी कल्याणी लक्ष्मी नारायण, सुविख्यात वीणा वादक, और उनकी बिटिया जो गायिका भी हैं और वीणा वादक भी हैं, पद्मिनी पसुमर्थी। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त राजश्री त्रिवेदी। पद्मिनी, माँ कल्याणी जी की ऐसी कौन सी उपलब्धि है, विचार है या व्यवहार है जो आपको लगता है कि काश मैं माँ जैसी होती या माँ जैसी बन जाती?
2: इतनी बड़ी कलाकार है सबसे पहली बात, उस कला को देख के मैं हर दिन, अगर एक गाना दे दें, एक हम लोग जैसे कीर्तन बोलते हैं, अगर वो 10 बार बजाएं तो 10 अलग गाने लगेंगे, 10 बार उनके डिफरेंट डिफरेंट न्यूएंसेस से बजाती हैं। तो इतनी बड़ी कलाकार हैं, तो सबसे पहली बात उनसे मैं चाहूंगी कि कभी अगर मुझे ये वर मिल जाए कि मम्मी से कुछ ले सकते हो, तो मैं यही कहूंगी कि उनसे जो है एटलीस्ट 10% कला मुझ में आ जाए।
1: आपसे पूछ रही हूँ कल्याणी जी के आपके पूज्य पिताजी और गुरु सबसे सशक्त रूप में कहाँ जीवित हैं आप में, स्वर में, अनुशासन में, स्मृतियों में या मौन में?
0: स्मृतियों में। वीणा जब मैं लेके बैठती हूँ तो आपने जो बाकी सब बोला वो सब उसमें समा जाते हैं। आई रिमेम्बर हिम, आई एम विथ हिम, क्योंकि जब तक वीणा है मेरे पिताजी हैं, पिताजी एंड वीणा दे गो टुगेदर। इतना उन्होंने परिश्रम करके नाम कमाया, वो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर मुझे दिया, मैं बाखूबी निभा रही हूँ, निभाया, निभा रही हूँ और भी निभाऊंगी। कितने हद तक मेरी बेटी करेगी, इट ऑल डिपेंड्स। आई एम नेवर सेपरेटेड। उनका स्मृति जो है, उनका जो भी है, एवरीथिंग, इवन नाउ आई एम थिंकिंग दैट इज प्रेजेंट इन दिस बिल्डिंग।
1: बहुत आनंद आया आप दोनों से बात करने में, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पद्मिनी। हमारे श्रोताओं के लिए, खासकर युवा श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, इसमें कुछ करना चाहते हैं, क्या कहेंगी आप?
0: मेरे ख्याल से आप काफी मतलब हद में आप यंगस्टर से होंगे, एनी इंस्ट्रूमेंट, लेकिन जरूर बचपन से ही म्यूजिक प्लीज अपने करिकुलम में ऐड कीजिए। मैं पेरेंट्स को खास करके बोलना चाहती हूँ, कुछ ना कुछ उनको सिखाइए, क्योंकि वो म्यूजिक से क्या होता है, यू नो दिस द ब्रेन आल्सो डेवलप्स अलोंग विद इट। उनको खेलने का वक्त भी दीजिए और म्यूजिक को भी अच्छी तरह से उनको सिखाइए, थोड़ा बहुत, एनीथिंग दे वांट टू डू, गिटार हो, वीणा हो, डांस हो, एनी कला प्लीज। दैट्स माय एम्बिशन एंड इट इज माय रिक्वेस्ट ऑल द यंगस्टर्स एंड आल्सो देयर पेरेंट्स।
1: आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, जो हमारे युवा श्रोता और बाकी श्रोता सुन रहे होंगे आपकी बातों से, उनको भी बहुत इनकरेजमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, यहाँ आने के लिए। चलते चलते कौन सा गीत आप अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?
2: बड़ा ही एप्ट सॉन्ग है किशोर कुमार जी का, क्यों ना हम चलते चलते मेरी ये गीत याद रखना।
1: एक लाइन गा भी सकती है?
2: जी बिल्कुल।

आज के मेहमान कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुविख्यात वीणा वादक एमिनी कल्याणी लक्ष्मी नारायण और उनके साथ ही उनकी पुत्री पद्मिनी पसुमत थी। मुझे यानी राजश्री त्रिवेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और व्यवधानों ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
1: महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
0: और जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित के पास। अंकित, ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आज अंतिम दिन सम्मेलन में क्या कुछ खास होने वाला है?
2: जी कनक, आपको बता दूं कि भारत चौथी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए इस समूह में अब 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार पिछले 5 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो ये दिखाता है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। इस शिखर सम्मेलन के पहले दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया।
0: जी,
2: इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। कनक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वह नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता

0: करेंगे। ठीक है ना,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद अंकित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादेह से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं डिगा सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले 3 दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today said pandemics, climate disasters and supply chain disruption have demonstrated that in today's interconnected world, no crisis remains confined to a single region. Addressing the open session of BRICS summit at Bharat Mandapam in New Delhi, Mr. Modi said BRICS nations have therefore placed special emphasis on enhancing resilience among the grouping. In the session on resilience, innovation, cooperation and sustainability, Mr. Modi also emphasized on timely identification of challenges, preparation for them and taking immediate action. He said that a consensus has been reached on a BRICS integrated early warning system for the prevention of and response to infectious diseases. He added that early warning data integration guidelines have been formulated for disaster management.
3: Aajke interconnected world mein koi bhi sankat ek kshetra tak simit nahi rehta. Isliye humne BRICS samuh mein resilience badhane par vishesh bal diya hai. चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पांस के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
2: Prime Minister Modi cautioned that weaponization of technology and critical minerals can become a hurdle for progress. He said BRICS nations have stressed on inclusivity in adoption of technology.
3: Technology aur critical minerals ka weaponization hamari saajha pragati mein badha ban sakta hai. Isliye humne technology ke adoption mein inclusivity par bal diya hai.
2: Mr. Modi said they have set up a BRICS Digital Center of Excellence for smart grids and energy storage, which will help make clean energy systems more reliable, efficient and accessible. Prime Minister said that the benefits of solutions developed within BRICS should be made adaptable and accessible to meet the needs of the Global South. Mr. Modi further stated that the BRICS Logistics Supply Chain Cooperation Framework will help make supply chains more reliable and resilient. Under the umbrella of innovation, the BRICS Incubator Network will connect startups and incubators. After the conclusion of the session, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral meetings with President of Kazakhstan, Kasym-Jomart Tokayev, President of the Philippines, Ferdinand R. Marcos Jr., President of Egypt, Abdel Fattah al-Sisi, President of South Africa, Cyril Ramaphosa, and President of Burundi, Evariste Ndayishimiye. He will also hold meetings with Vice President of Nigeria, Kashim Shettima, and Vice President of Uganda, Jessica Alupo. The World Health Organization, WHO, has praised the New Delhi Declaration adopted by the BRICS nations during the BRICS Summit 2026. in a social media post that directly

12:11 और 7 सेकंड, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जी हाँ, समय हुआ है आपके पसंदीदा कार्यक्रम का, वो कार्यक्रम जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार, जो आता है हर रविवार, वो जो एक फिल्म थी। आज आपके साथ हूं मैं आशीष, नमस्कार। दोस्तों, हर रविवार की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने दौर की एक सुपरहिट फिल्म, यादगार फिल्म। और आज की फिल्म है 1978 में रिलीज फिल्म अखियों के झरोखों से, जिसमें रंजीता और सचिन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई और हिरेन नाग ने इसका किया निर्देशन। इसका निर्माण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसमें रविंद्र जैन थे गीतकार और संगीतकार। कहानीकार थे मधुसूदन कालेलकर और कैमरे का जादू बिखेरा था अनिल मित्रा ने। यह फिल्म 1970 में एरिक सेगल के उपन्यास लव स्टोरी से प्रभावित थी। फिल्म की कहानी सुनाने से पहले क्यों ना आपको यह बता दें कि किस कलाकार ने कौन सा किरदार निभाया। सचिन ने रोल निभाया अरुण प्रकाश का, रंजीता थी लिली फर्नांडिस के किरदार में, मदनपुरी थे अरुण के पिता के रोल में इफ्तिकार डॉक्टर प्रधान, उर्मिला भट्ट थी रूबी फर्नांडिस जो कि लिली की माँ होती हैं। इसके अलावा हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय डॉक्टर रोड्रिक्स के किरदार में थे और मास्टर राजू थे। और कहानी शुरू होती है अरुण से, अरुण जो एक बैरिस्टर का बेटा है और खुद को छात्रों का लीडर मानता है। जी हाँ, वो कॉलेज में है और हमेशा अव्वल आना उसकी फितरत में आ चुका है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, खेलकूद हो या फिर कल्चरल इवेंट्स क्यों ना हो। दूसरी स्थान पर आना उसको अपने एक तरह से अभिमान को ठेस पहुंचा हुआ लगता है, लेकिन समय तो समय है। एक दिन ऐसा आता है कि निजी नर्सिंग होम में काम करने वाली की बेटी लिली फर्नांडिस उस कॉलेज में एडमिशन लेती है और उससे बेहतर प्रदर्शन करती है। ये बात अरुण को बर्दाश्त नहीं होती और वो सोचता है कि किस तरह से लिली की लोकप्रियता को कम करे। बस हर रोज उसको नीचा दिखाने की सोचता है कि किसी तरह से पूरे कॉलेज में उसकी धाक बने और लिली उसके सामने घुट

टेक दे। हालांकि एरोन द्वारा उसे कमतर आंकने के प्रयासों के बावजूद लिली उसके और उसके दोस्तों की छींटाकशी और व्यंग्य को सहन करती रहती है। उसके प्रति अपने मन में कोई दुर्भावना, कोई बुरे विचार नहीं रखती है। अब लिली को नीचा दिखाने के लिए एक सुनहरा मौका मिलता है, क्या अरुण को, और वो ये कि कॉलेज का होता है म्यूजिक फेस्टिवल, स्टेज पे दोनों की होता है मुकाबला। अब इस दोनों के मुकाबले में भला कौन जीतता है, ये तो वक्त ही बताएगा।

समय के साथ जब समय बीतता है तो अरुण को पता चल जाता है कि जिस लिली को वो गलत समझता था, घमंडी समझता था, स्वाभिमानी समझता था, दरअसल वो तो बेहद ही मिलनसार और एक अच्छी लड़की है। उसके गुणों को सराहने लगता है और लिली भी अरुण की अच्छाइयों से वाकिफ धीरे धीरे होने लगती है और दोनों एक दूसरे की बेहद इज्जत करने लगते हैं। धीरे धीरे वो इज्जत जो है दोस्ती में बदलती है, दोस्ती फिर प्यार में बदलती है और प्यार एक दूसरे के साथ इजहार करने के लिए रोजाना लिली और अरुण की मुलाकातें बढ़ती हैं।

लिली और अरुण का प्यार लिली की माँ से छुपता नहीं है। जहाँ अपनी बेटी और अरुण के बीच पनपते प्यार को वो देखती है, अरुण को पसंद भी बहुत करती है, लेकिन वो डरती है समाज से, क्योंकि एक तो धर्म अलग, दूसरा वो बहुत बड़े परिवार से नहीं है, अमीर नहीं है, और अरुण जो है एक बैरिस्टर का बेटा है और बहुत अमीर है, इकलौता बेटा। धर्म अलग है और साथ ही साथ अमीरी गरीबी का फासला भी बहुत है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को प्रस्ताव देते हैं और सुझाव देते हैं कि हमें अपने बच्चों की खुशी देखनी चाहिए और बच्चों की शादी करने की उनको अनुमति दे देनी चाहिए। बस फिर क्या था, मनमांगी मुराद मिल जाती है लिली को भी और उसकी माँ को भी, और लिली के तो मानो पंख लग चुके हैं। अरुण भी अपने आप को भाग्यशाली मानने लग गया है, क्योंकि जो उसने चाहा वो उसे मिला।

जरूर। 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

11:42 और 55 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी और आज की फिल्म है 1978 में रिलीज हुई फिल्म अखियों के झरोखों से।

इंसान जो चाहे अगर वो उसे मिलता जाए तो फिर कहना ही क्या, चाहता कुछ और है लेकिन किस्मत में भाग्य में लिखा कुछ और होता है। कुछ इसी तरह हुआ लिली और अरुण के साथ भी। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक लिली बीमार पड़ जाती है और डॉक्टर्स जब डायग्नोस करते हैं तो पता चलता है कि उसे ल्यूकेमिया हो गया है, वो भी लास्ट स्टेज। दूसरी तरफ अरुण ऐसा व्यवहार करता है लिली को कि जैसे कुछ गलत हुआ ही नहीं, सब ठीक हो जाएगा, उसकी हिम्मत बंधाता है। शुरू शुरू में लिली भी खुश रहने की कोशिश करती है लेकिन दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। शुरू में डॉक्टर्स को भी लगता है कि वो लिली को बचा लेंगे लेकिन आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब लिली आखिरी सांस लेती है अरुण की बाहों में।

लीली के जाने के बाद अरुण मानो तबाह सा महसूस करता है, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई है, और दिन रात वो लीली के शोक में ही डूबा रहता है। और उसी कॉलेज में जाता है जहां उसने कभी पढ़ाई की थी और लीली के साथ वक्त गुजारा था, और एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, एक अच्छी जिंदगी के लिए सपने देखे थे। और दिन रात बस लीली की ही यादों में रहता है। उसे जो लीली से वादा करता है, समुद्र के किनारे जाता है, फिल्म का समापन वहीं होता है, और वहां पर वो ये वादा करता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। ये भी स्वीकार करता है कि लीली उसके जीवन में एक प्रेरणा थी और हमेशा ही रहेगी।

श्रोतो, ये थी फिल्म अखियों के झरोकों से की कहानी और गीत। उम्मीद है आपको गीत और कहानी पसंद आए होंगे। जहां तक गानों की बात करें तो 200 गाने लाजवाब हैं, सभी गाने जो आज भी कानों में मधुर रस घोल देते हैं। आज की आपाधापी के दौर में ये गाने मानो सुकून पहुंचाते हैं। संगीतकार गीतकार रविंद्र जैन ने गायक कलाकार शैलेंद्र सिंह और हेमलता के साथ मानो जादुई काम किया। चाहे भजन हो या कोई भी गाना हो, इस फिल्म का सभी यानी कह सकते हैं कि एक तरह से अमर हैं। और इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला, इस फिल्म को लोगों ने सराहा, सर आंखों पर रखा। और 2011 में राजश्री प्रोडक्शंस ने अखियों के झरोखों का सीक्वल बनाया, जिसमें मूल कलाकारों में सचिन और रंजीता ही थे। सीक्वल का नाम था जाना पहचाना, जान पहचान, और इसमें लिली की मौत के बाद अरुण के जीवन को दिखाया गया था। रंजीता ने एक नया किरदार निभाया जो लिली की तरह दिखती थी। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई। इसे भी लोगों ने बहुत सराहा, क्योंकि राजश्री प्रोडक्शंस की जितनी भी फिल्म्स होती हैं, आप जानते हैं कि पारिवारिक फिल्मों का ही ताना बाना होता है, उसके इर्द गिर्द ही बुनी जाती हैं। तो ये थी फिल्म की कहानी और गीत। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार और 1:10 पर आपसे फिर भेंट होगी। कार्यक्रम मधुर तरानों का है, दिल ढूंढता है। इंतजार रहेगा मुझे आपका।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने यह

0: कही।
1: इंफेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
0: श्री मोदी ने बताया कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली पर आम सहमति बन गई है। आपदा प्रबंधन के लिए भी पूर्व चेतावनी डेटा एकीकरण दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री कजाखस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं टिका सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले तीन दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर, बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला भी दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

1:11 और 2 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम दिल ढूंढता है। वो सदाबहार गीत जो कल भी दिल के बेहद करीब थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, जिन्हें बार बार सुनने का गुनगुनाने का मन करता है। ऐसे ही गीतों को लेकर हाजिर हूं मैं, आशीष नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म जिगरी दोस्त के उस यादगार गीत से जिसे गाया है मोहम्मद रफी साहब ने। संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

1:22 और 48 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz कार्यक्रम आप सुन रहे हैं दिल ढूंढता है। एक और मधुर तराना इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश आपकी नजर करते हैं। फिल्म है शोर, गायक कलाकार मन्ना डे, महेंद्र कपूर और श्यामा चित्र, और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार इंद्रजीत सिंह तुलसी। इस गीत का आनंद लीजिए और इस गीत के बाद आप सुनेंगे संस्कृत साप्ताहिकी।

0: एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। विघ्नविनाशकस्य मङ्गलस्वरूपस्य च भगवतः श्रीगणेशस्य स्मरणेन भारतीयपरम्परायां सर्वेषां शुभकार्याणाम् आरम्भः भवति। अयि गणेश भक्त्या संस्कृत सेवया च समन्विताः सुधय श्रोतारः संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य अस्मिन् नवीनांके भवतां सर्वेषां सादरं स्वागतं करोमि। इयम् अहं रचा झा। श्रोतारः आगच्छन्तु कार्यक्रमस्य शुभारम्भे सदाचारस्य सन्देशेन समन्वितं श्रेष्ठ जीवनाय प्रेरणाप्रदं च सुभाषितं श्रूयन्ताम्। तच्च प्रस्तौति मम सहयोगी पुनीत त्रिपाठी।
1: मोक्षो विषय वैरस्यं बन्धो वैषयिको रसः एतावदेव विज्ञानम् यथेच्छसि तथा कुरु। अर्थात विषयों से उदासीन होना मोक्ष है और विषयों में रस लेना बंधन है। ऐसा जानते हुए मनुष्य की जैसी इच्छा हो वैसा आचरण करना चाहिए।
0: अहो समीचीनम्। अधुना क्रमो वर्तते प्रसंग प्रभागस्य यत्र मम सहयोगी जतिन शर्मा श्रावयति गणेश भक्ति भाव समन्वितं श्री गणेश पंचरत्नम्।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के मुल्कों के एतमाद में इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने टेक्नोलॉजी और अहम मादनियात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ तंबीह की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर कजाखिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और ब्रुंडी के सुदूर के साथ दो तरफा बातचीत करने वाले हैं। भारतीय रेलवेज में अगस्त के महीने में बारबरदारी के एतबार से सालाना बुनियाद पर 5.4% की शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई। गुजरात के उकाई खित्ते में 11 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत के कई जनूबी जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इंडोनेशिया में 240 से ज्यादा अफराद को ले जाने वाला एक बहरी जहाज उलट गया। तकरीबन 140 मुसाफिर और अमले के अहलकार लापता बताए गए हैं। और ख्वातीन क्रिकेट में आज दुबई में T20 एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आलमी सतह पर वबाई बीमारियों, आबोहवा की तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात और सप्लाई निज़ाम में रुकावटों से ये जाहिर हो गया है कि एक दूसरे से मुंसलिक आज की दुनिया में कोई भी बुहरान किसी एक खित्ते तक महदूद नहीं रहता। जनाब मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के खुले इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ब्रिक्स मुल्कों ने इसीलिए ग्रुप के अंदर मजबूती बढ़ाए जाने पर खास जोर दिया है। मजबूती, इख्तरा, ताउन और पायदार तरक्की के मौजू पर इजलास में जनाब मोदी ने चैलेंजों की बरवक्त निशानदेही, इसके लिए तैयारी और फौरी कार्रवाई किए जाने पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतादी बीमारियों की रोकथाम और इस सिलसिले में इकदाम करने के लिए ब्रिक्स के मरबूत पेश आगाही निज़ाम के बारे में इतफाक राय कायम हो गया है। जनाब मोदी ने कहा कि कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने के लिए पेश आगाही से मुतालिक डेटा को मरबूत करने के सिलसिले में रहनुमा खतूत मुरतब किए गए हैं।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इंफेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: जनाब मोदी ने ये तंबीह की कि टेक्नोलॉजी और अहम मादनियात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से तरक्की के रास्ते में रुकावट पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स मुल्कों ने टेक्नोलॉजी इख्तियार करने में सबकी शमूलियत पर जोर दिया है।
1: टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: जनाब मोदी ने कहा कि स्मार्ट ग्रिड और तवानाई के स्टोरेज के लिए उम्दा कारकर्दगी से मुतालिक एक ब्रिक्स डिजिटल सेंटर कायम किया गया है, जिससे माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के निज़ाम को और ज़्यादा भरोसेमंद, मौसर और ज़्यादा काबिल रसाई बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्रिक्स ग्रुप में निकाले गए हल्के फ़ायदे ग्लोबल साउथ की ज़रूरियात पूरी करने की खातिर दस्तियाब कराए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि ब्रिक्स लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ताउन फ्रेमवर्क से सप्लाई निज़ाम को और ज़्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनाने में मदद मिलेगी। इख्तरा के मरबूत निज़ाम के तहत ब्रिक्स इनक्यूबेटर नेटवर्क स्टार्टअप इदारों और इनक्यूबेटर्स को बाहम मुंसलिक करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज भी मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ दो तरफा मीटिंगें कर रहे हैं। इनमें कजाखिस्तान के सदर कासिम

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में एक बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। यह भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
0: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिशकनक, आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए इस ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
0: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
2: देखिए संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की, जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
3: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से लेकर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक है, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
0: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
4: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।

0: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
1: यह बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है। और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है। और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो

0: वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परंपरा का स्वामी है।
1: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
0: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गीर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आइए सुनते हैं नाटक जिंदगी का बोनस। लेखक डॉक्टर सचिदानंद जोशी, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
1: उस रात दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला, श्री गुरु नानक देव जी को जहां ईश्वरीय प्रकाश प्राप्त हुआ, उस स्थान यानी सुल्तानपुर लोधी जाने के लिए हमें वहां गुरु जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर एक प्रस्तुतिकरण करना था। एयरपोर्ट पर बैठे ख्याल आया कि क्यों ना श्री गुरु नानक देव जी से संबंधित मिनिएचर पेंटिंग्स की भी एक प्रदर्शनी लगाई जाए। फोन लगा दिया डॉक्टर दलजीत कौर जी को। दलजीत कौर यानी देश की जानी मानी एक्सपर्ट मिनिएचर पेंटिंग्स की जानी मानी क्यूरेटर, लेखिका और ऐतिहासिक विषयों की गहरी जानकार। फोन बजा, लंबी घंटी गई, उन्होंने उठाया नहीं। इतने में फोन बजा, उन्हीं का था, किसी दूसरे नंबर से।
2: माफ कीजिएगा सर, मैं कान में तकलीफ के कारण सुन नहीं पाई। वैसे भी यहाँ नेटवर्क की समस्या है, इसीलिए दूसरे फोन से फोन कर रही हूँ।
1: फिर मैंने उन्हें विस्तार से अपना विचार बताया और अमृतसर जाने का प्रयोजन भी।
2: जी मैं जरूर करूंगी ये काम, अभी से जुट जाती हूँ। हाँ, आप जब आएंगे तो प्रदर्शनी का राइट अप और ब्लूप्रिंट तैयार ही मिलेगा आपको।
1: अच्छा ये बताइए, आप कभी गई हैं सुल्तानपुर लोधी?
2: नहीं नहीं, लेकिन वहाँ जाने की इच्छा हमेशा रही। हाँ
1: चलिए, अब आपका जाना होगा कई बार।
2: जी देखिए, जैसी वाहे गुरु जी की इच्छा।
1: अगले दिन सुबह अमृतसर में जब मोबाइल का वाईफाई शुरू किया तो मैसेज धड़ आने लगे। उधर से एक दलजीत जी का भी संदेश आया था 7:52 पर। उन्होंने नंदलाल बोस की बहुत सुंदर पेंटिंग भेजी थी दुर्गा माँ की। पेंटिंग इतनी सुंदर थी कि आनन फानन में उसे अपना इस वर्ष का पूरा ग्रीटिंग बनाकर सभी मित्रों और परिवारजनों को भेज दिया। सबने उसे बहुत पसंद किया। दिन भर वहां पर अलग अलग अधिकारियों से कलाकारों से मीटिंग थी। सुल्तानपुर लोधी में अपनी सारी मीटिंग्स खत्म करके जब हम गेस्ट हाउस से बाहर निकले, शाम के 6 बज रहे थे, तो हमारे एक मित्र मिले, डॉक्टर गौर। उन्होंने बताया
3: हमारी टैगोर स्कॉलर डॉक्टर दलजीत कौर नहीं रही।
1: खबर पर कैसे विश्वास करें, जिनसे अभी कुछ घंटों पहले बात की हो, जिनका अभी थोड़ी देर पहले मैसेज मिला हो, वो अचानक कैसे चली जाती हैं। मैंने तुरंत उनके पारिवारिक मित्र और सहयोगी डॉक्टर माथुर को फोन लगाया, वो अस्पताल में ही थे। उन्होंने बताया
3: अचानक उनका बीपी लो हुआ और
1: सब कुछ अकल्पित और अप्रत्याशित था। कम ही वर्षों का साथ था, इतने कम समय में इतना स्नेह, इतनी आत्मीयता, जैसे मानो वर्षों का साथ हो। मिनिएचर पेंटिंग्स पर न जाने कितनी पुस्तकें हैं उनकी। एक के लोकार्पण में अतिथि के रूप में जाने का भी सौभाग्य मिला, वो भी उनकी ही जबरदस्ती थी।
2: आपको आना ही होगा। हाँ कह देती हूँ, वैसे कार्ड में नाम दे रही हूँ आपका।
1: अभी कुछ दिन पहले अपर्णा कौर जी ने कुछ पुस्तकें भेजी उन्हीं के हाथों। अभी कहीं बाहर गईं तो याद से कुछ ले आई मेरे लिए। यहाँ तक कि एक बार कहीं अच्छी पेस्ट्री दिखी तो वो भी ले आई ऑफिस में।
2: अरे भाई हर समय आप बस काम में ही डूबे रहेंगे। ये लीजिए, देखिए मैं क्या लाई हूँ आपके लिए।
1: अरे पेस्ट्री। अरे वाह वाह वाह वाह,
2: बहुत स्वाद है, खाकर देखिए। आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं ना, इसीलिए हक से कह देती हूँ आपको। हाँ भाई, अब कुछ फॉर्मेलिटी तो मेरे से होती नहीं। हाँ आपको कह दिया कि आप मेरे छोटे भाई जैसे हो तो हो बस।
1: जीवन अनिश्चित ही है लेकिन कितना, इसी अनिश्चितता के बीच हम मिलते हैं बंटी और बबलू से। किस्सा कुछ यूं है कि अभी कुछ दिन पहले हम अजमेर से शताब्दी एक्सप्रेस में आ रहे थे। यदि आपने शताब्दी में हाल ही में यात्रा की है तो आपको याद होगा कि इसमें सीटें दोनों तरफ मुंह की होती हैं और बीच की 10 सीटें आमने सामने मुंह की होती हैं। उनके बीच में एक टेबल होता है, उन सीटों पर यदि आप बैठें तो आपको मुख्य अतिथि का सा एहसास होता है। सब लोग अपने आगे पीछे और हम बीच में हॉट सीट पर। बहुत दिनों से हसरत थी कि एक बार उन सीटों पर बैठकर सफर का आनंद लिया जाए। इस बार किस्मत खुल गई और हमें वो सीट मिल गई। हम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अभी सामान रखकर हम स्थिर हुए ही थे कि किसी बुजुर्ग महिला की भारी आवाज ने हमें चौंका दिया।
2: बबलू, ए बबलू, इधर इधर आ जा।
1: हमने देखा कि दूसरी तरफ वाली हमारी जैसी सीट पर बैठी एक बुजुर्ग महिला आवाज दे रही थी। अपने साथ आए लड़के या नाती या पोते को आवाज लगा रही होंगी, हमने अंदाजा लगाया। इतने में उन्होंने दोबारा आवाज लगाई।
2: अरे बबलू, दिखाई नहीं दे रहा तुझे, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। अरे बावला है, वही देख रहा है आसपास। हाँ, ये नहीं कि जरा इधर भी देख ले।
1: उनकी इस अदा पर कुछ प्रतिक्रिया करते इसके पहले आवाज आई।
4: आ रहा हूँ दीदी, जरा ये बीच का सामान निकल जाए, फिर आता।
1: आवाज सुनकर हम आश्चर्य में पड़ गए। आवाज तो बुजुर्ग की थी, बबलू नाम को तो सूट करने वाली थी ही नहीं। हमने पीछे मुड़कर देखा, लगभग उन महिला की ही उम्र के एक बुजुर्ग लोगों के बीच से सामान के ऊपर से रास्ता बनाते हुए हमारी सीट की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में लोगों से कहते जा रहे थे,
4: अरे निकलने दो यार, अरे हमें वहां जाना भाई।
1: और अंततः थोड़ी मशक्कत के बाद वो हमारी सीट के पास आ पहुंचे।
2: अरे बबलू, आ जा, इधर आ मेरे पास।
4: अरे लो दीदी, तुम यहाँ बैठी हो।
2: हाँ।
4: और वाम ढूंढ रहे तुम्हें, अरे 62 नंबर पर।
2: अरे हाँ वही, लेकिन वो सीट ना हमें जरा भी अच्छी नहीं लगी। हाँ बबलू,
4: क्यों?
2: ये बीच वाली सीट है ना, ये अच्छी है। हाँ, हम यही बैठेंगे।
4: अरे
2: तू भी बैठ, बैठ ना ये इधर सामने वाली सीट पर, फिर हम दोनों भाई बहन घंटों बतियाएंगे, बातें करेंगे।
4: लेकिन दीदी, वो मेरा तो 21 नंबर है।
2: तो क्या हुआ, जो इधर आएगा उसे वहां भेज देंगे।
4: हाँ दीदी, ये डिब्बा नंबर क्या है?
1: फिर दोनों भाई बहन डिब्बा नंबर खोजने में लग गए। हमने उनकी मदद की और बताया कि ये C8 है। जानकारी मिलने पर बबलू बोले,
4: दीदी मेरा C2 है।
2: ऐसा कैसे हुआ भाई, हमने तो 7 टिकट कटवाया था, फिर 7 जाने का फायदा क्या हुआ? हाँ, हमने तो 7 इसीलिए टिकट लिए थे ना कि हम दोनों बातें करते हुए चलेंगे। कितने सालों बाद तो ये मौका मिला है।
4: अरे सालों का? हाँ दीदी, अरे गोकुल की शादी में तो मिले थे हम।
2: हाय हाय, वो तो ठीक है, पर उसको भी तो 2 साल पूरे हो गए। हुए कि नहीं बता तू मुझे?
4: दो साल?
2: हिसाब लगा ले, 2 साल हो चुके हैं।
4: अरे दो का? हाँ दीदी, का कैसी बात करते हो?
2: मुझे तो लगता है कि 3 ही हो गए। हाँ।
4: अरे 3 कैसे हो गए दीदी, कमाल की बात कर रहा
2: हूँ।
4: अरे नहीं दीदी, का 2 साल
2: बोल रही हूँ, 3 हो गए। हाँ, पूरे हिसाब लगा ले उंगली पे।
4: 2 दीदी, 2।
2: अरे 3।
4: अरे नहीं दीदी, 2।
2: अरे हम कह रहे हैं ना 3।
4: 2।
2: अरे 3।
4: 2।
2: 3।
4: अच्छा चलो 2.5।
2: हाँ चल ठीक है, मान लेते हैं तेरी बात, 2.5 ही।
1: फिर दोनों इस बात पर थोड़ी देर बहस करते रहे कि गोकुल की शादी को 2 साल हुए हैं या 3। हमें लगा कि गोकुल को आकर यह झगड़ा निपटाना पड़ेगा। अंततः 2.5 साल पर बात पक्की हुई।
2: लेकिन बता तो, वो भी भला कोई मिलना हुआ ना, वहां रुकने का सही इंतजाम ना, खाने पीने का, अरे कहां फंस गए थे?
4: लेकिन दीदी, यहाँ इस सीट वाले आए तो उठना ही पड़ेगा ना।
2: आए तू बैठ ना, बैठ आराम से बैठ, वो यहाँ आएंगे तो उन्हें हम अपनी सीट पर भेज देंगे।
4: ये बात ठीक।
1: दीदी का कॉन्फिडेंस गजब का था। वो उन्हें और उनके भाई को ऐसी अलग अलग सीट दिए जाने के लिए रेलवे को कोसे जा रही थी। हम लोग अपना काम धाम छोड़कर दीदी को देखने में लगे थे, तभी बबलू जी ने फोन लगाया, शायद अपने बेटे को।
4: अरे हाँ राजू, हम बैठ गए हैं। हाँ बंटी दीदी यही है भाई, अरे उन्हीं के पास तो बैठे हैं,

0: चिंता मत करो। और गुड्डू को कहना भाई 9:30 पर आ जाए वो गुड़गांव स्टेशन पर।
1: हम आश्चर्य में थे, तो ये बंटी और बबलू की जोड़ी है, वाह। तभी उन सीटों के हकदार भी आ गए, कॉलेज जाने वाले दो लड़के थे। बंटी दीदी का रौब देखकर ऐसे सकुचा रहे थे मानो उन्होंने वो सीट लेकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बंटी दीदी उन्हें समझा रही थी।
2: देखो भाई, हम दोनों भाई बहन अब यहीं बैठकर बातें करते चलेंगे अलवर तक। हाँ, तो इसीलिए तो हमने ये टिकट साथ साथ करवाया था। सुनो, तुम तो जवान हो बेटा, बैठ जाओ कहीं भी। हाँ बैठ जाओ।
1: दोनों बेचारे अपना समूह लेकर सीट की तलाश में निकल गए। बंटी दीदी ने उनकी परवाह किए बगैर अपनी थैली में से अंगूर और नमकीन निकाला और खाना शुरू कर दिया। बबलू से भी आग्रह किया।
2: बबलू, अरे भाई ले ले, तेरी पसंद का नमकीन लाई हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना भाई।
0: अरे पसंद तो है दीदी, पर दीदी अब दांत कहाँ है, चबाते नहीं बनता।
2: अरे तेरी क्या पूरी दाढ़े भी निकल गई?
0: अरे नहीं नहीं, सिर्फ दो बचे।
2: अच्छा।
1: फिर बबलू ने अपना स्वास्थ्य बुलेटिन शुरू किया।
0: बहुत रहती है भाई।
2: अच्छा,
0: कफ भी तो बहुत रहता है।
2: हाय हाय मेरा भाई।
0: और अब तो भाई नींद की भी थोड़ी सी परेशानी होने लग गई।
1: बुलेटिन शायद और चलता, तभी टीसी महाशय आ गए। हमें भी उत्सुकता थी कि बंटी दीदी टीसी से कैसे निपटेंगी, लेकिन उन्होंने टीसी पर ऐसे हल्ला बोला मानो दोनों को अलग सीट देने में उसकी ही गलती हो।
2: ए भाई साहब, अब बताओ हम कैसे जाएंगे बात करते करते। हाँ,
3: अरे कभी कभी तो मौका मिलता है।
2: अरे भैया तुम तो ऐसा करो, ये हमारी भाई की सीट भी ना बस यही कर दो। हाँ यही। हाँ,
3: लेकिन
2: बस अब हम तो सीधे अलवर में ही उठेंगे। हाँ, उसके बाद दे देना ये सीट जिसे तुम चाहो। समझ गए ना ठीक से?
1: टीसी बेचारा परेशानी में पड़ गया। वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि C2 कोच का टीसी दूसरा है और अलवर के बाद तो कोई बैठता नहीं इस डिब्बे में।
2: अब ये सब तो भैया तुम ही जानो। हाँ, हमने तो बस कह दिया, बस हो गया। ले मेरे भाई, ले तू अंगूर तो खा, आराम आराम से खा। चबाइयो मत।
1: हमें टीसी पर दया आ गई। दया उन दोनों पर भी आई थी जो अपनी सीट छोड़ इधर उधर बैठने की जुगाड़ कर रहे थे। इन दोनों के सीट हथियाने के कारण पूरे कोच में काफी एडजस्टमेंट करने पड़ रहे थे जिसकी इन्हें खबर नहीं थी। बंटी दीदी फोन पर जोर जोर से बात कर रही थी, शायद अपने बेटे से। उनका उसे भी हिदायत देना जारी था।
2: अरे अज्जू बेटा, हाँ अकेले ही आना स्टेशन। हाँ, सबको मत लाना। और सुन, बहू से कहियो खाना ज्यादा ना बनाए। रात को हमसे ज्यादा खाया नहीं जाता। हाँ समझ गया ना?
1: ट्रेन अपनी गति पकड़ चुकी थी और हम अपने काम में व्यस्त थे। बीच में निगाह जाती तो देखते वो भाई बहन अपनी बातों में मशगूल थे। बीच बीच में बहन भाई को हिदायत देती स्वास्थ्य के बारे में, बहुओं से कैसे पेश आना चाहिए इस बारे में। भाई भी फिर अपनी परेशानी बताता।
0: दीदी अब बीच में डकार आ जाए खाने के तो क्या करूं मैं, बताइए। अब मैं कोई जानकार थोड़ी हूँ, इतने भी उन्हें गुस्सा आ जाता।
2: अरे नहीं चलता, ये आजकल की लड़कियों को ना ये सब डकार वकार नहीं चलते। हमें ही संभल कर रहना चाहिए मेरे भाई, उन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ।
0: अब कितना भी चलो उनके हिसाब से, दो रोटी भी चैन से खाने नहीं देते। हाँ।
2: मैंने तो इसीलिए ना बहू को अच्छे से समझा दिया है और अपने तौर तरीके भी सब बता दिए हैं। हाँ वैसे भाई मेरी बहू बहुत लाड़ करती है ना, एकदम पीछे चली जाती है।
1: इस संवाद के बीच में वो फोन भी लगा लेती थी।
2: हेलो हेलो, हाँ हाँ बिटवा, हाँ मैं बोल रही हूँ काकी। अरे हाँ बिटवा, कैसे हो? हम तो ठीक हैं, अलवर ही जा रहे हैं। हाँ, अरे बबलू भी हमारे साथ है। हाँ, अरे नहीं बहुत ध्यान रखता है हमारा। अरे भाई हो तो ऐसा हो।
1: अब सबको बताना जरूरी होता है ना कि बबलू भी साथ में है।
2: अरे घर में सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना कि मैं कब पहुंचूं, इसीलिए बार बार फोन करे जा रहे हैं।
1: वैसे किसी और का वार्तालाप सुनना शिष्टाचार।

0: विचार की परिधि में नहीं आता, लेकिन उनका संभाषण इतने तीव्र स्वर में था कि न भी सुनना चाहें तो भी पूरा सुनाई दे रहा था। नींद आना संभव नहीं था। इस बीच ट्रेन में नाश्ता भी आया और भोजन भी। हम बंटी और बबलू की बातचीत सुनते अलवर कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। बंटी दीदी ने फिर फोन लगाया बेटे को।
1: अरे बिटवा, तुम आराम से आना। हाँ, बबलू मामा है ना, वो हमें उतार देगा स्टेशन पर। हाँ, क्या गड्डी भी आ रही है? अरे तुम लोग तो क्या मेरा जुलूस निकलवाओगे? कहा ना मैं उतर जाऊंगी। हाँ,
0: अलवर स्टेशन आया, बंटी दीदी उतरी, अपना सामान तो ले ही गई, साथ में अपनी और अपने सहयात्रियों की सील्ड पानी की बोतलें भी ले गई। सहयात्री उनके दबदबे से इतने आतंकित थे कि ये तक नहीं कह पाए कि ये हमारी बोतलें हैं। बबलू भैया ने उन्हें हिफाजत से प्लेटफॉर्म पर उतार दिया। ट्रेन चल पड़ी। अब बबलू भैया अकेले थे, लेकिन फिर भी अपनी मूल सीट पर जाने को तैयार नहीं थे। वो दीदी द्वारा उनके लिए प्रेम से लाए गए अंगूरों को खत्म करने में व्यस्त हो गए थे। जिनकी वो सीट थी वो बेचारे एक बार फिर आए, इस आस में कि शायद अब उन्हें अपनी सीट पर बैठने का मौका मिल जाए। बबलू जी ने उन्हें यूं देखा मानो पहली बार देख रहे हों। बेचारे अपना सा मुंह लिए वापस चले गए। तभी बबलू जी को दीदी की याद आ गई और उन्होंने फोन मिलाया।
2: अज्जू, अरे बेटा अरे बेटा, तुम स्टेशन पहुंचे के नहीं? अरे लो भाई, अरे ट्रेन तो कब की पहुंच चुकी है क्या? अरे मैं तो उन्हें वहीं बैठा आया था भाई, बेंच पर चाय वाले के पास। हाँ हाँ हाँ, आधा घंटा तो हो गया होगा, तुम पहुंचे नहीं थे तो मैं क्या करता भाई? क्या कहा? अभी बाजार नहीं हो? हाँ हाँ, चले जाना बेटा, जरूर चले जाना, नहीं तो परेशान होंगी बेचारी।
0: बबलू जी ने फोन बंद किया और फिर अपने आप से ही बोले,
2: सब जगह एक सा ही है।
0: हम भी आश्चर्य में थे कि इतनी ठसक दिखाने वाली दीदी को लेने उनका बेटा अभी तक स्टेशन पर क्यों नहीं पहुंच पाया था। ट्रेन अब गुड़गांव पहुंचने वाली थी और बबलू जी अपने साथ वाली सीट पर बैठे सज्जन से पूछ रहे थे,
2: भैया गुड़गांव स्टेशन से DLF का ऑटो कितना लेगा भाई, इसका अंदाजा है तुम्हें?
0: उन्हें भी मालूम था कि शायद जैसा स्वागत उनकी दीदी का हुआ है वैसा ही स्वागत उनका भी होने वाला है अपने बेटे के यहां। बड़े बूढ़े कहते हैं कि हार के बाद जीत है जीत की तलाश तो सभी को रहती है। बंटी और बबलू अपने घर की ओर चल पड़े और हम अभी अपने सफर पर हैं। रायपुर से जब ट्रेन में बैठा तो कूपे में अकेला ही था, भोपाल में एक सेमिनार था, सोचा मां पिताजी से भी मिलना हो जाएगा, एक दिन सेमिनार एक दिन घर, इस हिसाब से 2 दिन की तैयारी से निकला था। नीचे की बर्थ थी इसलिए सामान सजाकर लेट गया और पुस्तक पढ़ने लगा। शाम के 4 बजे होंगे, खाली डिब्बा हो तो पुस्तक पढ़ने का आनंद बढ़ जाता है। पुस्तक पढ़ने में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला और दुर्ग स्टेशन आ गया। जब चाय वाला पूछने आया तो पता चला कि दुर्ग आ गया है। ट्रेन में पेंट्री होते हुए भी स्टेशन वाले वेंडर्स का अंदर आकर चाय या नाश्ते की चीजें देने का तमाशा इसी स्टेशन पर दिखाई देता है।
2: जाए जाए जाए जाए,
1: ए भैया ए भैया, ये चाय कितने की है, कब कितने का है, कितने का दिया?
2: ये आपका भी हो गया जी, पूरे पैसे हो गए।
1: अरे इतना महंगा लगाओगे क्या?
0: तंद्रा भंग हुई तो देखा सामने वाली बर्थ पर भी एक सज्जन आ गए थे। उनकी उम्र मेरे बराबर ही रही होगी, उनके पास भी ज्यादा सामान नहीं था। लगता था मेरी ही तरह 1-2 दिन के सफर पर ही निकले हैं। आरंभिक हेलो हाय में मालूम पड़ा कि उनका नाम अतहर अली है और वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर हैं। रहते तो जबलपुर में हैं, किसी काम से भिलाई आए थे
2: भाई। किसी काम से भिलाई आया था, अब सारनी जाना है जिसके लिए घोड़ा डोंगरी उतरूंगा।
0: अच्छा, लेकिन घोड़ा डोंगरी तो आधी रात को आएगा।
2: जी हाँ,

0: ट्रेन सही समय पर हुई तो 2-2.5 बज जाएगा। लेकिन आप चिंता ना करें, देखिए अब आपको डिस्टर्ब किए बगैर उतर जाऊंगा मैं।
1: अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सोच रहा था कि आपकी नींद पूरी कैसे होगी।
0: हाँ जी, कल थोड़ा सा काम है, बाकी पूरा दिन तो सोना ही है।
1: इधर उधर की बातों में राजनंदगांव निकल गया।
0: थोड़ी देर कमर सीधी कर लेता हूँ। अरे कल रात भी सफर किया था।
1: जी जी।
0: ट्रेन में नींद पूरी नहीं हुई।
1: अतहर अली बोले और लेट गए। कूपे में हम दोनों ही थे। टीटीई ने बताया कि नागपुर तक हम दोनों ही हैं इसमें। डोंगरगढ़ से आगे निकलने के बाद ट्रेन की गति धीमी हो गई, बीच बीच में रुकने भी लगी और फिर सलेक्सा पर आकर तो बिल्कुल ही थम गई। जो ही ट्रेन रुकी, अतर अली हड़बड़ाकर उठे। उन्होंने घड़ी देखी और फिर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ गईं।
0: गोंदिया कितनी दूर है भाई साहब?
1: जी राइट टाइम तो 6 बजे का है, लेकिन अब पता नहीं कब पहुंचे। मेरा जवाब उन्हें और ज्यादा अस्वस्थ कर गया। वो उठे और बाहर टीटीई को खोजने चले गए। ट्रेन अचानक बीच में रुकने से थोड़ा चिंतित तो मैं भी हुआ, लेकिन अतहर अली बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। 5 मिनट बाद जब वो लौटे तो उनके चेहरे पर टीटीई से मिलने का भाव तो था, पर उससे संतोषजनक उत्तर न मिल पाने का भाव ज्यादा स्पष्ट था।
0: अब बताइए, हैं? ट्रेन क्यों रुकी?
1: देखिए कोई गंभीर बात जरूर होगी, वरना ऐसे जंगल में ट्रेन क्यों खड़ी करते हैं। तभी वहां टीटी आया और उसने बताया कि आगे गाड़ी का इंजन खराब है, जैसे ही मालगाड़ी हटेगी ये ट्रेन चल देगी, लेकिन मालगाड़ी कब हटेगी कहा नहीं जा सकता। अतहर अली परेशान हो गए। तभी उनका मोबाइल बजा, उन्होंने उसे फौरन उठाया।
0: हाँ बोलो आरिफ बेटा। अरे हाँ हाँ भाई, ट्रेन तो लेट हो ही गई है, अब कब चलेगी कहा नहीं जा सकता। वो मेरा भतीजा था।
1: अच्छा अच्छा।
0: टिफिन लेकर खड़ा है स्टेशन पर।
1: अच्छा।
0: दरअसल वो क्या है कि मेरा रोजा है ना।
1: अब मुझे समझ में आया कि वो इतने बेचैन क्यों रहे थे। अफ्तार का समय क्या है?
0: 6:30 बजे का है जी।
1: मैंने घड़ी देखी, 6 तो बजी रहे थे।
0: अब वो क्या है कि आज ही सुबह जबलपुर से भिलाई आया था काम से, तो शाम को निकलना है भाई। अब गोंदिया में छोटा भाई रहता है, इसलिए उसे कह दिया था कि भाई इफ्तार और सहरी इसका इंतजाम कर दियो भाई। अब भतीजा स्टेशन पर खड़ा है, लेकिन ट्रेन वहां पहुंचे तब ना।
1: मेरे पास आज टिफिन में कोई खास चीज नहीं थी। दोपहर को खाना देर से हुआ था, इसलिए रात के लिए मैंने नेहा से हल्का खाना देने की बात कही थी। उसने 2 रोटी और करेले की थोड़ी सब्जी बांध दी थी। अब दिन भर का रोजा रखने के बाद अतहर अली को करेले की सब्जी खिलाना तो अन्याय होता। तभी ध्यान आया कि नेहा ने कल के लिए मोदक भेजे हैं। कल चतुर्थी थी, वो भी मंगलवार वाली अंगरिका। नेहा ने सोचा यहीं से मोदक बनाकर भेजेगी तो मां का श्रम बच जाएगा। मोदक का डिब्बा बैग में रखते हुए नेहा ने कहा भी था,
2: सुनिए गिनकर 21 ही बन पाए हैं। हाँ। अब क्या है ना, मैं माँ जी की तरह एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, क्या करूँ।
1: अरे माँ इसी में खुश हो जाएंगी कि उनकी बहू ने मोदक बनाकर भेजे हैं।
2: सच्ची?
1: मैं पसोपेश में था कि क्या करूँ। देखिए अतहर अली साहब, चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला कोई इंतजाम कर ही देगा।
0: नहीं साहब, चिंता कुछ नहीं है, रोजा तो पानी पीकर भी खोला जा सकता है
1: जी।
0: अब जैसा ऊपर वाला चाहेगा वैसा ही होगा है? अब मेरी चिंता तो यही है कि वो बेचारा बच्चा स्टेशन पर खड़ा परेशान हो रहा होगा।
1: ट्रेन अभी भी खड़ी ही थी। इस बीच उन्होंने 1-2 बार और अपने भतीजे को फोन किया। इफ्तार का समय हो चला था। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने बैग खोला और मोदक के डिब्बे में से 2 मोदक निकालकर कागज की प्लेट पर रख दिए। नमाज पूरी करने के बाद जो ही वो पानी लेने अपनी बोतल की ओर बढ़े, मैंने वो मोदक की प्लेट उनके आगे कर दी। लीजिए अली साहब, ये अफ्तार लीजिए।
0: हैं? ये क्या है?

0: और कहां से आया भाई?
1: आप पहले अवतार तो लें। मैंने उन्हें चतुर्थी और मोदक का किस्सा सुना दिया।
0: यानी भगवान जी को लगने वाला भोग आपने हमें दे दिया?
1: अरे तो क्या हुआ, ये भी तो भगवान का ही काम है। ये मेरे मुंह से निकल गया, मानो ट्रेन मेरे इसी वाक्य का इंतजार कर रही थी। मैंने इतना कहा और ट्रेन चलने लगी। आधा घंटे की इधर उधर की बातचीत में गोदिया आ गया। घड़ी 7:30 बजा रही थी। ट्रेन रुकते ही आरिफ एक बड़ा सा स्टील का टिफिन और एक मिठाई का पैकेट लेकर डिब्बे के अंदर आया। चाचा भतीजे का मिलाप हुआ। अतहर जी ने आरिफ से मेरा भी परिचय करवाया। आरिफ उन्हें समझा रहा था, दो डिब्बे अभी खाने के लिए और नीचे वाले दो शहरी के लिए हैं। आरिफ उतरा और ट्रेन चल दी। सुबह जब भोपाल स्टेशन आने को हुआ तो नींद खुली। सामने की बर्थ खाली थी, यानी अतहर अली घोड़ा डोंगरी पर उतर चुके थे। पानी पीने के लिए बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया तो देखा उसके पास एक पैकेट मिठाई का रखा था और बोतल के नीचे एक कागज रखा था। कागज खोला तो पाया एक छोटी सी चिट्ठी थी जो अतहर अली ने लिखी थी। मजमून कुछ यूं था,
0: भाई साहब ये सफर ता जिंदगी याद रहेगा। रात को आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। आरिफ से गोंदिया की मशहूर दुकान से स्पेशल मलाई पेड़े मंगवाए थे खास आपके लिए। अब ये मत समझना कि हिसाब किताब कर रहा हूं, अरे वो सब तो ऊपर वाला ही करेगा। बस एक गुजारिश है, आज शाम माँ जी से कहकर इनका भी भोग लगवा देना, भगवान को और हमारे लिए भी दुआ मांग लेना। आपका अतहर।
1: ट्रेन भोपाल में रुकी और मैं अपना सामान लेकर उतर गया। उस शाम गणेश जी को दो दो भोग लगे, नेहा के बनाए मोदक का और अतहर अली द्वारा भेजे गोंदिया के स्पेशल मलाई पेड़े का।

अभी आप सुन रहे थे नाटक जिंदगी का बोनस, लेखक डॉक्टर सचिदानंद जोशी। भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, कमल साथी और सुनीता ठुकराल। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में अपने संबोधन में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
1: अब दुनिया हमसे केवल आइडियाज और कमिटमेंट्स नहीं, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स की अपेक्षा करता है। मुझे विश्वास है कि हम साझा प्रयासों से इन अपेक्षाओं पर जरूर खरे उतरेंगे। न्यू दिल्ली समिट को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन आज भागीदार देशों के मुख्य सत्र में कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया है कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। जहाज के अंतिम ज्ञात स्थान के आसपास तलाश अभियान जारी है। ये नौका पूर्वी जावा से दक्षिण कालिमंतन प्रांत जा रही थी। मौसम विभाग ने आज गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें राज्य के कई हिस्सों खासकर दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नवसारी और वलसाड़ समेत कई जिलों के साथ साथ दमन और दादरा नगर हवेली में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमें बिना कोई मैच हारे फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today said BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions, and the discussions over the past 2 days have further strengthened this conviction. During his concluding remarks at the BRICS session on resilience, innovation, cooperation and sustainability, Mr. Modi hoped that the New Delhi Declaration adopted at BRICS Summit will provide a clear direction for shared vision and future cooperation. He stressed on the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact. He said BRICS nations will work together to ensure that the BRICS framework moves beyond mere documentation and creates a tangible impact in real life.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: Saying that BRICS is poised to enter its third decade, Mr. Modi asserted that the world now expects concrete results from the grouping and not just ideas and commitments. He expressed confidence that BRICS will certainly live up to these expectations through collective efforts. Earlier addressing the open session of the BRICS summit at Bharat Mandapam in New Delhi, Prime Minister Modi today said pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have demonstrated that in today's interconnected world, no crisis remains confined to a single region. Mr. Modi said BRICS nations have therefore placed special emphasis on enhancing resilience among the grouping. In the session on resilience, innovation, cooperation and sustainability, Mr. Modi emphasized that it is equally essential to identify challenges in a timely manner, prepare for them and take immediate action. Mr. Modi cautioned that weaponization of technology and critical minerals can become a hurdle for progress. He said BRICS nations have stressed on inclusivity in adoption of technology.
2: टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: After the conclusion of the session, Prime Minister Narendra Modi had a meeting with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi and the Kazakhstan President Kasim Jomart Tokayev on the sidelines of the BRICS summit. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh today held a meeting with the Deputy Minister of National Defence of Vietnam, Senior Lieutenant General Nguyen Chung Thang, in New Delhi on the sidelines of the BRICS summit. The meeting focused on strengthening the bonds of friendship, advancing regional security, and deepening the bilateral enhanced comprehensive strategy.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत, नगमा है फिल्म अभिमान से, स्वर है किशोर कुमार का।

श्रोताओं लीजिए सुनिए रेडियो किड्स, आज इस कार्यक्रम में बाल प्रतिभागी हैं आरुषि, उपल, सिमरन खत्री, हिमान्या, कामथान, ईरा शर्मा, पार्थ वशिष्ठ, स्वास्तिक प्रजापति, अक्षज रावल, आर्या उपल और द्विशा वशिष्ठ। संचालन है सुहानी, यश, शिखा और निखिल का।

0: नमस्कार मित्रों, आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम हिंदी से जुड़ते नन्हे प्रवासी स्वर। आज हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भले ही सात समंदर पार यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, लेकिन उनके मन में हिंदी की मिठास और भारत के प्रति अपनापन आज भी उतना ही गहरा है। यूके हिंदी समिति के विभिन्न केंद्रों में हिंदी का अध्ययन कर रहे ये बच्चे इन दिनों भारत आए हुए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे इन हिंदी प्रेमियों का। तो चलिए अब हमारे दोस्तों से संवाद करेंगे सुहानी।
1: तो चलिए स्टूडियो में उपस्थित हमारे नन्हे मुन्ने साथी अब हमें अपना परिचय देंगे और मैं तो बहुत उत्सुक हूँ उनके बारे में जानने में, उनकी रुचियाँ जानने में और भारत में अनुभव कैसा रहा उसके बारे में जानने में। क्यों यश?
2: बिल्कुल सुहानी, मैं भी जानने के लिए बेहद उत्सुक हूँ।
1: बिल्कुल, तो चलिए हम शुरू करते हैं आप सभी के नाम से।
3: नमस्ते, मेरा नाम सिमरन खत्री है, मैं लंदन से हूँ और मैं महाविद्यालय में पढ़ती हूँ।
4: नमस्ते, मेरा नाम हेमान्या कमठान है, मैं यूके में मैनचेस्टर शहर से हूँ।
5: नमस्ते, मेरा नाम तविशा है।
6: नमस्ते, मेरा नाम इरा है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
7: नमस्ते, मेरा नाम पार्थ वशिष्ठ है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं लीड में रहता हूँ जो उत्तर इंग्लैंड में है।
8: नमस्ते, मेरा नाम अक्षय चितावल है और मैं लिवरपूल से हूँ।
9: नमस्ते, मेरा नाम स्वास्तिक है और मैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में रहता हूँ।
1: यूके से आए हमारे इन सभी साथियों का भारत में और आकाशवाणी दिल्ली के हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो चलो यश, अब हम इनसे और प्रश्न पूछते हैं। तो मेरा प्रश्न है हेमान्या से। हेमान्या, आप कितने समय से हिंदी सीख रही हैं?
4: जी, मैं हिंदी लगभग 7 से 8 वर्षों से सीख रही हूँ यूके हिंदी समिति के साथ।
1: मेरा अगला प्रश्न है अक्षत से। तो अक्षत, आपको हिंदी सीखने में कठिनाइयाँ कहाँ पे आती है और हिंदी सीखने का सबसे रोचक हिस्सा आपके लिए क्या रहा है अभी तक?
8: मुझको बोलना बहुत हार्ड लगता है और मेरा लिखना थोड़ा भी कमजोर है।
1: अब नई भाषा सीखेंगे तो शुरुआत में कठिनाइयाँ तो आएगी ही, लेकिन हम ये जरूर कामना करेंगे कि आप कुछ समय बाद हिंदी बहुत खूबसूरत तरीके से बोलने लगेंगे। तो चलिए अब हम आगे अपने दोस्तों की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न है कि आप भारत में अभी तक कहाँ कहाँ घूमे हैं, और ये प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी तविशा से।
5: ये हमारा दूसरा दिन है दिल्ली में। आज दोपहर को हम रेलगाड़ी लेके हम भोपाल जाने वाले हैं। उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं वहाँ जाने के लिए, वहाँ घूमने के लिए। ये मेरी दूसरी यात्रा है। मैं पिछली बार भी आई थी यूके हिंदी समिति के साथ और वहाँ हम दिल्ली भी आए थे और उत्तराखंड भी गए थे, हल्द्वानी, नैनीताल, कुसानी, वो भी बहुत खूबसूरत जगह थे। और मैं आशा करती हूँ कि जहाँ हम आगे चलेंगे वहाँ भी हम खूबसूरत यादें बनाएंगे।
2: अब मेरा सवाल जो है वो बतौर हिंदी सिनेमा प्रेमी, मैं खुद भी ये जानना चाहता हूँ कि आप ब्रिटेन में किस तरीके का सिनेमा, भारत से जुड़ा सिनेमा, या कौन सा ऐसा अभिनेता है जिसे आप पसंद करते हैं, जिसके डायलॉग आपको अच्छे लगते हैं? मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा इरा से।
6: ब्रिटेन में मैं हिंदी फिल्में देखती हूँ। मेरा फेवरेट है ओम शांति ओम, और जब वो आते हैं सिनेमा में तो मैं और मेरी मम्मा और मेरे पापा हम सब जाते हैं।
1: इरा, यह तो बहुत अच्छी बात है।

0: तो चलिए अब हमें यह तो पता है कि किसी भी भाषा सीखने के लिए हम बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम साहित्य पढ़ते हैं, हम संगीत सुनते हैं, हम फिल्में देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, है ना। तो मेरा अगला प्रश्न है सिमरन से। तो सिमरन, क्या आपने हिंदी साहित्य अभी तक पढ़ा है? और अगर पढ़ा है तो हिंदी साहित्य में आपको कौन से साहित्यकार अच्छे लगते हैं?
1: जी, जब मैं हिंदी सीख रही थी तो हमें हमारे परीक्षा के लिए कुछ किताबें और कुछ कविताएं पढ़नी थी, पर अभी तक जो मैंने साहित्य पढ़ा है उसमें से मेरे मनपसंद कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, क्योंकि पिछली बार मैं जब इंडिया ट्रिप पे आई थी यूके हिंदी समिति के साथ, तो हमें उनके घर जाने का भी अवसर मिला था और वहां पर मैंने उनकी काफी सारी कविताएं पढ़ी, तो वो मेरे मनपसंद कवि हैं और उनकी कविताएं मुझे बहुत प्रभावित करती हैं।
0: तो अभी आपने उल्लेख किया कि आपको मैथिली शरण जी का कार्य बहुत पसंद है, तो आपको उनकी कौन सी कविताएं पसंद है, उनके कौन से कार्य पसंद है, क्या आप थोड़ा इस बारे में हमें और बता सकते हैं?
1: जी, उनकी एक कविता ऐसी है जो मुझे बहुत प्रभावित करती है। उस कविता का नाम है नर हो ना निराश करो मन को, और ये कविता मुझे इसलिए प्रभावित करती है क्योंकि ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कविता है जो हम सबको ये याद दिलाती है कि कभी भी हार मत मानो, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो।
2: पार्थ, आप बताना चाहें हिंदी को किस तरीके से आप अपने जीवन में लाते हैं?
3: मैं तो बहुत सारी हिंदी फिल्में देख सकता हूँ सब टाइटल्स के बिना, और कुछ हिंदी पुस्तकें भी पढ़ सकता हूँ और अच्छे से और जल्दी जल्दी से, और मैं समझ भी सकता हूँ कि क्या लिख रहे हैं।
2: कुछ कुछ ऐसा हिंदी का आप बताना चाहें?
3: जब मैंने कभी खुशी कभी गम देख लिया तो फिर मैंने देखा और फिर मैंने सब कुछ समझ में आया था क्योंकि मैंने सब टाइटल्स के बिना देख लिया।
2: कोई डायलॉग?
3: कोई डायलॉग नहीं, बट जब तीनों के तीनों वापस लौट कर आए और जब वे लौट कर आए तो फिर वही मोमेंट मुझे पसंद है।
2: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पार्थ।
0: तो चलिए मेरा प्रश्न है पार्थ से। तो पार्थ, क्या आप हमें बताएंगे कि भारतीय संस्कृति में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है?
3: बहुत सारे भारतीय त्योहारों सेलिब्रेट करने में, वही सब मैं पसंद करता हूँ।

0: पता है यश, बहुत देर से मुझ में इतनी उत्सुकता है ना कि मैं हमारी दोस्त तविशा से पूछूं कि तविशा, क्या आपको अपने नाम का हिंदी में अर्थ पता है? क्योंकि मुझे आपका नाम बहुत ही पसंद आया।
1: हाँ जी बिल्कुल, मेरा नाम का अर्थ केपेबल है।
0: अरे वाह, आपको अपने नाम का मतलब भी पता है, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं देख रही हूँ हमारी एक दोस्त है आर्या, वो बहुत देर से चुप बैठी है। तो अगला प्रश्न मेरा आर्या से है कि आर्या, आप बताइए कि आप यूके और भारत दोनों देशों के प्रतिनिधित्व है ना, आप दोनों देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है यूके और भारत में सेम है या यूके और भारत में अलग अलग है?
1: यूके में गाना अलग है और भारत में हिंदी गाने होते हैं और यूके में अंग्रेजी गाने होते हैं।
2: सुहानी, मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पे लोग गानों की बात कर रहे हैं, हम बहुत देर से सवाल जवाब कर रहे हैं, और मैंने ये भी सुना था कि जब हमने बात करनी शुरू करी थी तो कुछ लोग डरे हुए थे कि किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम शायद से थोड़े एक दूसरे के साथ मिलजुल गए हैं, तो मैं आपकी गानों की पसंद जानना चाहता हूं कि आप कौन सा गाना सुनते हैं, भारतीय गाना जो हम आपके लिए यहाँ पे, आप बता सकते हैं स्वास्तिक या आप बता सकते हैं पार्थ?
3: मैं बहुत सारे बॉलीवुड गाना सुनता हूँ, जैसे कि अरिजीत सिंह और दिलजीत दोसांझ को सुनता हूँ।
2: कोई गाना?
3: आज से तेरी।
2: अरे मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई एक जो है एक इनिशिएटिव ले, एक गाना गाने की पहल करे, तो आप कोई गाना जो बॉलीवुड का हो और आप में से कोई गाना चाहे, आप गाना चाहेंगे तविशा?
1: हाँ जी बिल्कुल।
2: और और कोई इरा, आप भी गाना चाहेंगे?
1: हाँ
2: तो
1: जी।
2: आप शुरू करिए गाना।
1: बिल्कुल, मुझे संगीत में बहुत रुचि है, मैं गाती भी हूँ और सितार भी बजाती हूँ। एक गाना गाऊंगी गाइड फिल्म से जिसका नाम है पिया तो से। पिया तो से।

0: बेहद ही खूबसूरत तरीके से आपने इस गाने को गाया और बहुत ही अच्छा गाया आपने। मीरा, आप भी कोई गाना आप गाना चाहें?
1: आज मैं एक गाना सुनाऊंगी जिसका नाम है तेरी।

0: बहुत ही अच्छा गाया और आप सभी ने साथ भी बहुत अच्छा दिया इरा के साथ।
1: अब जाके कहीं हमने सर पे

0: तो इसी उम्मीद के साथ कि अगले सप्ताह आप हमारे साथ फिर जुड़ेंगे रेडियो किड्स पर, मुझे यानी सुहानी को
1: और मुझे यश को
0: दीजिए इजाजत और हम अपना माइक्रोफोन हैंड ओवर करते हैं हमारे दोस्त शिखा और निखिल को।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सुहानी और यश। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने जाना कि दूरी चाहे कितनी भी हो, भाषा दिलों को जोड़ने का काम करती है। यूनाइटेड किंगडम में जन्मे और पले बड़े इन बच्चों ने हिंदी कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हिंदी की यात्रा भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, वह दुनिया के अनेक देशों में नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ रही है। हम इन सभी बच्चों और उनके शिक्षकों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आकाशवाणी दिल्ली से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग

0: के लिए स्पष्ट दिशा देगा। उन्होंने सभी परिणामों को समय सीमा के भीतर ऐसे कार्यों में बदलने की जरूरत पर बल दिया जिनका जमीनी स्तर पर असर दिखाई दे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है। दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है। इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में श्री मोदी ने कहा कि महामारियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं ने यह दिखा दिया है कि परस्पर दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। उन्होंने कहा कि इसलिए ब्रिक्स देशों ने इस समूह के भीतर लचीलापन और संकटों से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने बताया कि संक्रामक प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स रसद आपूर्ति श्रृंखला सहयोग प्रारूप आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक विश्वसनीय और सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्थ तोखायेव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बैठक की। प्रधानमंत्री पिछले दो दिन से दुनिया भर के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। वे आज दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ भी बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। इन बैठकों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने, आपसी सहयोग को और मजबूत करने तथा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा करने का अवसर मिलने की आशा है। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की जबकि अगस्त 2025 में ये आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 2040 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने के बाद लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। जहाज के अंतिम ज्ञात स्थान के आसपास तलाश अभियान जारी है। ये नौका पूर्वी जावा से दक्षिण कालीमंतन प्रांत जा रही थी। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमें बिना कोई मैच हारे फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today said BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions, and the discussions over the past 2 days have further strengthened this conviction. He said this during his concluding remarks at the BRICS session on resilience, innovation, cooperation and sustainability at the Bharat Mandapam in New Delhi. Mr. Modi hoped that the New Delhi Declaration

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
2: श्रोताओं, लीजिए सुनिए किशोर कुमार को, फिल्म है अनोखी अदा, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
3: दिलों का न पूछो सनम आपका।

0: जरूर। 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: लीजिए सुनिए फिल्म आराधना का एक गाना, स्वर है किशोर कुमार का।

रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन सूचित कर रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारियों तथा ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती के लिए साझा भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

0: और आवेदन की समय अवधि 1 सितंबर 2026 को शुरू हो चुकी है और 21 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन नवंबर 2026 में किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभिक नवंबर दिसंबर 2026 में हो सकती है और परिणाम घोषित किया जाएगा दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 में। ऑनलाइन परीक्षा मुख्य आयोजित की जाएगी दिसंबर 2026 अथवा जनवरी 2027 में। उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत जानकारी और अपडेट के लिए IBPS की अधिकृत वेबसाइट का नियमित अवलोकन करें। वेबसाइट है www.ibps.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। अधीक्षण अभियंता, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सहायक कुल सचिव, परामर्शदाता, सुरक्षा अधिकारी, हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ तकनीकी अधीक्षक तथा कनिष्ठ तकनीशियन। पदों की संख्या, श्रेणी और पात्रता मानदंड के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट iittp.ac.in। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। संयुक्त प्रमुख विधि, रिक्तियों की संख्या 2, उप प्रमुख विधि 1 रिक्ति, सहायक प्रमुख रिक्तियों की संख्या 4 तथा बेंच अधिकारी 1 रिक्ति। आवश्यक अर्हताओं, अनुभव आदि के विवरण तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तों और आवेदन के प्रारूप के लिए देखिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की वेबसाइट cercind.gov.in। संग्राम वाहन अनुसंधान तथा विकास स्थापन कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आमंत्रित कर रहा है इन विषयों में योग्य उम्मीदवारों को वॉक इन इंटरव्यू के लिए, ताकि प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जा सके। विषय हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग, कुल रिक्तियां हैं 13, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 10, इलेक्ट्रीशियन 12, फिटर 10, मैकेनिक मोटर व्हीकल 8, मशीनिस्ट 5, पेंटर 1, प्लमर 3, टर्नर 5, वेल्डर 5, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 6, शीट मेटल वर्कर 1 तथा कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन 1 रिक्ति। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए संग्राम वाहन अनुसंधान और विकास स्थापन की वेबसाइट ncvtmis.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार। शाम का ये सुहाना वक्त एक बार फिर लेकर आए हैं देश दुनिया की खबरों, रोचक जानकारियों और दिन भर की प्रमुख हलचलों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा। अगले आधे घंटे में होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर, क्षेत्रीय संवाददाताओं से खास जानकारी, खेल जगत की प्रमुख गतिविधियां और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों का स्मरण जिनकी आज जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिक्रमा। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा। हेलो सायरा।
4: हेलो वैष्णवी। नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस संडे एडिशन ऑफ परिक्रमा। एंड यस, वेलकम टू अनदर शो। और क्योंकि नाम है शो का हमारे परिक्रमा, तो हस्बे दस्तूर देश की परिक्रमा पे तो निकला जाएगा ही टू सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर देयर इन स्टोर फॉर यू फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस वैष्णवी।
5: जी बिल्कुल।
4: Prime Minister says trust of global South nations grown in BRICS warns against weaponization of technology and

0: critical minerals.
1: प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की.
0: Indian Railways records 5.4% year-on-year growth in freight loading in August 2026.
1: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई. राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी.
0: In Indonesia, around 140 passengers and crew missing after a ferry carrying more than 240 people overturned today.
1: और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से.
0: And as always, we begin our show with the segment Dateline India. And of course, today we are going to talk about the BRICS summit that is being held in India, in our very own national capital.
1: श्रोताओं, दुनिया के बड़े नेताओं की मौजूदगी और वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा के बाद नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है. भारत मंडपम में हुए सम्मेलन में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के साथ आतंकवाद, वैश्विक व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. सम्मेलन ने बदलती वैश्विक व्यवस्था में ग्लोबल साउथ की बढ़ती भूमिका और भारत के महत्व को भी रेखांकित किया. लेकिन ब्रिक्स की कहानी सिर्फ इन दो दिनों की नहीं है, ये दो दशक से अधिक लंबे सफर की कहानी है. चार देशों से शुरू होकर 5 और फिर 11 पूर्ण सदस्यों तक पहुंचने की. आज साझेदार देशों के साथ ब्रिक्स एक बड़े वैश्विक मंच का रूप ले चुका है. तो आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और नई दिल्ली सम्मेलन ने दुनिया के सामने क्या नई तस्वीर पेश की, आइए जानते हैं ब्रिक्स के सफर और भारत में हुए इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के प्रमुख पहलुओं को.
0: Well, the 18th BRICS summit that was held at Bharat Mandapam in New Delhi under India's BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, it culminated today. And India organized the BRICS summit for the fourth time. But BRICS itself has come a long way since its inception.
1: बिल्कुल सही कहा सायरा आपने. ब्रिक्स को एक गोलमेज की तरह समझा जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसा मेज है जहां चर्चा का दायरा वैश्विक है. यहां उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश व्यापार, वित्त, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, संस्कृति और वैश्विक संस्थाओं के कामकाज जैसे मुद्दों पर मिलकर चर्चा करते हैं और सहयोग के रास्ते तलाशते हैं.
0: The word BRIC was coined in 2001 by British economist Jim O'Neill in his research paper Building Better Global Economic, that is BRICS, highlighting the investment potential of Brazil, Russia, India and China.
1: और इसके 8 साल बाद वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में पहले ब्रिक शिखर सम्मेलन हुआ. इस बैठक में मुख्य रूप से आर्थिक और वित्तीय सहयोग पर चर्चा हुई.
0: Its 11 members represent around 49.5% of the world's population, about 40% of global GDP and nearly 26% of global trade. When a grouping represents almost half of humanity, it commands a substantial share of the global economy and accounts for more than a quarter of global trade. Can its voice really be ignored? Well, absolutely not. That's precisely why BRICS matters. It has increasingly emerged as an important voice of the global south.
1: ब्रिक्स का विस्तार भी बदलती वैश्विक व्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है. ये उन देशों की बढ़ती भागीदारी को दिखाता है जो ग्लोबल साउथ की एकजुटता, अधिक प्रतिनिधित्व और अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को मजबूत करना चाहते हैं. चार देशों ब्राजील, रूस, भारत और चीन से शुरू हुआ ब्रिक अब 11 सदस्यों वाले ब्रिक्स समूह में बदल चुका है. इसके साथ साझेदार देशों की एक अलग श्रेणी भी है.
0: Until the year 2011, South Africa joined, though BRIC became BRICS. Then came the major expansion in the year 2024, when Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and UAE joined. And in January 2025, Indonesia formally became a full member. Alongside is a separate category of 10 BRICS partner countries. So why are more and more countries interested in BRICS?
1: सारा, इसका कोई एक कारण नहीं है. अगर हम देखें तो कुछ देशों के लिए ये आर्थिक सहयोग का मंच है, तो कुछ के लिए कूटनीतिक सहयोग का. कई देश इसे रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत करने के अवसर के रूप में देखते हैं. और शायद कुछ देशों के लिए ये इस चिंता से भी जुड़ा है कि कहीं वे किसी महत्वपूर्ण वैश्विक मंच से पीछे न रह जाएं.
0: That's right. And वो जिसे फोमो कहते हैं, right? Fear of missing out. Well, the BRICS can offer developing countries another platform beyond Western-led institutions and alliances. Its expansion reflects a desire for global South unity, greater representation and a stronger collective voice.
1: ये देशों को अपने आर्थिक और कूटनीतिक साझेदारियों में विविधता लाने का अवसर भी देता है. इससे वे किसी एक बड़ी ताकत या किसी एक गुट पर अत्यधिक निर्भरता कम कर सकते हैं. इसीलिए ब्रिक्स केवल आकार में ही बड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि इसकी विविधता और वैश्विक महत्व भी बढ़ा रहा है. ब्रिक्स का सहयोग मुख्य रूप से तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है. पहला, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग. दूसरा, अर्थव्यवस्था और वित्त.
0: एंड थर्ड, cultural and people-to-people exchanges, because international relations are not built only inside conference rooms. As Martin Luther King Jr. beautifully said that, we may have all come on different ships, but we are in the same boat now. Well, that spirit reflects the significance of BRICS, especially at this hour, when shared challenges demand greater cooperation.
1: वर्ष 2023 में विस्तार के बाद हुए 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं ने ब्रिक्स को नई विश्व व्यवस्था का स्तंभ बताया था. आइए अब नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर एक नजर डालते हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी, जलवायु आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों ने ये दिखाया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता.
2: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है. चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है. इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है. डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइंस तैयार की गई है.
0: BRICS nations have placed special emphasis on enhancing resilience. One important development is the consensus on a BRICS integrated early warning system for prevention of and response to infectious diseases.
1: सारा प्रौद्योगिकी भी सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में रही. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों का हथियारीकरण विकास और प्रगति में बाधा बन सकता है. साथ ही ब्रिक्स देशों ने ये सुनिश्चित करने पर बल दिया कि प्रौद्योगिकी का लाभ सभी देशों और समाज के हर वर्ग तक पहुंचे.
0: Indeed, the question is not merely who invents the next technology. It is also who gets to use it, who can afford it, and can its benefits reach the global south. And then there is, of course, agriculture. The BRICS Network on Digital Agriculture aims to create new opportunities for farmers by aligning artificial intelligence, geospatial technology, and digital public infrastructure with farmers' actual needs.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि यहां उनकी बात सुनी जाती है और उनके अनुभवों का सम्मान किया जाता है. उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स की असली ताकत उसकी विविधता और आपसी सहयोग में है.
0: That's right, and as Mahatma Gandhi famously said, Vaishnavi, that in a gentle way, you can shake the world. And well, BRICS in its own way is attempting precisely that. It's reshaping conversations about how the world works.
1: सम्मेलन के पहले दिन नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 को सर्वसम्मति से अपनाया गया. ब्रिक्स देशों ने बातचीत और कूटनीति के जरिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
0: The leaders also addressed one issue of direct importance to India, that is terrorism. BRICS leaders have condemned the 22nd April 2025 Pahalgam terror attack in Jammu and Kashmir.
1: भारत मंडप में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के गाला डिनर में एक विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस पेश की गई. इस प्रस्तुति में साझा भावनाओं और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया गया.
0: And the program featured the BRICS Symphony, One Rhythm, Many Cultures. Musicians from BRICS member and partner countries came together in a unique collaborative performance.

0: The flags outside Bharat Mandapam represent different countries, but inside the conversation is about a shared future.
1: ब्रिक्स की कहानी चार अक्षरों से शुरू हुई थी। ये पहले पांच देशों का समूह बना और फिर बढ़कर

0: ग्यारह सदस्यों तक पहुंचा। अब साझेदार देशों की भागीदारी के साथ इसका दायरा और व्यापक हो गया है। ब्रिक्स आज एक ऐसी बदलती दुनिया की कहानी है जहां ग्लोबल साउथ अपनी भूमिका और आवाज को मजबूत कर रहा है और इस बदलाव के केंद्र में भारत आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभा रहा है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं जयपुर। राजस्थान के जैसलमेर में लोक देवता बाबा रामदेव का मेला आज से शुरू हुआ। बाबा के समाधि स्थल रामदेवरा पर ध्वजारोहण और मंगला आरती के साथ मेले का आगाज हुआ। मेले में देशभर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसे लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा बाबा रामदेव की जन्मतिथि पर आज प्रदेश भर में कई स्थानों पर मेले लग रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: खम्मा खम्मा ओ धनिया रोई चेरा धनिया।
2: बाबा रामदेव जी यानी रामसा पीर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित लोक देवता हैं। सभी समुदायों के बीच इनकी गहरी मान्यता और आस्था है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दूज या बाबेरी तीज को इनका जन्म जैसलमेर जिले के रुणीचा गांव में हुआ था। रामसा पीर ने समाज में फैली ऊंच नीच और जाति धर्म की भावना को मिटाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, साथ ही समाज को समता का संदेश भी दिया। रुणीचा धाम जिसे रामदेवरा भी कहा जाता है, यहाँ हर साल भाद्रपद मास की दूज से एकादशी तक एक विशाल मेला भरता है जहाँ देश के कोने कोने विशेषकर राजस्थान सहित गुजरात हरियाणा पंजाब और मध्य प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालु उनकी समाधि पर खड़ाऊं नारियल चुनरी चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसलमेर के अलावा बाड़मेर के रामदेरिया गांव में अवतार धाम पर और पाली के घूमटी स्थित बाबा रामदेव मंदिर में मेला भर रहा है। बालोतरा के बिठुजा स्थित बाबा रामदेव की विश्राम स्थली पर श्रद्धालु रामसा पीर के जयकारों के साथ पहुंच रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर बाबा रामदेव के मंदिरों में दर्शनार्थियों की कतारें लगी हुई हैं। हर ओर श्रद्धा और भक्ति का सैलाब है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर से माधुरी वशिष्ठ।
3: And now we head to Goa. Well, the festive spirit is all set to travel along the Konkan coast. As thousands of devotees head home for Ganesh Utsav, Konkan Railways is ready with special trains, extra passenger facilities and strengthened safety measures to make the journey smoother and more comfortable.
4: Konkan Railway will operate special trains in coordination with the Central and Western Railways to meet the festive rush. Around the clock rail yatri sahayata kendras, holding areas and additional ticketing arrangements will help passengers during the rush. Adding color to the journey, stations will feature festive decorations, rangoli, selfie points and cultural programs. Enhanced security, CCTV monitoring and crowd management measures have also been put in place. Konkan Railway has appealed to passengers to maintain cleanliness and discipline and enjoy a safe and joyful Ganesh Utsav journey. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwadi News, Padji.
0: श्रोताओं, अब हम चलते हैं गुजरात, जहां वन विभाग के गीर फाउंडेशन द्वारा किए समुद्री अध्ययन से समुद्री जैव विविधता संरक्षण को लेकर नए तथ्य सामने आए हैं। कच्छ के दक्षिणी अखात में हाल ही में हुए एक महत्वपूर्ण समुद्री सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है कि डॉल्फिन इस क्षेत्र में सबसे अधिक पाए जाने वाली समुद्री स्तनधारी बन गई है। सुनते हैं हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
5: ओडिशा से लेकर गुजरात के समुद्री तटों पर फैली हमारी समुद्री संपदा हमेशा से ही शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस के अवसर पर सामने आए इस नए अध्ययन के मुताबिक गीर फाउंडेशन ने अक्टूबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच कच्छ के मरीन नेशनल पार्क और उसके आसपास के इलाकों में गहन सर्वेक्षण किया था। इस दौरान शोधकर्ताओं को 64 अलग अलग अवसरों पर कुल 193 डॉल्फिन देखने को मिली है, जो इस क्षेत्र में कुल दर्ज किए गए समुद्री जीवों का लगभग 36% हिस्सा है। सर्वेक्षण के दौरान सबसे खास बात ये सामने आई है कि डॉल्फिन यहाँ साल भर देखी गई है, जिससे संकेत मिलता है कि इनकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में स्थायी या अस्थायी रूप में निवास करता है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के वन और पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाड़िया ने बताया कि राज्य सरकार प्राकृतिक और समुद्री विरासत के संरक्षण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है और यह अध्ययन समुद्री जैव विविधता के जतन में बेहद मददगार साबित होगा। इस पूरे अनुसंधान को राज्य के समुद्री वन

0: जीव संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खुंट।
1: And now from the western coast, we head towards the northeast to Nagaland. For cardamom growers, harvesting is not about getting the crop out of the field. The way the spikes are cut can also affect the health of the plant. Well, in a district of Nagaland, farmer and innovator El Holuto Ayami noticed that local growers were relying on random tools, often damaging the plant in the process. He decided to look for a better way. And for more details, let's listen to our Kohima correspondent.
2: For El Holuto Ayemi, the solution started with a simple piece of 8mm mild steel rod, which he shaped into a harvesting tool at his home in Tichipami village. The tool, called the spike cutter or cardamom harvester, is about 15 inches long. Its sharpened cutting edge is designed to reach into dense cardamom bushes and cut the stalk while reducing damage to the plant.
3: As a cardamom farmer, there was this acute need for a tool to harvest cardamom spikes, as the main cause of cardamom plant destruction was its method of harvesting using self-made and random tools of harvest. The necessity of this tool enabled me to create this spike cutter. It's a tool which was readily accepted by the farming community of our area.
2: In 2020, Mr. Ayemi received national recognition for his innovation from the ICAR, Indian Agricultural Research Institute, PUSA, in New Delhi. Later, with support from Krishi Vigyan Kendra Zuneboto, his invention was documented and formally received a patent this year. For Mr. Ayemi, the value of the innovation lies in its simplicity, affordability, and usefulness to farmers. Holuto Ayemi continues to provide trainings to farmers through his cardamom farm school in Tichipami village and hopes to develop more practical tools. For him, the approach is straightforward. Start with the field, identify the problem, and build a practical solution for fellow farmers. For Parikrama, this is Mary Mayase, Akashvani News, Kohima.
4: और अब जानते हैं खेल के मैदान में आज की ताजा हलचल। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैच की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला भी दिल्ली में ही खेला जाएगा। अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
5: सन 1929 में आज ही के दिन भारत के महान सपूत जतींद्रनाथ दास ने 25 बरस की छोटी सी उम्र में देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। जतींदा के नाम से मशहूर इस स्वतंत्रता सेनानी ने अपने अनूठे अंदाज में अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी थी।
6: जतिन दास का जन्म 1904 में 27 अक्टूबर को कलकत्ता में हुआ था। खेलने कूदने की ही उम्र में वो बंगाल में सक्रिय अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। बाद में जतिंदा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े और भगत सिंह तथा उनके साथियों के साथ काम किया।
5: सिर्फ 17 बरस की उम्र में असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था और वो बेहद मेधावी छात्र थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई के बजाय स्वयं की जिंदगी स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कर दी थी।
6: उन दिनों जेलों में बंद कैदियों के साथ अंग्रेज सरकार के बदतर व्यवहार ने जतिन दास को विचलित कर दिया। उनकी हालत में सुधार के लिए जतिन दास ने भूख हड़ताल करने की ठान ली। वे 63 दिनों तक लाहौर जेल में अनशन पर रहे और उन्होंने अपनी जान दे दी। युवा क्रांतिकारी के इस बलिदान का जेल अधिकारियों पर असर पड़ा। राजनीतिक बंदियों की हालत सुधारने के लिए उन्हें आखिरकार झुकना पड़ा।
5: इन क्रांतिकारियों को 14 जून सन 1929 को लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया, जो कि ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या से जुड़ा था। राजनीतिक बंदियों के अधिकारियों के लिए लड़ने वाले जतिन दास को भूख हड़ताल के दौरान कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें बेरहमी से पीटा गया और जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की गई, जिससे उनके फेफड़े खराब हो गए। जतिन दास का पार्थिव शरीर जब बंगाल पहुंचा, तो उसे हावड़ा स्टेशन पर लेने स्वयं सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे।
6: रिकॉर्ड के मुताबिक जतिन दास के अंतिम संस्कार में 7 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने तब राष्ट्र के

0: व दधीचि के रूप में उनके बलिदान को याद किया था।
1: आज ही के दिन सन 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य को भारत के क्षेत्र में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो शुरू किया था। सन 1948 तक अधिकांश रियासतों का भारत में विलय हो गया था, लेकिन हैदराबाद राज्य ने न तो पाकिस्तान में और न ही भारत में शामिल होने का विकल्प चुना।
0: तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम से अनुरोध किया कि वो भारत में शामिल हो जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। निजाम ने शुरुआत में हैदराबाद को संवैधानिक राजतंत्र के रूप में राष्ट्रमंडल में शामिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया था। हालांकि भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने इसे अस्वीकार कर दिया।
1: हालांकि उन दिनों हैदराबाद के विलय की मांग को लेकर आर्य समाज और स्वामी रामानंद तीर्थ की अगुवाई वाली स्टेट पीपुल्स कांग्रेस आंदोलनरत थी। इस दौरान निजाम के अधीन हैदराबाद रियासत में किसानों का शोषण बढ़ रहा था। रियासत की 40% जमीन पर या तो सीधे निजाम का स्वामित्व था या उसने विशेष जागीर के रूप में कुलीनों को जमीनें दे रखी थी।
0: सन 1940 तक निजाम और उसकी नीतियों के विरुद्ध किसानों के प्रतिरोध ने आंदोलन का रूप ले लिया था और 1946 तक आते आते हालात चरम पर पहुंच गए।
1: 13 सितंबर 1948 की सुबह जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, करीब 4 बजे भोर में भारतीय सेना राज्य में दाखिल हुई। सेना ने सबसे पहले सोलापुर सिकंदराबाद राजमार्ग पर स्थित नाल दुर्ग किले पर कार्रवाई की। सेना लगातार आगे बढ़ती रही और 17 सितंबर 1948 की शाम 5 बजे निजाम ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और इसके बाद हालात बदलते गए और निजाम को भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़े।
2: आज हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीधर पाठक की पुण्यतिथि है। द्विवेदी युग के इस प्रतिष्ठित रचनाकार को स्वदेश प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य और समाज सुधार की भावनाओं का कवि माना जाता है। उन्होंने वनाष्टक, काश्मीर सुषमा, भारत गीत, गोपिका गीत और मनोविनोद जैसी रचनाएं लिखी। श्रीधर पाठक को कवि भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था।
3: Today we are also remembering Roald Dahl on his birth anniversary, and of course a writer on whose stories we have probably grown up with, and we all know that he has created some of the world's best known children's books, including Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The BFG, Fantastic Mr. Fox and James and the Giant Peach. His stories are known for their unusual characters, dark humor, clever plots and strong child protagonists. Roald Dahl remains one of the most widely read children's authors of the 20th century.
2: सुरों को साधना एक बात है, लेकिन उन सुरों में अपनी अलग पहचान बनाना दूसरी। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में प्रभा अत्रे ने यही विशिष्ट पहचान बनाई। आज ही के दिन 1932 को पुणे में जन्मी प्रभा अत्रे किराना घराने की प्रमुख गायिकाओं में शामिल हुई। उन्होंने सुरेश बाबू माने और हीराबाई बड़ोदकर से संगीत की शिक्षा ली और आगे चलकर मंचीय प्रस्तुतियों के साथ संगीत शिक्षण और लेखन में भी सक्रिय रही। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मभूषण और पद्म विभूषण जैसे देश के प्रतिष्ठित सम्मान मिले। आइए अब सुनाते हैं प्रभात्रे की आवाज में राकेश मनोहारी प्रस्तुति।

0: और अब हम याद करेंगे ऐसे गीतकार और शायर के बारे में जिनके लिखे गीत आज भी लोगों की जुबान पर है। हम बात कर रहे हैं अनजान के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है। अनजान का वास्तविक नाम वैसे तो लालजी पांडे था। उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए बड़ी संख्या में गीत लिखे और कई लोकप्रिय संगीतकारों के साथ काम भी किया।
1: That's right, even though he chose the name Anjan, लेकिन उनका जो है उनकी हस्ती उनका काम बहुत दूर दूर तक जाना जाता है. Especially in the 50s, he went on to write songs for hundreds of films and became particularly well known for his collaborations with composers such as Kalyanji, Anandji and Bapi Lahiri. Some of his best known songs include Khai Ke Paan Banaras Wala from Dawn and of course O Saathi Re from Muqaddar Ka Sikandar. We have prepared a medley, Vaishnavi. Let's hear that.

0: सारा अनजान के लिखे गीतों की एक अलग ही बात थी. जब That's भी right. ये गीत सुने हमेशा उस दौर में लोग पहुंच जाते हैं.
1: That's right.
0: और हर गीत उनके, लगभग हर गीत उनके काफी सुपरहिट रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. भगवत रावत उन कवियों में थे जिन्होंने कविता को आम जीवन की छोटी बड़ी अनुभूतियों से जोड़ा. आज ही के दिन 1939 को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के टहरका में जन्मे भगवत रावत कवि होने के साथ साथ आलोचक और शिक्षक भी रहे. उन्हें दुष्यंत कुमार पुरस्कार, वागीश्वरी सम्मान सहित कई सम्मानों से सम्मानित किया गया था. और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए अनुमति परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की.
1: नमस्कार.
2: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है, और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है. श्री मोदी ने लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के लिए सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा.
3: हम आशा करते हैं इस समिट से, उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा. हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा. हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे.
2: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है और दुनिया अब इस समूह से

0: ठोस परिणामों की आशा करती है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रिलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की। इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में श्री मोदी ने कहा कि महामारियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं ने यह दिखा दिया है कि परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोगाइफ के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बैठक की। प्रधानमंत्री पिछले दो दिन से दुनिया भर के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। वे आज दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों तथा नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था तथा वित्त मंत्री जमशीद कुचकरोफ से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हित से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में अपने विचार साझा किए। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में आयोजित 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल गया है। उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का बाजार मात्रा के लिहाज से वर्तमान हीरा बाजार से लगभग 50 गुना बड़ा होने की उम्मीद है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 140 यात्री और चालक दल के सदस्य अब भी लापता हैं। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने लगातार तीसरी बार जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन में खेले गए फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया। वहीं दुबई में महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला आज 8 बजे मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions, and the discussions over the past 2 days have further strengthened this conviction. He said this during his concluding remarks at the BRICS session on resilience, innovation, cooperation and sustainability at the Bharat Mandapam in New Delhi. Mr. Modi hoped that the New Delhi Declaration adopted at BRICS Summit will provide clear direction for shared vision and future cooperation. He stressed on the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।

जी हाँ, यूं ही गाते गुनगुनाते ये सफर चलता रहे और इस सफर पर हम और आप साथ साथ बने रहें एफएम गोल्ड के साथ 100.1 पर, और मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। जी हाँ, इस सफर में हम आप तक पहुंचाते हैं कुछ चुनिंदा नगमे। आज हालांकि आज रविवार है,

हमारे पास समय कम होता है और इसी में हम कोशिश करते हैं कि आपके दिलों तक पहुंचें अपने नगमों के जरिए, अपने फिल्मी गीतों के जरिए। आप सभी का स्वागत गाते गुनगुनाते के सफर में। आपके साथ मैंने जैसा कि बताया, मैं हूं शिव प्रकाश। तो पहला नगमा हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म आशिकी से, और इसमें जो स्वर है वो है कुमार सानू और अनुराधा पौंडवाल का। ये फिल्म आई थी 23 जुलाई 1990 को, और ये जो फिल्म थी वो एक म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म को बनाया था महेश भट्ट ने, और फिल्म में जो मुख्य भूमिकाएं थी वो थी राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की। दीपक तिजोरी भी मुख्य भूमिका में थे। नदीम श्रवण का संगीत था, और लगभग 30 लाख के करीब इस फिल्म का बजट था। इतने में ये फिल्म बनी थी और 5 करोड़ से ज्यादा की इस फिल्म ने कमाई की। एक बेहद सफल और सुपरहिट फिल्म। इसी फिल्म का नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर आप सबके लिए।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते, आपके साथ हूं मैं शिव प्रकाश। और अगला जो नगमा हमने लिया है वो फिल्म है डैडी। और ये जो फिल्म आई थी, ये आई थी 8 फरवरी 1989 की। जी हाँ, एक खास फिल्म थी, खास तरीके से बनाई गई और खास प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई। जी हाँ, उस जमाने का इकलौता दूरदर्शन, जी इकलौता टीवी चैनल दूरदर्शन के लिए फिल्म बनाई गई। और फिल्म के जो निर्देशक थे वो थे महेश भट्ट। और फिल्म में उन्होंने अपनी बेटी पूजा भट्ट को डेब्यू करवाया था और उनकी ये पहली फिल्म थी। और फिल्म को बहुत पसंद किया गया। फिल्म में जो दूसरे कलाकार थे उनमें अनुपम खेर, मनोहर सिंह, और फिल्म में कुछ गज़लों को भी पेश किया गया और वो काफ़ी पसंद की गई। तलत अजीज की आवाज़ में हम आप तक ये गज़ल पहुंचाएंगे। फिल्म में पूजा भट्ट और अनुपम खेर के अलावा सोनी रायदान, सुलभा आर्या, नीना गुप्ता, अवतार गिल, सुहास जोशी, राज जुत्शी, सतीश कौशिक जैसे तमाम मझे हुए रंगमंच के कलाकार भी थे। उस जमाने में ये रंगमंच से फिल्मों की तरफ आ रहे थे, ये वो कलाकार थे। और

फिल्म का संगीत जैसा कि मैंने बताया बहुत ही अच्छा है। फिल्म का जो भी संगीत था वो राजेश रोशन साहब ने तैयार किया और फिल्म को 3 फिल्मफेयर अवार्ड्स मिले, एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी इस फिल्म को मिला। तो चलिए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा नगमा आप तक पहुंचाते हैं तलत अजीज की आवाज़ में फिल्म डैडी से।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: अब चलते चलते एक आखिरी नगमा फिल्म बेटा से, स्वर है अनुराधा पौंडवाल और उदित नारायण का। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अब

0: उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
0: पूर्वोत्तर डायरी।
2: श्रोताओं, हम आपको सबसे पहले लिए चलते हैं असम। असम में निवेश और उद्योगों के विकास के प्रस्तावों को तेज गति देने के लिए सरकार ने अब प्रयास तेज कर दिए हैं। हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में असम निवेश और उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। तो क्या ये प्रस्ताव रहे हैं और कैसे सरकार इन प्रस्तावों को तेज गति प्रदान कर रही है, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से सुनवाते हैं।
3: बैठक में अंबुजा सीमेंट्स, स्टार सीमेंट, डालमिया सीमेंट, अडानी पावर, SJVN ग्रीन एनर्जी, हिंदुजा ग्रुप, ग्रीनको एनर्जीज, NEE PCO और NLC इंडिया रिन्यूएबल्स जैसी कंपनियों से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को परियोजनाओं के रास्ते में आने वाली अड़चनों को समयबद्ध तरीके से दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार और निवेशकों के बीच लगातार समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया ताकि परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। औद्योगिक गतिविधियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे की जरूरत को देखते हुए लोक निर्माण विभाग को परियोजना स्थलों तक सड़क संपर्क मजबूत करने के निर्देश दिए।

0: दिए गए। सरकार का उद्देश्य है कि सड़क या अन्य सुविधाओं की कमी के कारण निवेश से जुड़े काम प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि एडवांटेज असम 2.0 के तहत किए गए निवेश वादों को धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ने, आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने और लोगों के लिए लंबे समय तक नए अवसर तैयार होने की उम्मीद है। एडवांटेज असम 2.0 का आयोजन फरवरी 2025 में गुवाहाटी में किया गया था। इसके बाद मार्च 2026 में असम सरकार ने 69 संगठनों के साथ निवेश संबंधी समझौते किए थे, जिनमें करीब 1,67,000 करोड़ रुपए से प्रस्तावित निवेश और लगभग 1,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाया गया था। निवेश प्रस्तावों की लगातार निगरानी और परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिशों के साथ असम औद्योगिक विकास, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निशा साहू की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं विशेष शुक्ला।
1: श्रोताओं, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 6 से 9 सितंबर तक पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के दौरे पर रहे, तो पूर्वोत्तर भारत का उपराष्ट्रपति का यह दौरा कैसा रहा, आइए आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताते हैं।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने 4 दिवसीय दौरे की शुरुआत असम से की। गुवाहाटी में उन्होंने गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह और श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी और विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा नागरिकों से संवाद किया।
3: इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट्स पॉसिबिलिटीज, बट इट इज द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग दैट इज व्हाट ओनली टीचर्स एंड प्रोफेसर्स कैन शेप द स्टूडेंट in the right way. Learning, research and character building within those spaces that ultimately creates excellence. The real excellence is the efficiency of the students, the efficiency of the degree holders who are coming out of the institution. Assam today is witnessing remarkable phase of progress and transformation. Assam is doing much more than transformation. It is positioning itself as a confident, connected and aspirational state. As we move confidently towards the vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi's Viksit Bharat, our education institutions will be the most important engines of transformation. Degrees may open the doors, but character determines what do after these doors have been opened for you.
2: शिलोंग में उन्होंने सार्वजनिक स्वागत और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया।
4: मेघालय इज अ लैंड ऑफ इमेंस नेचुरल ब्यूटी, रिच कल्चरल हेरिटेज एंड अ वेरी वाइब्रेंट ट्रेडिशंस। द प्रोग्रेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रल टू द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। द प्रोजेक्ट्स बीइंग लॉन्च्ड टुडे रिफ्लेक्ट द स्ट्रांग पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। These projects are more than just investment in infrastructure. They represent the investments in the future of Meghalaya and the development of Meghalaya. Development must go hand in hand with the preservation of our own environment, culture and traditions. Meghalaya has shown how communities can live in close harmony with nature. This wisdom and spirit will be invaluable as we strive to build a sustainable future. I am confident that the people of Meghalaya, particularly its youth, will continue to contribute with the dedication, creativity and determination to the progress of the state. And by progressing state, we make the country progress.

8 सितंबर को उपराष्ट्रपति मणिपुर पहुंचे। इम्फाल में उन्होंने सैनिक स्कूल का दौरा किया, यहां युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और कैडेटों से भी बातचीत की। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ स्कूल के मेस में दोपहर का भोजन भी किया। कैडेटों को संबोधित करते हुए

0: उन्होंने अनुशासन, साहस और नेतृत्व के महत्व पर जोर दिया।
1: Yes, Saini School Imphal enters into 56th year of journey. I believe this school must continue to look ahead with ambition. The world around you is changing rapidly. Artificial intelligence, space technology, biotechnology, cyber security, robotics and other emerging new science fields are creating opportunities that previous generations couldn't imagine even. Therefore, while you must preserve the timeless values of discipline, integrity and patriotism, you must also become adaptable, innovative and technically aware of the things. The official mission of Sainik School Imphal emphasizes the all-round development of cadets through academics, sports and co-curricular activities, along with discipline, optimism, patriotism, high moral values and persistent hard work. These values should become habits and that will accompany you throughout your life.
0: मणिपुर के मोइरांग में उन्होंने ऐतिहासिक INA संग्रहालय और युद्ध स्मारक का दौरा किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना के शौर्य और बलिदान को नमन किया और उस स्थान का भी दौरा किया जहां आजाद हिंद फौज ने भारत की धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया था। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित की। दौरे के अंतिम चरण में उपराष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश पहुंचे।
2: Arunachal Pradesh has an important role in India's future. The development of Arunachal Pradesh is linked to the development of India.
3: Arunachal Pradesh has immense strategic importance, cultural richness and also boundless potentiality of greenery, natural and above all, a great heritage. Arunachal Pradesh stands as a proud guardian of our nation's border and an integral part of India's unity and integrity. We have diverse regional voices, but we all are united by a great thought that is the Dharma of the nation. Our constitution gives every right to everyone. At the same time, our constitution binds all of us together. One vision that we always should keep it in mind, that is Rashtra Pradham. Rashtra Pradham and one goal, a Viksit Bharat by 2047.
0: ईटानगर में उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा लिया और विधानसभा संग्रहालय का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने नेहरू राज्य संग्रहालय, नेदार नामलो और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए डोनी पोलो मिशन स्कूल का भी दौरा किया। इस चार दिन के दौरे में शिक्षा, संस्कृति, इतिहास, युवा और राष्ट्रीय एकता से जुड़े कई पहलुओं को प्रमुखता मिली है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
4: श्रोताओं, अब हम जानते हैं कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत का राज्य मिजोरम HIV एड्स को लेकर विशेष अभियान से राज्य में विशेष जागरूकता के महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं मिजोरम के एक जिले की HIV एड्स से लड़ने की कहानी।

0: 95 95 95 रणनीति के तहत पहला लक्ष्य है कि HIV से संक्रमित कम से कम 95% लोगों को अपनी स्थिति की जानकारी हो। दूसरा, संक्रमित लोगों में से 95% लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी ART मिलना और तीसरा, इलाज ले रहे 95% लोगों में वायरल लोड को नियंत्रित करना है। नाको के मोबिलाइजेशन एड्स सुरक्षा अभियान में इन तीनों लक्ष्यों के आधार पर जिलों का आकलन किया जाता है। तीनों मानक पूरे करने वाले जिलों को सुरक्षित श्रेणी दी जाती है। वहीं दो लक्ष्य हासिल करने वाले जिले सक्षम और एक या कोई लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले जिले संघर्षशील श्रेणी में रखे जाते हैं। तीनों लक्ष्यों के साथ माँ से बच्चे में HIV संक्रमण का शून्य प्रसार हासिल करने वाले जिले को सुरक्षित प्लस दर्जा दिया जाता है। मिजोरम में यह अभियान फरवरी 2026 से सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है। सैतुअल की इस उपलब्धि में गैर सरकारी संगठनों, चर्चों और सामुदायिक नेताओं का भी सहयोग महत्वपूर्ण रहा। इनके माध्यम से HIV जांच और जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिली। सैतुअल के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जोथन पारी छकछुआक ने इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए लगातार जांच और जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने HIV से संक्रमित लोगों से ART की दवाएं नियमित रूप से लेने की अपील की। मिजोरम स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अनुसार अक्टूबर 1990 में राज्य में पहला मामला सामने आने के बाद से अब तक 34,930 HIV संक्रमित लोगों का मामला पता चला है। जुलाई 2026 तक 29,217 लोगों ने ART के लिए पंजीकरण कराया था, जिनमें से 26,382 ने उपचार शुरू कर दिया था। सैतुअल की यह उपलब्धि दिखाती है कि समय पर जांच, नियमित उपचार, जागरूकता और सामुदायिक सहयोग से HIV नियंत्रण के लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। अब जिले के सामने इस प्रगति को बनाए रखने और आगे बढ़ाने की चुनौती है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची वाजपेयी।
1: श्रोताओं, अब हम आपको सफलता की एक ऐसी कहानी सुनवाते हैं जिसमें एक उद्यमी ने फूलों की खेती से अपनी आजीविका और रोजगार के नए अवसर खोले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम में भी उनकी इस प्रेरक कहानी का जिक्र किया। तो नागालैंड के इस व्यक्तित्व ने, इस उद्यमी ने कैसे फूलों की खेती से अपने जीवन में एक नया कीर्तिमान बनाया, अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया, आइए आपको सुनवाते हैं।
2: वेसालू पूरो का संबंध एक किसान परिवार से है। बचपन से ही उन्होंने अपने माता पिता को खेतों में काम करते और घर के आसपास फूल उगाते देखा। पुणे से सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2013 में नागालैंड सरकार के भूमि संसाधन विभाग में काम शुरू किया। करीब 7 वर्षों तक उन्होंने गांवों में जाकर महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और किसानों को आजीविका से जुड़ा प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान उनका जुड़ाव खेती से और गहरा हुआ। साल 2021 में उन्होंने फेक जिले के फुटसेरू में छोटे स्तर पर फूल उगाना शुरू किया। शादी, चर्च कार्यक्रमों, त्योहारों और सामाजिक आयोजनों में फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने इसे व्यावसायिक रूप देने का फैसला किया। शुरुआत में गुणवत्तापूर्ण बीज और पौध सामग्री हासिल करना, स्थानीय मौसम के अनुकूल किस्म चुनना और सही समय पर बुआई व कटाई करना उनके लिए चुनौती थी। इस दौरान ICSR कृषि विज्ञान केंद्र फेक और CSIR NEIST जोरहाट से मिले वैज्ञानिक मार्गदर्शन ने उनकी काफी मदद की। ICSR कृषि विज्ञान केंद्र ने उन्हें ग्लेडियोलस की उन्नत किस्म अर्का अमर के 6,000 कंद उपलब्ध कराए। वेसालू ने केवल 1/4 एकड़ जमीन पर इन्हें लगाया और करीब 5,400 बाजार योग्य फूलों की इंडिया तैयार की। इसे उन्हें 81,000 रुपए की सकल आय और करीब 52,000 रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। इस सफलता के बाद वेसालू ने फूलों की खेती का विस्तार किया। आज उनके फार्म में हाइड्रेंजिया, पियोनी, डेल्फिनियम, स्टॉक, यूकेलिप्टस और ग्लेडियोलस समेत करीब 400 किस्मों के फूल उगाए जा रहे हैं। उनके उत्पाद नागालैंड के बाजारों के साथ साथ दिल्ली और मुंबई तक पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वेसालू की यात्रा को इस बात का उदाहरण बताया कि एक छोटा सा शौक भी सही मेहनत और मार्गदर्शन के साथ नए अवसरों का रास्ता खोल सकता है।
3: कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालू पुरो जी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालू जी किसान परिवार में पली बढ़ी, बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती।
2: वैशालू का फार्म अब सिर्फ फूलों की खेती तक सीमित नहीं है। यहाँ विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक भ्रमण भी आयोजित किए जाते हैं और खेती के साथ उद्यमिता की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। उनका यह प्रयास ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को व्यावसायिक खेती की ओर प्रेरित कर रहा है। फूलों के प्रति एक छोटे से शौक से शुरू हुई वैशालू पुरो की यात्रा आज नागालैंड में महिला उद्यमिता और आधुनिक कृषि की मिसाल बन चुकी है। वैज्ञानिक प्रशिक्षण, मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ उन्होंने खेती को आय और रोजगार के नए अवसर में बदला है। आसुनुओं की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए नेहा गोस्वामी, आकाशवाणी कोहिमा।

0: श्रोताओं, डिजिटल तरीकों ने, डिजिटल प्रक्रिया ने हमारी जटिलताओं को धीरे धीरे खत्म कर दिया है और प्रशासन में भी डिजिटल तरीकों को अपनाने से बहुत सी जटिलताएं कम हुई हैं। इसी तरह से त्रिपुरा सरकार ने भी प्रशासन में डिजिटल प्रक्रिया को अपनाकर नेक्स्ट जेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के तरीके को अपनाया है और इससे कर्मचारियों के रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने से बहुत से संस्थागत काम को आसान किया जा रहा है। तो आइए, किस तरह से त्रिपुरा की प्रशासन व्यवस्था डिजिटल तरीकों से आसान बन रही है, हम इस रिपोर्ट में सुनते हैं।
1: त्रिपुरा के वित्त मंत्री प्रणजीत सिन्हा रॉय ने नेक्स्ट जेन HRMS की शुरुआत की। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC और राज्य के वित्त विभाग के सहयोग से तैयार ये प्रणाली सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। शुरुआती चरण में ई सर्विस बुक, ई लीव, GPF और ऑनलाइन पेंशन जैसी 4 प्रमुख सुविधाएं शुरू की गई हैं। इनके माध्यम से कर्मचारी अपनी सेवा से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे, छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे और पेंशन संबंधी प्रस्ताव भी डिजिटल तरीके से भेजे जा सकेंगे। नेक्स्ट जेन HRMS में कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। ई सर्विस बुक के माध्यम से पुराने कागजी रिकॉर्ड को डिजिटल रिकॉर्ड में बदला जा रहा है, जबकि ई साइन व्यवस्था दस्तावेजों की सुरक्षा और विश्वसनीयता को मजबूत करेगी।
2: दिस मॉड्यूल इट विल मेक लाइफ इजी नॉट ओनली फॉर द कंट्रोलिंग ऑफिसर, नॉट ओनली फॉर DDO अकाउंट डिपार्टमेंट, बट विल मेक अ ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ और एवरी एम्प्लॉई, बिकॉज वी आर गोइंग टू रिटायर एंड वी आर अवेयर दैट प्रोसेसिंग ऑफ पेंशन केसेस टेक्स सो मच टाइम, सो मच पेपर वर्क, प्रोसेसिंग ऑफ GPF एंड गेटिंग योर लेजिटिमेट क्लेम ऑफ GPF टेक्स सो मच टाइम, बट विद लॉन्च ऑफ दिस मॉड्यूल नाउ व्हाट वी आर टारगेटिंग इज दैट द डे एन एम्प्लॉई रिटायर्स, he should get a check of his pensionary dues, his gratuity, whatever commutation, as well as his, so that the day he departs, the day farewell is done, so we are able to hand over his legitimate dues, his or her legitimate dues to the retiring employee.
1: इस डिजिटल व्यवस्था से कर्मचारियों को अपनी छुट्टी, वेतन, GPF और पेंशन से जुड़ी जानकारी के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी। आवेदन और मंजूरी की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होने से कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर अकिंचन सरकार ने भी इस प्रणाली के जरिए प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने पर बल दिया।
3: We have been working for quite some time. The system can check any kind of mistakes or fraud. Scientists and software resources of NIC and software engineers of what they asked for exorbitant cost for preparation of payroll. Although there was little doubt, digital pulse book into the hands of employees by making it synchronous with the edges of office records and digital service book we are cooperating.
1: त्रिपुरा सरकार पहले से ही ई ऑफिस जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं का विस्तार कर रही है। अब नेक्स्ट जेन HRMS के जरिए कर्मचारी के नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति की सेवा संबंधी जानकारी को एकीकृत डिजिटल व्यवस्था में लाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। NIC के अनुसार HRMS के अंतर्गत 68 सरकारी विभाग जुड़े हैं और 88,740 से अधिक कर्मचारियों के डिजिटल सर्विस बुक तैयार किए जा चुके हैं। ये पहल त्रिपुरा में तेज, पारदर्शी और कागज रहित प्रशासन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। सुमन भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं वैष्णवी, आकाशवाणी समाचार।
0: श्रोताओं, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में एक विशेष आयोजन हुआ और इसमें जनजातीय संस्कृति और परंपरा को सहेजने को लेकर विशेष पहल की गई। हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में जहां एक तरफ परंपरागत जनजातीय संस्कृति को संजोने के प्रयास होते रहे हैं, वहीं आधुनिकता से जुड़कर भी परंपरा और आधुनिक समाज में एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जाता रहा है। इसी की झलक हमें इस समारोह में देखने को मिली। तो आइए ये रिपोर्ट सुनते हैं।
4: अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के रुक्सिन सर्कल स्थित लई बांगो दोलुंग अकांगोल में पहली बार लई बांगो सेंट्रल सोलुंग गिदे समारोह का शुभारंभ हुआ। आगामी 13 सितंबर तक आयोजित 4 दिवसीय समारोह में दपी, दपी मोली, देतक, दबिंग और पोपलुंग सहित विभिन्न गांवों के लोग शामिल हो रहे हैं। समारोह का उद्देश्य आदि जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ सामुदायिक एकता को मजबूत करना है। उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, पंचायती राज मंत्री ओजिंगता सिंह, अरुणाचल ईस्ट सांसद तापुर गांव,

0: विधायक निन्नोंग ईरिंग एवं नारीकोयू विधायक तोजिर कादू सहित जनप्रतिनिधि, सामुदायिक नेता और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत सभी गणमान्य अतिथियों ने आधुनिक शिक्षा और विकास के साथ सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। विधायक तोजिर कादू ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस समारोह को एक मजबूत सांस्कृतिक मंच बनाया जाना चाहिए, क्योंकि संस्कृति की रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं समुदाय की होती है। वहीं सांसद तापुर गांव ने युवाओं से अपनी मातृभाषा और स्थानीय बोलियों को सीखने, बोलने, पारंपरिक परिधान अपनाने और सोलुंग जैसे सांस्कृतिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। औजिंगता सिंह ने आदि और गालो समुदायों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया तथा पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अरुणाचल प्रदेश की विविध समुदायों के बीच एकता, आपसी सम्मान और शांतिपूर्ण संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समारोह संस्कृति के संरक्षण और परंपराओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के जन केंद्रित मंच बने रहने चाहिए। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
1: श्रोताओं, हम पूर्वोत्तर डायरी के पिछले कुछ संस्करणों से आपको नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की परंपराओं से अवगत करवा रहे हैं और आज भी एक ऐसी ही जनजाति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। थ्यांग न्यूंग्यम ये एक ऐसी जनजाति है जो अपनी विविध परंपराओं और रीति रिवाजों से नागालैंड में अपना एक विशेष स्थान रखती है। हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत विविध जनजातियों का संगम है और नागालैंड की ये जनजातियां वहां की विरासत और परंपरा को और विशेष बनाती हैं। तो आइए इस जनजाति की परंपराओं, रीति रिवाजों और वर्तमान समय में इन जनजाति के बरकरार होते हुए मूल्यों पर ये खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं जो हमारी संवाददाता असुनो ने हमें कोहिमा से भेजी है।
2: नागालैंड के सुदूर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में, जहां पहाड़ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलते हैं और नदियां इस भूमि की प्राचीन कहानियां सुनाती हैं, वहीं निवास करता है नागा जनजातियों में से एक प्रमुख जनजाति ख्याम न्यूंगन। भारत और म्यांमार दोनों देशों में फैली इस जनजाति का मूल निवास नागालैंड के सबसे पूर्वी जिले नोकलाक में है, जिसे सीमांत जिला भी कहा जाता है। त्वेनसांग जिले से अलग होकर बना नोकलाक लगभग 1152 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यहाँ मुख्य रूप से ख्याम न्यूंगम जनजाति निवास करती है। ख्याम न्यूंगन नाम स्वयं एक कहानी कहता है। ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, ख्याम जिसका अर्थ है पानी, न्यू यानी महान और अंगान यानी स्रोत। इनका संयुक्त अर्थ है महान जल का स्रोत। यह नाम उस बड़ी नदी से जुड़ा है जो उनके क्षेत्र से निकलती है, लांग नदी, जिसे आगे जाकर जुंकी के नाम से जाना जाता है और अंततः म्यांमार की चिनद्विन नदी में मिल जाती है। लोक कथा के अनुसार ख्याम न्यूंगन लोगों की उत्पत्ति ख्यामगान नामक स्थान से मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बड़े बाढ़ के समय लोग ऊंचे स्थानों पर चले गए थे। जब पानी कम हुआ तो वे नीचे लौटे और ख्यामगान में नई बस्ती बसाई। समय के साथ वे अलग अलग दिशाओं में फैलते गए और आज के नोकलाक क्षेत्र तथा म्यांमार में चिनद्विन नदी के उत्तरी किनारे तक बस गए। नोकलाक का जीवन पूरी तरह कृषि पर आधारित है। ख्याम न्यूंगन समुदाय मुख्यतः ग्रामीण है और खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। चावल उनका मुख्य भोजन है, जिसे झूम या स्थानांतरित खेती और सीढ़ीनुमा खेती दोनों तरीकों से उगाया जाता है। ये समुदाय जैविक खेती करता है और पहाड़ियों में उगने वाली नागा किडनी बीन्स विशेष रूप से प्रसिद्ध है। त्योहार ख्याम न्यूंगन संस्कृति की धड़कन है जो समुदाय, आस्था और कृषि को एक साथ जोड़ते हैं। इनके कई त्योहारों में त्योस्कुम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सितंबर या अक्टूबर की शुरुआत में मनाया जाता है। त्योस्कुम सुमाई नए झूम खेतों की फसल के आगमन का प्रतीक है और समृद्धि, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। 8 दिनों तक पूजा और पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान फसल काटना पूरी तरह वर्जित रहता है ताकि त्योहार का आशीर्वाद बना रहे। संपन्न परिवार बड़े भोज का आयोजन करते हैं, जिनमें मिथुन या भैंस की बलि देकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ भोजन और चावल की बियर साझा की जाती है। तुसोकुम एकता, सांस्कृतिक पहचान और कृषि समृद्धि का प्रतीक है। ये सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि त्योहार के बाद विवाह योग्य युवा अपने जीवन साथी की तलाश शुरू करते हैं। इसके अलावा

खाओजाओ सीएहोक आह जो जनवरी में मनाया जाता है और बियाम जो अगस्त में मनाया जाता है भी महत्वपूर्ण त्योहार हैं। ये सभी त्योहार कृषि चक्र से जुड़े हुए हैं। ख्याम नियुंगन समुदाय की कला भी अत्यंत विशेष है। बुनाई का कार्य केवल महिलाएं करती हैं और परंपरागत रूप से पुरुषों के लिए ये वर्जित माना जाता है। महिलाएं बैक स्ट्रैप या कमर करघे पर कपड़े बुनती हैं, जिनके डिजाइन पहनने वाले की पहचान, लिंग और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। इनके वस्त्र लाल और गहरे नीले रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन पर कौड़ी और शंख के सजावटी तत्व लगाए जाते हैं। उनका एक खास परिधान पारंपरिक योद्धा शॉल नुटसाह है। आभूषण भी उनकी पारंपरिक वेशभूषा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाएं पीले और नारंगी कांच के मोतियों की कई परतों वाली मालाएं पहनती हैं, जिनमें बीज, शंख और कभी कभी चमकीले कीटों के पंख भी शामिल होते हैं। ये प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। आज भले ही ख्याम नियुंगन समुदाय के अनेक लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, फिर भी वे अपनी पारंपरिक मान्यताओं और मूल्यों को संजोए हुए हैं। सामुदायिक एकता, पारिवारिक संबंध और कृषि से जुड़े अनुष्ठान आज भी उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से असोनो की रिपोर्ट के साथ प्रशांत कुमार।

0: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में। हमें अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आज लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है और दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की। इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमियों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

0: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ द्विपक्षीय बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। उन्होंने मौजूदा आसियान अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फिलीपींस की भागीदारी का स्वागत किया। श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति तथा नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ और द्विपक्षीय बैठकें करने वाले हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महामारी से निपटने की तैयारियों में भारत एक दशक पहले की स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है। देश ने ऐसी जीवंत जैव अर्थव्यवस्था, टीका विकसित करने की बेहतर क्षमता और वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है, जिनसे भविष्य में महामारियों से निपटने की वैश्विक तैयारियों में योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में महामारी के लिए तैयारी नवाचार गठबंधन के बोर्ड और निवेशक परिषद के लिए आयोजित एक समारोह में कही। चीन के मोकी में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। महिला वर्ग के फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया, जबकि पुरुष वर्ग फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आज प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स SL3 में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions, and the discussions over the past 2 days have further strengthened this conviction. He said this during his concluding remarks at the BRICS session on resilience, innovation, cooperation and sustainability at the Bharat Mandapam in New Delhi. Mr. Modi hoped that the New Delhi Declaration adopted at BRICS summit will provide clear direction for shared vision and future cooperation. He stressed on the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver लास्ट माइल इम्पैक्ट।
0: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
2: Saying that BRICS is poised to enter its third decade, Mr. Modi asserted that the world now expects concrete results from the grouping and not just ideas and commitments. He expressed confidence that BRICS will certainly live up to these expectations through collective efforts. Prime Minister extended his best wishes to China as the next chair of BRICS. Earlier, addressing the open session of BRICS summit, Prime Minister Modi said pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have demonstrated that in today's interconnected world, no crisis remains confined to a single region. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held a series of bilateral meetings with world leaders on the sidelines of the BRICS Summit 2026. He met President

0: प्रभावी, प्रतिनिधित्वपूर्ण और जवाबदेह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।
1: ब्रिक्स ने बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता को मजबूत करने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को बनाए रखने पर जोर दिया है। साथ ही उभरते बाजारों और विकासशील देशों की वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता बताई गई है। घोषणा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता का भी समर्थन किया गया है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को वैश्विक मामलों में अधिक भूमिका देना और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना है। चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में ब्राजील और भारत की बढ़ती भूमिका की आकांक्षा के लिए समर्थन दोहराया है। ब्रिक्स देशों ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में सुधार का भी समर्थन किया है। बढ़ते संरक्षणवाद और एकतरफा शुल्क तथा गैर शुल्क उपायों पर चिंता व्यक्त की गई है, क्योंकि इससे वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर पड़ सकता है। घोषणा में ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और चिंताओं को सामने रखने में ब्रिक्स की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया है।
0: श्रोताओं, अब ये जानना जरूरी है कि वैश्विक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स ने शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर क्या रुख अपनाया है।
2: ब्रिक्स देशों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जारी संघर्षों और बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। घोषणा में संघर्षों के समाधान के लिए बातचीत, परामर्श और कूटनीति को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। साथ ही संघर्षों को रोकने और उनके मूल कारणों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। मध्य पूर्व की स्थिति पर ब्रिक्स ने बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की और अधिकतम संयम बरतने तथा ऐसे कदमों से बचने का आह्वान किया जो स्थिति को और खराब कर सकते हैं। नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। गाजा की स्थिति पर ब्रिक्स ने युद्ध विराम बनाए रखने और मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की है। आतंकवाद के खिलाफ भी ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाया है। जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से जोड़ने का विरोध किया गया है। इसके साथ ही युवाओं में कट्टरपंथ और उग्रवाद को रोकने के लिए भी ब्रिक्स देशों के बीच अनुभव साझा करने की आवश्यकता बताई गई है।
0: श्रोताओं, अब ये भी जानना जरूरी है कि ब्रिक्स देशों ने आर्थिक विकास और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने के लिए किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया है।
3: ब्रिक्स देशों ने आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। घोषणा में कहा गया है कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियां आपस से जुड़ी हुई हैं और विकासशील देशों के सामने विकास की कई चुनौतियां हैं। ऐसे में राष्ट्रीय परिस्थितियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक और प्रभावी समाधान जरूरी है। ब्रिक्स ने अधिक मजबूत और समावेशी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता दोहराई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर दिया है। सीमा पार भुगतान के क्षेत्र में भी ब्रिक्स देशों ने व्यवहारिक समाधान तलाशने पर जोर दिया। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और निवेश के निपटान सहित तेज, कम लागत वाले, सुरक्षित, पारदर्शी और अधिक सुलभ सीमा पार भुगतान तंत्र विकसित करने पर चर्चा आगे बढ़ाने की बात कही गई है। छोटे और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs के लिए वित्त तक आसान पहुंच को भी महत्वपूर्ण माना गया है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स टास्क फोर्स ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्थापना की पहल भी की गई है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साझा विकास और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराना है।
0: श्रोताओं, ब्रिक्स घोषणा का एक महत्वपूर्ण पक्ष कृषि, ऊर्जा और तकनीक से जुड़ा सहयोग भी है। आइए इसे समझते हैं।
4: ब्रिक्स देशों ने कृषि और खाद्य सुरक्षा को लेकर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। घोषणा में कहा गया है कि ब्रिक्स देश वैश्विक खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए कृषि उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाना तथा खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करना जरूरी है। भारत की अध्यक्षता में इंदौर में हुई ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक के परिणामों का स्वागत किया गया। साथ ही ब्रिक्स एग्रीन यानी एग्रो इनपुट्स, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क स्थापित करने पर सहमति बनी है। यह एक सहयोगी, गैर बाध्यकारी और किसान केंद्रित व्यवस्था होगी। किसानों के बीज अधिकारों से जुड़े साझा मुद्दों पर चर्चा के लिए ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट्स इन सीड सिस्टम्स शुरू करने का भी स्वागत किया गया है।

0: कृषि के क्षेत्र में जलवायु अनुकूल और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए एग्रो इकोलॉजी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का नेटवर्क बनाने तथा डिजिटल कृषि में सहयोग बढ़ाने की भी बात कही गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में ब्रिक्स ने ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से स्थिर आपूर्ति बनाए रखने, महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। कम उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन के लिए साझा मानकों और प्रमाणन व्यवस्था पर सहयोग बढ़ाने की बात की गई है।
1: श्रोताओं, अब बात करते हैं तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल सहयोग की।
2: ब्रिक्स घोषणा में डिजिटल तकनीक और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और बेहतर सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार बताया गया है। ब्रिक्स देशों ने एक संप्रभु और आत्मनिर्भर डिजिटल इकोसिस्टम की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पब्लिक गुड्स के माध्यम से बड़े स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराने और आर्थिक तथा सामाजिक अवसर बढ़ाने की संभावनाओं को रेखांकित किया गया है। इसके लिए ब्रिक्स देशों का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी शुरू करने और कुछ डिजिटल समाधान के पायलट प्रोजेक्ट चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखते हुए इसकी सुरक्षा, विश्वसनीयता, समावेशिता और जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया गया है। भारत में फरवरी 2026 में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट का भी स्वागत किया गया है। ब्रिक्स देशों ने वैश्विक AI सहयोग को आगे बढ़ाने और AI के वैश्विक शासन से संबंधित ब्रिक्स लीडर्स स्टेटमेंट को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। तकनीकी सहयोग में अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, क्वांटम तकनीक और इंडस्ट्री 4.0 जैसे क्षेत्र भी शामिल है।
1: श्रोताओं, अगर पूरे परिदृश्य को एक साथ देखें तो नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स घोषणा केवल एक शिखर सम्मेलन का दस्तावेज नहीं है। इसमें वैश्विक शासन को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने, बहुपक्षवाद को मजबूत करने, विकासशील देशों की आवाज को बढ़ाने और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा दिखाई गई है। कृषि और खाद्य सुरक्षा से लेकर ऊर्जा, डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक ब्रिक्स ने व्यवहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर बल दिया है। वहीं शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत और कूटनीति को महत्व देते हुए आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई है। साथ ही 2027 में ब्रिक्स की अध्यक्षता और 19वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को समर्थन दिया गया है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह। नमस्कार।
3: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। ब्रिक्स संघः न तावत् केवलं राष्ट्राणां परिगणित समुदायमात्रः, अपितु वैश्विक विषमतानां परिहाराय एका अनन्यथा सिद्धा समाधान पारिस्थितिकी प्रणाली वर्तते इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवदिल्ली घोषणा पत्रम् ब्रिक्स देशानां भावी सहयोगस्य अबाधित मार्गदर्शकम् इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृहमंत्रिणः अमित शाहस्य आह्वानम्, प्रयोगशाला निर्मित वज्राणां समग्रा उत्पादन श्रृंखला भारतस्य प्रभुत्वे एव अवचिन्ना तिष्ठेत्। अपि च दुबई नगरे निवर्त्यमानायाः T20 एशिया चषक प्रतिस्पर्धायाः चरमे सोपाने अद्य भारतं श्रीलंका दलेन सह पक्ष प्रतिपक्ष भावेन सम्मुखी भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अवोचत् यत् ब्रिक्स न केवलं राष्ट्राणां समूहः, अपितु समाधानानां किञ्चन पारिस्थितिकी तन्त्रमस्ति। विगत दिनद्वयस्य गहन चर्चाभिः अयं दृढविश्वासः अधिकः सुदृढः जातः। सुदृढता, नवाचारः, सहकारः, सतत विकासश्च इत्यादिषु विषयेषु आयोजिते ब्रिक्स सत्रे स्वकीय समापनाभिभाषणे श्रीमोदी आशां प्राकटयत् यत् शिखर सम्मेलने

उच्चस्तरीयसम्भाषणं समाचरितम्। आसियान अध्यक्षरूपेण फिलिपिन्स देशस्य ब्रिक्स सम्मेलने उपाधिरहितां सहभागितां सह सहर्षम् अन्वमोदत। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगे व्याप्तिज्ञानेन साधितां सम्पूर्तिं प्रति पूर्णं सन्तोषं प्रकटितवन्तौ। तथा हि प्रतिरक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश अन्तरिक्ष रेल शिक्षा पर्यटन विज्ञान प्रौद्योगिकी जनसंपर्क क्षेत्रेषु च कूटनीतिक सम्बन्धानां अनन्यथा सिद्धत्वं सुदृढीकर्तुम् अङ्गीकारं प्रापतुः। रत्नाभूषण क्षेत्रे स्वावलम्बनस्य आह्वानं कुर्वन् गृहमन्त्री अमितशाहः मुम्बय्याम् उपस्थापयत् यत् प्रयोगशाला निर्मित वज्राणां समग्रा पारिस्थितिकी प्रणाली निर्माण श्रृंखला पूर्णतया भारते एव नियन्त्रणीया। मन्त्रिणा उद्घोषितं यत् भारतस्य पार्श्वे अस्मिन्नवसरे विजयप्राप्त्यै पूर्णा क्षमता वर्तते। समारोहे राज्यस्य मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे च उपस्थितौ आस्ताम्। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनाम् अन्ताराष्ट्रिय स्वीकृतिम् उद्घोषयन् आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः प्रावोचत् यत् ब्रिक्स घोषणापत्रे TCIM इत्यस्य समावेशः भारतस्य महती सम्पूर्तिः अस्ति। मन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् वैज्ञानिक अनुसन्धानैः गुणवत्ता नियन्त्रणैः च आयुर्वेद पद्धतिं विश्वस्तरे प्रतिष्ठापयितुं प्रशासनम् अनवरतं प्रयतते। महिलानां 20-20 एशिया चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमे चक्रे अद्य दुबई नगरे भारतस्य प्रतिस्पर्धा श्रीलंका दलेन सह भविष्यति। इयं निर्णायक स्पर्धा भारतीय समयानुगुणं रात्रौ 8 वादने प्रारप्स्यते। उभे अपि दले भारतं श्रीलंका च स्पर्धायाम् अपराजिते भूत्वा अन्तिम चरणं प्रविष्टे। महिला एशिया चषकस्य इतिहासे 7 वारं विजेता भूत्वा भारतीय दलं सर्वाधिक सफलं दलमस्ति। इति वार्ताः।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls on mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I am Sarabjeet Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। और जैसा कि सरबजीत पहले ही बता चुकी है, हम किसी खास म्यूचुअल फंड्स के बारे में सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। श्रोता, इससे पहले इन नंबरों से पहले हमारे फ़ोन नंबर से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी, धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्टेड एट ब्रिक्स समिट विल प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन फॉर शेयर्ड विजन एंड फ्यूचर कोऑपरेशन। Global crude oil prices surged around 9% last week, and domestic investors to focus on US Federal Reserve's policy decision, macroeconomic data and geopolitical developments for Q's next week.
1: Pradhan Mantri Narendra Modi ne kaha, BRICS शिखर सम्मेलन में स्वीकृत नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा।

0: पिछले सप्ताह कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़त और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत निर्णय, आर्थिक आंकड़ों और भू राजनीतिक घटनाओं पर।
1: And before we go just any further in the program, may we remind our listeners, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें। आज की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का इकोसिस्टम है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर सत्र के समापन भाषण में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकृत नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में श्री मोदी ने कहा कि महामारियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं ने यह दिखा दिया है कि परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। प्रधानमंत्री ने आगाह किया है कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ब्रिक्स लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला सहयोग प्रारूप आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक भरोसेमंद और सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा। नवाचार के तहत ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स को आपस में जोड़ेगा। उन्होंने बताया कि भारत ने नए और बड़े पैमाने पर लागू होने वाले समाधानों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप नवाचार कोष का प्रस्ताव रखा है।
2: इनोवेशन के अंतर्गत ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क हमारे स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स को आपस में जोड़ेगा। इनोवेटिव और स्केलेबल सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए हमने ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का प्रस्ताव रखा है। ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा।
1: एंड आई कैन सी आवर फर्स्ट कॉलर कनेक्टिंग फ्रॉम दिल्ली। जीवन जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
3: नमस्ते, मैं करंटली SIP कर रहा हूँ, पराग वारेकर फ्लेक्सी कैप 10,000, बंधन स्मॉल कैप 8,000 और मोतीलाल ओसवाल मीट लार्ज कैप और मल्टी कैप में 8,000 और एक न्यू जो था NFO आया था HDFC बैंक का निफ्टी 550 और 2525 का अराउंड 30,000 के आसपास, इन सब में मैं कर रहा हूँ SIP। तो एक ये जानना चाह रहे हैं मेरा पोर्टफोलियो कैसा है और भी मैं 5,000 इंक्रीज करना चाहता हूँ, इन्हीं में करूँ या किसी अदर फंड में करूँ, ये फंड कैसे हैं? क्या मेरे को वही लार्ज कैप फंड एलोकेट एडिशनल लेना चाहिए या यही मेरी नीड पूरी कर दूंगी?
4: जीवन जी, मेरे हिसाब से आपके फंड्स का चुनाव ठीक है। आप कोई नया फंड ऐड करने से मुझे नहीं लगता कि कोई खासा ऐसी कोई कमी है आपके पोर्टफोलियो में जो आप जिसकी आपूर्ति के लिए आपको नए फंड की आवश्यकता है। आप इन्हीं फंड्स में आप SIP के माध्यम से लगा रहे हैं, लंबे समय का अगर ये पैसा है तो उसके लिए मेरे ख्याल ये पोर्टफोलियो उपयुक्त है। और इसी में आप जो भी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट आपके पास है आप इन्हीं फंड्स में अपना एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: जी, और अभी आशुतोष अगर हम फंड्स की हालत देखें, अगर खासकर अभी जो पूरी दुनिया के हालात पर हम गौर कर रहे हैं और कई तरह के फंड्स पर हमारे जो श्रोता हैं उनकी दिलचस्पी जिस तरह से हम देख रहे हैं, पिछले कुछ समय में जब देखा था हमने कई श्रोता पूछते हैं कि विदेशी फंड्स में हम कैसे निवेश करें और किस तरह से हमें उसका लाभ मिल सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। अभी चलते हैं, एक खबर है हमारे पास कच्चे तेल से जुड़ी हुई।
1: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस नॉट शार्प वीकली गेन्स अमिड एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस ड्यूरिंग द वीक। ब्रेंट क्रूड नवंबर फ्यूचर्स सर्ज्ड 8.7% टू सेटल एट $104 and 61 cents per barrel. West Texas Intermediate Crude October futures soared 9.4% to end at $100 and 5 cents per barrel. Now we go over live to our correspondent in Dubai, Manish Shiva, for more updates from the region. Manish, oil prices rose sharply last week. Could you please provide us a quick recap of the developments in West Asia that led to this surge, and also if you could tell us about the latest situation on the ground?
3: Hi, Sarabjit. Of course, the resumption of U.S.-Iran fighting early this month. Then, of course, the developments in Yemen, which started putting pressure on the Red Sea route of oil. And most recently, the drone attacks on the Saudi East-West pipeline. This route is estimated to carry almost 4-5% of global oil supply. Now, that has been temporarily shut. So, of course, we see a lot of pressure on the oil prices. The Brent is around 104. WTI is also around 100. Now, in terms of what is happening currently in the last 24 hours, there have been fresh claims by the Houthis of more attacks on Saudi infrastructure. This morning, an Iranian commercial vessel was hit by a suspected projectile in the Strait of Hormuz. So no relief there yet. In the midst of this, although, there are some chances of diplomatic engagement tomorrow, that is on Monday. Iran and at least some Gulf states are scheduled to meet in Oman and discuss the possible way outs of reopening Strait of Hormuz. Not the complete reopening is what has been reported, but a certain movement may be allowed. However, it needs to be seen if all the Gulf states will actually participate in this meeting. And also, without the involvement of the United States, whatever arrangements are actually worked out, we'll need to see if they actually are helpful in resolving this subject.
1: Well, after that update from Manish from Dubai, let's hear what Harish has to ask our next caller from Meerut. Harish ji, sawal puche.
5: Ma'am, mera sawal ye hai ki mere paas small cap, mid cap, flexi cap aur contra fund hai. Small cap mein meri 30,000 ki SIP hai, mid cap mein 30,000 ki, flexi cap mein 25,000 ki, contra mein 10,000 ki. तो क्या ये 10 से 12 साल के टाइम होराइजन में एक बढ़िया कदम है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। और ये कंटिन्यू रहेगा 10 से 12 साल, बस ये है कि हो सकता है अगर इतना पैसा मैं इन्वेस्ट ना कर पाऊँ तो थोड़ा कम कर दूंगा या थोड़ा बढ़ा दूंगा, लेकिन करता रहूंगा। अब बस यही मेरे को उनसे पूछना था सर से कि क्या ये सही वो है चुनाव मेरा।
4: जी, आपने बताया तकरीबन आपका आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा आपका स्मॉल एक स्मॉल और एक मिड कैप फंड में लग रहा है और बचा हुआ आपका एक फ्लेक्सी और कॉन्ट्रा में। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस पोर्टफोलियो में कोई बुराई नहीं है अगर आपके फंड्स का चुनाव सही है। बस आप ये ध्यान रखिएगा आपके पोर्टफोलियो में क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप की मात्रा काफ़ी अधिक है, इस पोर्टफोलियो से मुझे लगता है कि कम से कम 60% आपका पैसा स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में निवेशित हो रहा होगा। तो ये पोर्टफोलियो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, जब मार्केट उतार चढ़ाव के दौर से निकलेगी, जब भी मार्केट में क्रैश आएगा शायद आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरेगा। तो वो उतार चढ़ाव से आपको उस दौर में आपको संयम बना के रखना होगा। ये एक फेयरली एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल है, लेकिन अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो इस पोर्टफोलियो में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको मार्केट गिरने से घबराहट होती है तो मुझे लगता है कि उस सर्कमस्टांस में स्मॉल और मिड कैप में आपको अपना एक्सपोजर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए।
0: मतलब उससे पैसे हटाकर आप फ्लेक्सी कैप में या किस तरह के फंड्स में डाल सकते हैं?
4: जी, तो पहले तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो आप कुछ ना

0: करें, आप इस पोर्टफोलियो को बरकरार रखें, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क को मॉडरेट करना चाहते हैं तो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, आप जो अभी तक आपने निवेश किया उसको ना छेड़े, क्योंकि आप उसको रिडीम करेंगे, टैक्स लगेगा, तो इंक्रीमेंटल जो आपके SIPs हैं आप उनको थोड़ा सा अपने फ्लेक्सी कैप और कॉन्ट्रा फंड की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं।
1: जी, अगले कॉलर हैं भोपाल से शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: नमस्ते मार्केट पत्रकार,
1: नमस्कार
2: सर। ये SIF स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड क्या रिटेल इन्वेस्टर के लिए ठीक रहेंगे होते हैं, क्योंकि अगर किसी के पास कुछ 10 लाख रुपए है उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख का होता है ऐसा कहा जाता है, इज इट राइट ऑफ नॉट? एंड सेकेंडली इसका एग्जिट क्या होता है, इसमें कब निकल सकते हैं, 1 साल के बाद जैसे उसमें होता है वैसे ही होता है? एंड हाउ इट इज इन्वेस्टेड, डू वी हैव टू हैव डीमैट अकाउंट और वी कैन सिंपली बाय एज वी बाय अदर म्यूचुअल फंड ऑन द SBI म्यूचुअल फंड वेबसाइट और एनी अदर वेबसाइट? तो अगर SIF के बारे में सर बताइए सर रिटेल इन्वेस्टर्स को हमको, थैंक यू।
0: जी, तो पहले तो आपकी जानकारी बिल्कुल सही है कि इनमें मिनिमम टिकट साइज 10 लाख का होता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स में भी थोड़े एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रोडक्ट उनके लिए टारगेटेड है, क्योंकि अगर आपके पास 10 लाख रुपए और आप एक SIF में लगाते हैं तो वो भी मेरा ख्याल मैं उसके अगेंस्ट राय दूंगा, क्योंकि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो जिन निवेशकों का कम से कम 50-60 लाख या उससे ज़्यादा का पोर्टफोलियो है तो उसमें वो SIF फिर भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से अभी SIF काफ़ी नए हैं। जो सबसे पुराना SIF फंड है उसको भी अभी शायद अक्टूबर में 1 साल कंप्लीट होगा, तो बहुत नए फंड्स हैं। आप अभी इनको ट्रैक करिए, इनको समय दीजिए, मेरे ख्याल में अभी इनमें इन्वेस्ट करने की जल्दबाजी नहीं करिए। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में कोई बहुत ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नीड है जो कि ये फुलफिल करते हैं, जो कि आपका एक साधारण म्यूचुअल फंड से पूरी नहीं हो सकती कोई इन्वेस्टमेंट नीड। तो इनमें इन्वेस्ट करने की जल्दबाजी नहीं करिए, ट्रैक रिकॉर्ड इन्हें बनाने दीजिए, अपने आप बातें सामने आएंगी। काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड्स SIFs, तो अपने आप इनको अपने आप को प्रूव करने दीजिए पहले, उसके बाद इसमें निवेश करने के बारे में फैसला कीजिएगा। बाकी जहाँ तक इनके ऑपरेशनल मोडालिटीज़ की बात है तो ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ऑपरेट करते हैं, उसी तरह आप इनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, डीमैट अकाउंट की इनमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो जो लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो आप इनको उस सेंस में एक अलग तरीके के म्यूचुअल फंड ही आप समझ सकते हैं।
3: All right, our next caller joins us from Maharashtra, Gurunath. Please ask your question.
4: जी मैम नमस्कार।
3: जी नमस्कार।
4: मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम ये जो म्यूचुअल फंड है मैं मतलब SIP करके ही जाना चाहिए, और जो फिलहाल जो हालात है मतलब मैं शेयर मार्केट के बारे में बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है, कुछ FIs भी या से पैसा निकाल के ले गए, डोमेस्टिक भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो मैम सर से मेरे को यही पूछना था कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का कितना प्रतिशत कनेक्शन रहता है, क्योंकि मैं सुना हूँ कि म्यूचुअल फंड वाले भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, और हम फिलहाल पैसे लगाना चाहिए किसी फंड में? थैंक यू मैम।
0: जी, आपका पहला सवाल कि इनमें कितना कनेक्शन रहता है, तो देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का 100% कनेक्शन होता है। अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जो कि आपका पैसा आगे आपके बिहाफ पर इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो जैसे मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे उसी तरीके से आपका म्यूचुअल फंड भी बिहेव करेगा। तो कनेक्शन भरपूर है, कनेक्शन 100% है, वही उतार चढ़ाव, बस फर्क यही है कि क्योंकि आपके बिहाफ पर एक फंड मैनेजर जो कि एक प्रोफेशनल है, सूझबूझ के साथ आपका पैसा लगाता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो खराब कंपनी के स्टॉक से आपको बचाए रखेंगे, अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश करेंगे। लेकिन फिर भी जो उतार चढ़ाव हैं वो तो बाजार के अधीन है, तो जब मार्केट गिरेगी तो कोई भी फंड मैनेजर एक इंटरिम लॉस से आपको नहीं बचा सकता। तो आप ये मानकर ही इन्वेस्ट करिएगा म्यूचुअल फंड्स में कि उतार चढ़ाव का अनुभव तो आपको मिलेगा ही, और उसको आपको धैर्य के साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा। जहाँ तक आपका सवाल था कि इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं,
1: जी वो थे कि अभी जो हालात हैं मार्केट कुछ ज़्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है या गिरावट है, ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? FPIs पैसे निकाल रहे हैं, हालांकि इन्होंने कहा कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो फिर भी कुछ कर ही रहे हैं।
0: जी, तो देखिए अगर आपके पास कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, कम से कम आप 5-7 साल की अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप SIP के

0: माध्यम से मार्केट में निवेश करिए, और एक लंबे समय के इन्वेस्टर के लिए तो एक्चुअली निवेश करने का अच्छा टाइम है। जब मार्केट में गिरावट है तभी आप लंबे समय में एक अच्छे प्रॉफिट का अनुभव कर पाएंगे। तो अगर आप 5-7 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव में धैर्य बनाए रखने में सक्षम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप SIP के जरिए अपना निवेश शुरू कर सकते हैं।
1: All right, moving on with some more news stories. External Affairs Ministry today said there have been a number of concrete practical development oriented outcomes during the BRICS summit which concluded today. Briefing media in New Delhi this afternoon, Secretary ER in the Ministry Sudhakar Dalela said there are over 50 concrete outcomes across various thematic tracks, which is a significant achievement of India's leadership this year. He said BRICS has maintained consistent position on need for UN reform. India would like to have more engagements with BRICS nations going forward. Mr. Dalela informed that the session also received the report of the BRICS Business Council and BRICS Women's Business Alliance to bring the voice of businesses and particularly of women in business directly before leaders.
2: जी, आशुतोष, हम बात कर रहे थे विदेशी फंड्स की, विदेशों में निवेश करने वाले फंड्स की और नैसडैक में जो असर हो रहा है। लेकिन अभी कुछ समय में देखा गया, अभी पिछले कुछ दिनों में, कि नैसडैक का जो ETF है उसमें काफ़ी तेज़ी दिखाई दी है। इसकी वजह क्या है और आम निवेशक को कितना लालच करना चाहिए उसे देखकर?
0: जी, तो इसका रीज़न ये है कि पिछले कुछ दिन में ये देखा गया है कि जो इंटरनेशनल ETFs हैं, नैसडैक या S&P 500, नैसडैक Q50 को जो फॉलो करने वाले ETFs हैं, उनका जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडेड प्राइस है उसमें काफ़ी तेज़ी देखी गई है, और NAV से ये फंड्स काफ़ी अत्यधिक प्रीमियम पे हैं, 40-50% के भी प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अभी हाल फिलहाल तक इनकी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता था वो ये NAV से 20% ऊपर या नीचे के दायरे में ही हो सकता था। इनके ऊपर वो दायरा था, उसके ऊपर सर्किट लग जाता था। दो दिन पहले की NAV से ये 20% से ज़्यादा मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन हाल फिलहाल में इनकी ट्रेडिंग के जो प्राइस है उसकी रिस्ट्रिक्शंस में चेंज किया गया है, और अब उसको उनके पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से एंकर कर दिया गया है, ना कि NAV से। तो अगर पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस ऑलरेडी प्रीमियम पे है, आज और उसके ऊपर प्रीमियम बढ़ जाएगा, कल उसके ऊपर और बढ़ सकता है, तो अभी प्रीमियम की जो मात्रा है इनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये ट्रेंड देखा गया है इंटरनेशनल ETFs में ही। ये रूल अपने आप में कोई गलत नहीं है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के ऊपर इसी तरह से ट्रेडिंग के रूल लगते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ETFs में प्रॉब्लम यह है कि नई यूनिट्स क्रिएट नहीं हो सकती, RBI की लिमिट्स हैं। तो इसलिए जब भी ये देखा गया है कि जब भी कोई चीज़ प्रीमियम पे ट्रेड कर रही होती है तो उसकी नई यूनिट्स क्रिएट होती हैं, सप्लाई उसकी यूनिट्स की बढ़ जाती है और दाम अपने आप NAV के नज़दीक आ जाता है। इन फंड्स में वो मैकेनिज़म अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि नई यूनिट्स क्रिएशन पे पाबंदी लगी हुई है, तो इस कारण से डिमांड इनकी है, सप्लाई और मार्केट में नहीं आ पा रही है। तो वो एक जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे प्ले में है उस वजह से ये काफ़ी प्रीमियम पे हैं। अब सवाल ये है कि निवेशकों के लिए इसका क्या इम्प्लीकेशन है। तो आप अगर किसी भी विदेशी ETF में निवेश करने की, इंटरनेशनल ETF में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये ज़रूर चेक करें कि वो NAV से कितने प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कोई फंड अगर 50% प्रीमियम पे है तो ऐसा हो सकता है कि अगले 2 साल में वो बहुत अच्छे रिटर्न दे, 40-50% भी रिटर्न दे, लेकिन अगर उसके बाद ये प्रीमियम वापस नीचे आ जाता है तो 2 साल होल्ड करके भी शायद आप लॉस में रहें। तो ये आज की डेट में ऐसा है कि कोई 100 रुपये की दाम वाली चीज़ आप 150 रुपये में खरीद रहे हैं, तो इसमें आपको काफ़ी केयरफुली, अगर आप स्टॉक मार्केट पे ETF की यूनिट्स खरीद रहे हैं इंटरनेशनल ETF की, तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी।
2: जी, यानी ज़्यादा हीटेड बाजार अगर दिखाई दे तो दूर ही रहें।
0: जी,
1: So I've been listening to all your piece of advice very carefully, Ashutosh, and you spoke about risk appetite, you mentioned time horizon, not reacting to every movement in the market. So is consistency and patience, are these the key attributes when it comes to investing in the mutual fund industry?
0: Oh, absolutely. In fact, there is a very old adage which is said that time in the market is far more important than timing the market.
1: Well said.
0: So a lot of people try to time their entry. They want to buy when the stocks are at their lowest and exit when they are at the highest. You know, on paper sounds a very noble concept, but in practice it is almost next to impossible to implement. So you just have to remain disciplined.

0: keep investing periodically. Match your investments to your cash flow patterns. You earn monthly, you save monthly, and you invest monthly. And if you keep doing that with discipline through the ups and downs of the market, let the growth of the Indian economy is and is likely to continue to be among the world's fastest growing major economies for decades from here. Let that momentum work for you and let that tailwind earn you the wealth.
1: If time permits, we'll come back to this interesting discussion. Meanwhile, let's hear from Dev, who connects with from Faridabad, what his question is.
2: Hello.
3: Ji, Dev, apna sawal poochhe.
2: Hello, sir.
3: Ji, sawal
2: poochhe. Sir, meri beti abhi 18 saal ki hui hai aur mujhe uske liye kuch funds khareedne hain, lump sum amount lagana hai aur ajin 5 se 10 saal ka hai aur mere paas Flexi का फंड ऑलरेडी है, एक लार्ज कैप भी है, एक पीएसयू है और ईएलएसएस है. ये फंड मेरे पास 2021 से हैं सारे और अभी मुझे बेटी के लिए कुछ फंड खरीदना, तो किस पे है मुझे लगाना चाहिए? मेरे पास अलग अलग एमसीज के फंड है एक्चुअली.
0: जी, आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑलरेडी है. अगर आप इन फंड से संतुष्ट हैं, इनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, ठीक ठाक है, आपको अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, तो कोई नया फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. आप इतना ही देख सकते हैं क्योंकि आप अपनी बिटिया के लिए पैसा ही लगाना चाहते हैं. अगर एक यंग एज पर अगर अच्छा टाइम होराइजन आपके आगे है, रिस्क एपिटाइट है, तो आप थोड़ा पैसा किसी स्मॉल कैप फंड में भी लगा सकते हैं. लेकिन वो थोड़ा एग्रेसिव आपका पोर्टफोलियो बनाएगा, थोड़ा आपका पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी बढ़ाएगा. लेकिन रिटर्न बूस्ट करने के लिए अगर आप 10-12% अपना पैसा इस पोर्टफोलियो का एक डेडिकेटेड अच्छे स्मॉल कैप फंड में लगाते हैं, तो कोई बुराई नहीं है. बाकी आपके पास जो फ्लेक्सी कैप वैल्यू फंड्स हैं, आप उनमें निवेश करते रहें. ईएलएसएस का, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं, तो ईएलएसएस में कोई इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करने का कोई बहुत ज़्यादा पर्पस नहीं है, क्योंकि आपको न्यू टैक्स रिजीम में ATC के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है. तो आप ईएलएसएस फंड उस केस में बंद कर सकते हैं. और अगर आपको नया फंड ऐड करना ही है, तो स्मॉल कैप जैसे मैंने बताया, या फिर आप मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, जिसके थ्रू भी आपको मिड और स्मॉल कैप का अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है, जो कि आजकल फ्लेक्सी कैप फंड्स में अब कम देखने को मिलता है.
3: जी, और नज़र डालें FPIs के हाल पर. इस महीने अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPIs ने भारतीय बाजार से पैसे निकाले हैं. जुलाई और अगस्त में उन्होंने लिवाली की थी. ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के कारण निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित हुई है. इसके चलते सितंबर में अब तक FPIs ने घरेलू शेयर बाजार से 13,138 करोड़ रुपये की निकासी की है. कुल शुद्ध निकासी में से 14,474 करोड़ रुपये की राशि शेयर बाजारों से निकाली गई. हालांकि प्राथमिक बाजार के माध्यम से FPIs निवेश का रुझान सितंबर में भी जारी रहा. इस महीने अब तक FPIs ने प्राथमिक बाजार में 1,336 करोड़ रुपए का निवेश किया है. और अगले कॉलर है हमारे दिल्ली से वरुण, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
4: नमस्कार.
3: नमस्कार
4: सर, मुझे पूछना है, जैसे एक मल्टीकैप काफी फेमस मल्टीकैप फंड है, आप लोग नाम लेने मना करते हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ, तो उसका अभी प्रदर्शन काफी खराब क्या है, मतलब उतना लोग कहते हैं साइज बहुत बड़ा हो गया और उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है. अब क्या सर, आप समझ ही गए होंगे, तो उसमें क्या सर इन्वेस्ट स्टेट रहना चाहिए? मेरा सीट में भी यूज मनी जा रहा है उसमें ना, क्या उसको बंद करके उसका साथ में जो दूसरा फंड है, जो अभी जो वैल्यू रिसर्च का हिसाब से जो अच्छा फंड है, उसमें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए? थैंक यू.
0: जी देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी, इवन द बेस्ट ऑफ फंड्स गो थ्रू पैचेस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस. कोई भी फंड मैनेजर जादूगर नहीं होता है कि वो हर तरह की मार्केट कॉन्टेक्स्ट में, हर तरह की स्थिति में अच्छा ही परफॉर्म करेगा. तो फंड्स भी अपने उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे पीरियड्स आते हैं, ऐसे फेजेस आते हैं कि जब वो अंडर परफॉर्म करते हैं, तो एक एक दो दो साल तक भी वो अंडर परफॉर्म करते हैं, तो आपको उतना धैर्य बनाना पड़ेगा. अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर फंड है, जो कि आपके होल्डिंग पीरियड पे उसने अच्छे रिटर्न्स दी हैं, और आपको फंड में और कोई डिस्टर्बिंग चीज़ नहीं दिखती है, कि जैसे उसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, अगर वो अचानक से बहुत चेंज नहीं हो गया है, फंड मैनेजर चेंज नहीं हो गया है, तो जो अंडर परफॉर्मेंस है वो किसी डेफिनेटिव रीज़न से आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा कोई खास चिंता की ज़रूरत नहीं है. फंड को टाइम दीजिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए. अब आपका सवाल कि इसमें आपको SIP जो आपका कंटिन्यू हो रहा है वो बनाए रखना चाहिए कि नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि वो डिसीजन आप इस कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में बाकी कितने फंड हैं, इस फंड का कितना वेटेज आपके पोर्टफोलियो में है. अगर

0: रिफंड ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में 25-30% वेटेज है इसकी, तो मेरा ख्याल आप इसमें अपना एसआईपी बंद करके डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड इंडिविजुअली, तो आप उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें और पैसा लगाना है या नहीं।
1: जी, और देखें पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रहा। एमसीएक्स में अक्टूबर अनुबंध के सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान लगभग स्थिर रहा और 152,784 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं दिसंबर अनुबंध की चांदी में 1.1% की गिरावट आई और ये 234,974 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।
2: Domestic investors are expected to focus on key market triggers in the holiday shortened week ahead, including the US Federal Reserve's policy decision, macroeconomic data, foreign institutional investor flows, commodity prices, and bond yields. Indian stock markets will remain closed tomorrow for Ganesh Chaturthi. Meanwhile, market participants will closely track key economic indicators, including retail and wholesale inflation data, import-export figures, and employment data. The primary market is also set for another busy week with 5 main board IPOs opening for subscription. Global monetary policy will remain in focus beyond the US, with the Bank of England and Bank of Japan also scheduled to announce their policy decisions during the week.
1: आशुतोष, आज वक्त इतना ही है कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: Listeners, before we wrap up, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi says New Delhi Declaration adopted at BRICS Summit will provide clear direction for shared vision and future cooperation. Global crude oil prices surge around 9% last week. And domestic investors to focus on US Federal Reserve's policy decision, macroeconomic data and geopolitical developments for cues next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
5: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
4: प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स समूह में मजबूती और लचीलापन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि महामारी, जलवायु आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं में रुकावटों ने यह दिखा दिया है कि आपस में जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए।
5: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट realities, but together we rise through cooperation and blossom for humanity.
4: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकाये

0: के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका और बरुंडी के राष्ट्रपतियों और नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य अब भी लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। दुबई में महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला आज रात 8 बजे मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: Saying that BRICS is poised to enter its third decade, Mr. Modi asserted that the world now expects concrete results from the grouping and not merely ideas and commitments. He expressed confidence that BRICS would live up to these expectations through collective efforts. The Prime Minister also extended his best wishes to China as the next chair of BRICS. Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. The External Affairs Ministry today said the BRICS summit, which concluded in New Delhi today, produced a number of concrete and development-oriented outcomes. Briefing the media in New Delhi this afternoon, Secretary Economic Relations in the Ministry, Sudhakar Dalela, said that more than 50 concrete outcomes had been achieved across various thematic tracks, describing this as a significant achievement.

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एकजुटता और वैश्विक सहयोग के संकल्प पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल कुमार त्रिगुणायत, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
1: नमस्कार श्रोताओं, नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच सहयोग, समावेशी विकास और वैश्विक दक्षिण की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। आज हम इसी शिखर सम्मेलन के प्रमुख संदेशों, पहलों और भारत की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत। अनिल जी, आपका स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
1: अनिल जी, सबसे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो बदलती वैश्विक व्यवस्था में इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी प्रासंगिकता को आप किस रूप में देखते हैं?
2: देखिए, मेरा मानना है कि जो ब्रिक्स है, जब ये शुरू हुआ था तो चार कंट्रीज थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और उनके बारे में जब जिम ओ'नील ने कहा था तो उसने ये कहा था कि 21वीं सदी में ये डिफाइनिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज होंगे, और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते आज हम 11 मेंबर कंट्रीज हो गए हैं। अगर आप 11 कंट्रीज को देखें और 10 पार्टनर कंट्रीज को देखें तो आपको लगेगा कि आधे से ज्यादा दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं, सब पावरफुल कंट्रीज हैं। अगर वो पावरफुल कंट्रीज साथ में आते हैं तो नेचुरली है कि एक बड़ा मैसेज जाता है। तो ब्रिक्स आज की डेट में एक नॉन वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव के रूप में उभरा है, जिसका मतलब यह है कि जो आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह के पूरे विश्व में युद्ध हैं और इंटरनेशनल ऑर्डर और लॉ का समावेशी नहीं है, कोई पूछ नहीं है, तो आज जो हम देखते हैं कि ब्रिक्स जब बात करता है ह्यूमैनिटी फर्स्ट की, जैसा प्रधानमंत्री ने जी भी कहा, या पीपल सेंट्रिक अप्रोचेस की, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज ये है कि अब इस तरह जो चल रहा है उसमें मल्टीलैटरलिज्म, क्योंकि सब जो बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ को ताक पर रखकर, तो उसमें किस तरह से ये कंट्रीज जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और पावरफुल हैं, क्योंकि इकोनॉमिक पिवट 21वीं सदी में इधर है, 50%

0: से ज्यादा दुनिया की पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डिविडेंड, इसका मतलब है टेक्नोलॉजी प्रोएस, द वर्क फोर्स फॉर टुमारो, सब यहाँ पर है। आप देखिए कि सबसे बड़ी जो ताकतें हाइड्रोकार्बन्स को प्रोड्यूस करती हैं, ऑयल एंड गैस को, वो इसके अंदर है, और इसमें वो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा उनको कंज्यूम करते हैं। अगर हम आपस में किसी तरह से मिलकर के कोलैबोरेटिव मैट्रिक्स करें तो वो ज्यादा कारगर होगी, और यही जो है मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो विन विन पार्टनरशिप के बारे में ग्लोबल साउथ का रियल में वॉइस, और ये कहने के लिए कि उनको अगर जो दुनिया के अंदर रूल्स बन रहे हैं उसमें खाली वो रूल टेकर होकर के नहीं रह सकते हैं, अब उनको रूल शेपर के रूप में बनना पड़ेगा। और सबसे बड़ा यह है कि गवर्नेंस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अब प्रासंगिक नहीं है। इसका मतलब है जो उनके अंदर रिफॉर्म्स होने हैं वो बहुत आवश्यक हैं और उनको कैरी आउट करना चाहिए। ये सबसे बड़ा मैसेज है। उसके अलावा बाकी चीजों में इंपॉर्टेंट जो है, देखिए सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन में जो भी चीज आप सोच सकते हैं एक्टिविटी, वो सब उसके अंदर है। 100 से ज्यादा वर्किंग ग्रुप्स हैं हमारे, 35 से ज्यादा वर्टिकल्स हैं जिसमें 22 मिनिस्टीरियल्स हैं, और ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन इशू हुआ है वो खुद में एक बहुत बड़ा मैसेज है। और वो मैसेज जो है वो आप देखें अगर तो शुरू के ही जो उसके पैराग्राफ्स हैं उसमें ही झलक जाता है कि क्या है वो, कि हम एक जो है एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है, आप एक दूसरे की इज्जत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये है कि सॉवरेन इक्वालिटी, कि सारे कंट्रीज बराबर हैं, बराबरी की बड़ी बात है, साथ में है, सोलिडारिटी जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेसी है, और इंक्लूसिवनेस, देखिए सब जगह एक एक्सक्लूसिविटी आती है, चाहे वो G7 है, एक्सक्लूसिव क्लब है, जितने भी अगर आप देखेंगे P5 है वो एक्सक्लूसिव क्लब है, लेकिन भारत हमेशा एक इंक्लूसिविटी की बात करता है, कोलैबोरेशन की बात करता है, एक कंसेंसस की बात करता है, और यही ब्रिक्स के अंदर में मेन प्रिंसिपल्स भी है। तो इसलिए ब्रिक्स आज जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ब्रिक्स हैज कम ऑफ एज 20 साल में।
1: प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और इस समूह से जुड़ी अपेक्षाओं को रेखांकित करते हुए सहयोग को नई दिशा देने की बात कही है।
2: पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। साथियों, ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है। अब दुनिया हमसे केवल आइडियाज और कमिटमेंट्स नहीं, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स की अपेक्षा करता है। मुझे विश्वास है कि हम साझा प्रयासों से इन अपेक्षाओं पर जरूर खरे उतरेंगे।
1: अनिल जी, भारत की अध्यक्षता ने ब्रिक्स के एजेंडे में किन नई प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं को प्रमुखता दी है?
0: देखिए सबसे बड़ी जो चीज मैं देख रहा हूँ कि जब से ये पीछे हम देखते चले आ रहे हैं कि तो टेररिज्म के बारे में आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है, और उसके बारे में डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी जो है बहुत सारे देशों की, उसको कॉल आउट किया है, और उसमें एक सॉलिडेरिटी के बारे में कहा है। और दूसरी चीज जो प्रधानमंत्री के भाषण में खुद भी निहित थी, जैसा कि अब तक आइडिएशन की जो बातें थी अब उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, उन्होंने एक दो चीजें बड़ी सजेस्ट करी। जो एक तो ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में उन्होंने कहा कि टेक्स्ट बेस्ड निगोसिएशंस जो हैं उसके ऊपर में अब आगे काम होना चाहिए और रिफॉर्म्स को डिले नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि देखिए इतने सारे सी फेयरर्स हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बहुत आवश्यक है, सारी दुनिया का कारोबार, ट्रैवल, ये सारी चीज रुक गई है इस वक्त युद्धों के दौरान, तो उसके ऊपर उन्होंने एक सी फेयरर्स इमरजेंसी नेटवर्क बनाने की बात कही, तो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल एक नया मुद्दा है। दूसरा चीज ये है कि इस बार ब्रिक्स की अपने आप पे एग्री किया गया कि हम अपनी नेशनल करेंसीज में प्रमोट करेंगे ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये ब्रिक्स करेंसी नहीं है बल्कि जो करेंसीज इस वक्त है नेशनल करेंसीज, उसके अंदर जैसे भारत का UPI है, चाइना का SIPS है, रशिया का RIS है, तो ये जो सारे अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको स्मूदन कैसे किया जाए। चौथी चीज जो मैं समझता हूँ ये है कि हर चीज में, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या आने वाली नई टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस दुनिया की है, उसमें ये कहा गया है कि जो भारत और ग्लोबल साउथ हैं वो रूल शेपर बनेंगे, अब रूल टेकर नहीं रहेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लिए एक बड़ी अच्छी बात है।
1: प्रधानमंत्री ने समावेशी वैश्विक विकास के लिए नवाचार, सहयोग और

0: वहनीयता पर भी जोर दिया।
1: भारत की अध्यक्षता में हमने सभी प्रयास रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी इन चार स्तंभों पर केंद्रित किए हैं। आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवी के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है। इन चारों स्तंभों पर आगे बढ़ते हुए ब्रिक्स के माध्यम से हमने इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि ब्रिक्स में विकसित सॉल्यूशंस का लाभ केवल ब्रिक्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इन्हें ग्लोबल साउथ की आवश्यकताओं के अनुरूप एडेप्टेबल और एक्सेसिबल बनाना चाहिए। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: अनिल जी, आपकी राय में क्या ये कदम और ये जो प्रयास जिनका उल्लेख अभी प्रधानमंत्री ने किया है वैश्विक विकास को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाने में मददगार हो सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, देखिए अब तक ब्रिक्स को जाना जाता था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट दिया। आज की डेट में सब देशों की प्राथमिकताएं हैं, सारी दुनिया की प्राथमिकता है। वो क्या है कि बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये चारों चीजों में जितने भी इनिशिएटिव्स अगर आप देखेंगे वो सब इसी की तरफ हैं। कैसे, जो देखिए ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन्स हैं दुनिया के अंदर वो कितनी डिसरप्ट हो गई है, और यूनिलैटरल ट्रेड मेजर्स जो है उसका क्या, उनके खिलाफ क्या किया जाए, उनको कैसे सस्टेन किया जाए। जब हम रोक भी सकते हैं युद्धों को दूसरी बात है, लेकिन अगर आपकी जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको कैसे मिनिमाइज करें, इसलिए वो रेजिलियंस आता है। अब आज एज ऑफ इनोवेशन एआई की एज है, तो ऐसे किस तरह से एआई का यूज किया जाए, कैसे इनोवेशन का एक हब बनाया जाए और एक रिपोजिटरी बनाई जाए जिसमें रिसर्च सारी डेवलपमेंट उसके अंदर हो जो सारे कंट्रीज यूज कर सकते हैं, तो मेरा मानना है, और ये सब हो सकता है एक सहयोग के द्वारा, एक कोऑपरेशन के साथ साथ। तो इसलिए हमें जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाने के लिए ये सारी चीजें बड़ी आवश्यक है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की हो, चाहे टेररिज्म की हो, ये सब ग्लोबल समस्याएं हैं, और इन ग्लोबल समस्याओं को किस तरह से हम काउंटर कर सकते हैं, ये एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है।
0: जिन पहलुओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, स्वास्थ्य है, लॉजिस्टिक्स है, स्टार्टअप, एमएसएमई, ऊर्जा भंडारण और कृषि, ये कई व्यावहारिक चीजें हैं जिन पर जोर दिया गया है। क्या यही वो क्षेत्र है जहां ब्रिक्स की व्यापक वैश्विक भूमिका को आम लोगों के जीवन से सीधे जोड़ा जा सकता है? क्योंकि शुरू में ही ये बात सामने आई है कि जो ब्रिक्स देश हैं उनके पास दुनिया की 50% जनसंख्या है,
2: आधे से ज्यादा, जैसा मैंने कहा कि दुनिया के लोग इन देशों के बीच में रहते हैं। तो नेचुरली है, अभी हमने देखा है कि जैसे ब्लैक स्वान इवेंट जैसे हुई, एक पैंडेमिक की बात हुई, उसमें सबको बड़ा असर हुआ सबके ऊपर, जबकि जो बड़े बड़े देश थे उन्होंने उसको एक जियोपॉलिटिकल यूज के रूप में किया, लेकिन भारत ने एक नया तरह का उसमें अपनाया जिसको कहते हैं वैक्सीन मैत्री। तो दुनिया भर को अपने आप के अपने जो 1.4 बिलियन लोग हैं उनको तो देखा ही, लेकिन बाकियों को भी पहुंचाया। जो हमारा कोविन ऐप या जो भी हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रीटिंग है, मेडिसिन सप्लाई करना, तो इसलिए स्वास्थ्य जो है वो उसका सबसे बड़ा फोकस बना। पूरे संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो हर जो भी इनिशिएटिव रहा है जो फोकस है कि किस तरह टेक्नोलॉजी को उन चीजों के अंदर यूज किया जाए, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चाहे वो आप देखिए कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन के बारे में हो, उसके लिए पोर्टल बनाने की बात हो रही है, चाहे ट्रेडिशनल नॉलेज किस तरह उसको डिसेमिनेट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर सारी बात है। और जो आप देखिए ब्रिक्स कनेक्ट की बात है स्किलिंग के लिए, तो हर एक कंट्री के अंदर में उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनकी रिसोर्सेज हैं, उनके ह्यूमन रिसोर्स है, कैसे वो एक दूसरे के साथ में मिल करके सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह स्मार्ट ग्रिड्स या एनर्जी स्टोरेज है, तो स्मार्ट का मतलब सीधा है कि टेक्नोलॉजी उसके अंदर आ जाता है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी आप देखें, एमएसएमई कोऑपरेशन आपने बसेस बोला, उसका एक पोर्टल है, बिकॉज एमएसएमई जो है वो हमारी सबकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे ही दूसरा चीज क्या किया है कि इंक्यूबेटर नेटवर्क बनाया है ब्रिक्स का, जिसका मतलब है जो जो चीजें नई तरह की टेक्नोलॉजीज होंगी, नए इनिशिएटिव्स होंगे, उनको नोडल एजेंसी हर एक देश की हैं, वो नेटवर्क के अंदर रहेंगी हमेशा से। देखिए आजकल नए नए स्टार्टअप, उनको सबसे बड़ी समस्या आती है फाइनेंस की, तो कैसे इनोवेशन किया जा सके, तो एक इनोवेशन फंड का का भी इस्तेमाल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोजिटरी बनाई गई है जिससे सारे देशों का उसको लाभ उठाया जा सकता है सबके लिए में। ऐसे

0: ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन जो बहुत ज्यादा अंडर स्ट्रेस आ गई हैं, उनको किस तरह से रिपेयर किया जाए, किस तरह से रोबस्ट बनाया जाए। मैं समझता हूं कि जो स्पेसिफिक बहुत सारी नई नई स्कीम्स को भारत की अध्यक्षता में लाया गया है और उस पर सभी देशों का पूरा समन्वय है, ये सारी मानवता के लिए और भी आगे बढ़े।
1: अनिल जी, अंत में बहुत संक्षेप में, यदि अगले कुछ वर्षों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ब्रिक्स को एक अधिक प्रभावी वैश्विक मंच बनाने के लिए किन क्षेत्रों में सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है?
0: देखिए, सबसे ज्यादा हमारे पास हमारा रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स को हमें, और सब बाकी सब दुनिया में आप देखें तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। ये सिर्फ ब्रिक्स के देश, अफ्रीका, इंडिया, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यही सब देशों के अंदर में थोड़ी पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो ये हमारा एक डिविडेंड है और इसको हमें पूरी तरह स्किल करना है, इसको ट्रेन करना है फ्यूचर ट्रेनिंग के लिए बेसिकली, ताकि उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। और यही प्रयास हुआ है, लेकिन उसके ऊपर और भी ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी का एब्सॉर्प्शन। तो टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन, चाहे वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हो, चाहे वो दूसरी टेक्नोलॉजीज हो, उनको हम किस तरह से, क्योंकि जाते हुए जो दुनिया आने वाली है आगे, वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहेगी। तो किस तरह से ये कंट्रीज आपस में जो टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं दुनिया के लिए, और दूसरा किस तरह से हम ब्रिज बना सकते हैं उन कंट्रीज के साथ में जिनके पास ऑलरेडी अच्छी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं। तो इसीलिए भारत का कहना है कि ये एक नॉन वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव है, नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन नहीं है।
1: नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में सामने आई पहलों से संकेत मिलता है कि ब्रिक्स अपने सहयोग को घोषणाओं और दस्तावेजों से आगे ले जाकर व्यावहारिक परिणामों से जोड़ना चाहता है। अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने और अत्यंत सार्थक विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, एकजुटता और वैश्विक सहयोग के संकल्प पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल कुमार त्रिगुणायत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: सुर्खियों में

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम सांझ ढले। मैं हूँ आज आपके साथ हेमा शमी, और जो गीत हम आप तक पहुंचाने वाले हैं भाई, उस गीत को आवाज दी है हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर ने। इस गाने की खास बात यह है कि सुमन कल्याणपुर की आवाज ने इस गाने से उन्हें संगीत प्रेमियों के बीच में खास पहचान दिलाई। बाद में यही गीत उनके यादगार गीतों में गिना गया। और एक और खास बात है इस गीत की, भाई गाने का जो फील है वो दो लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं है, लेकिन पहली मुलाकात में ही ऐसा एहसास होता है जैसे कोई अपना मिल गया हो। यही मासूमियत इसे आज भी एवरग्रीन बनाती है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि वो कौन सा गीत है। हम आपको फिल्म बता देते हैं, फिल्म है बात एक रात की, और आप तक पहुंचा रहे हैं ये गीत बिल्कुल अभी।
1: हम्म

0: मिल गया। Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं। आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से related अलग अलग messages हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में needle या injection share करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years

0: of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सांझ ढले और मैं हूं आपके साथ हेमा शमी। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, उन्हें सुनते ही पूरा जमाना वापस लौट जाता है। और जो ये हम पुराने गीत सुनते हैं भाई, सच में इन

की यादें ऐसी हैं कि हम कहीं पर भी हो उसी दौर में पहुंच जाते हैं। अब जो गीत हम आप तक पहुंचाने वाले हैं वो 70s का वो दौर था जब प्यार में चिट्ठियां, इंतजार और रेडियो के गाने खास हुआ करते थे। इस गाने को किशोर कुमार ने आवाज दी थी और ये आज भी उनकी सबसे यादगार रोमांटिक कॉम्पोजिशन में गिना जाता है। तो ये ब्लैकमेल फिल्म का है। वैसे तो अब समय भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कह रहा है कि आपसे इजाजत ले ली जाए। तो आप 7:45 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, फिर 8:00 हिंदी में समाचार, फिर 8:05 पर इंग्लिश में समाचार। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: दी हाँ? ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
3: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
7: नमस्कार आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी मुख्य समाचार नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करेगा दिल्ली में आबकारी विभाग ने अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 725 प्राथमिकी दर्ज की और 730 लोगों को गिरफ्तार किया और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी अब समाचार विस्तार से नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा
8: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है उन्होंने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी इससे

0: पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स समूह में मजबूती और लचीलापन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि महामारी, जलवायु आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपस में जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों का लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन समाधानों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के हिसाब से ढाला जाना चाहिए और उन तक पहुंचाया जाना चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज, बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका और बरुंड की राष्ट्रपतियों और नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई दिल्ली ने सफलतापूर्वक एक ऐतिहासिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन से ने दुनिया भर के नेताओं को एक साथ लाया और वैश्विक मंच पर भारत के नेतृत्व और रणनीतिक स्वायत्तता को प्रदर्शित किया।
2: ब्रिक्स समिट 2026 भारत में दिल्ली में बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आए और सभी ने सहमति के साथ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे साइन किए। आज देश गर्व करता है इस समिट पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी का जो इस सफल आयोजन के सहभागी थे, चाहे वो हमारी फोर्सेस हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या दिल्ली की जनता, जिनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कारण आज रात 10 बजे तक राजधानी के 22 स्थानों पर यातायात परिवर्तित और लगभग 35 से अधिक मार्गों पर नियंत्रित किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, जनपद, अशोक रोड, बाराखंबा रोड और टॉलस्टॉय मार्ग सहित आसपास के अन्य प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। एकीकृत रक्षा स्टाफ आईडीएस मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान व राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। इस कार्यक्रम में जटिल मुद्दों का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों, युद्ध में तकनीकी परिवर्तन, रणनीतिक संचार और नागरिक सैन्य समझ बढ़ाने की आवश्यकता सहित कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन उस भरोसे का सबूत है जो दुनिया ने पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री

0: मोदी पर जता है और साथ ही उस विश्वास है का है जो 140 करोड़ नागरिक उन पर करते हैं। मीडिया से बातचीत में श्री इंद्राज ने कहा कि ये बैठक सभी भाग लेने वाले देशों के लिए व्यापार और तरक्की के नए रास्ते खोलेगी।
1: ये हमारे सौभाग्य वाली बात है कि अलग अलग देश के राष्ट्रपति यहाँ आए हैं और उन्होंने देश पर, जहाँ तक मैं 12 साल की बात करूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर जो विश्व ने भरोसा जताया है और 140 करोड़ देशवासियों का जो अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है, उसके कारण से ब्रिक्स का ये महा आयोजन भी संपन्न होने जा रहा है। ऐसी मीटिंग जिसके कारण से नए रास्ते खुलेंगे, नया व्यापार खुलेगा, कहीं ना कहीं सभी देशों की प्रगति और तरक्की का एक नया रास्ता खुलेगा और वो दिल्ली के अंदर हो रहा है, भारतवर्ष के अंदर हो रहा है, ये भी सौभाग्य की बात है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2026 के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की शानदार बढ़त दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में ये आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में कार्रवाई में बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: आबकारी विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अगस्त तक अवैध शराब की बिक्री और परिवहन के मामले में लगभग 725 प्राथमिकी दर्ज कर 730 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अवैध शराब लेकर जा रहे 197 वाहनों को जब्त करने के साथ करीब 2,20,000 बोतल अवैध शराब भी बरामद की गई है। साथ ही लाइसेंस प्राप्त परिसरों में नियमों के उल्लंघन के मामलों में भी कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग ने बताया कि राजधानी में आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रवर्तन विधियों को और बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अवैध शराब के कारोबार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप से।
0: पांडव नगर और मयूर विहार पुलिस स्टेशन में आज थाना दिवस जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान नागरिकों को अपनी शिकायत उच्च अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर मिला। वहीं पुलिस अधिकारियों ने आमजन की समस्याओं और शिकायतों को सुना तथा शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज गुरुद्वारा सिंह सभा C4 जनकपुरी में नवनिर्मित दरबार हॉल का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। श्री सूद ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान उन्होंने गुरु साहिब से सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि की अरदास की। राजधानी के स्वरूप नगर की गली नंबर 2 में आज एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस फैक्ट्री में जूडो की ड्रेस और बॉक्सिंग ग्लव्स बनाए जाते थे। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार उन्हें इस घटना की सूचना 11:05 पर मिली। वहीं आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेज दी गई। आग की दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन घबराहट में सामने वाली इमारत में रहने वाले कुछ लोग अपने घरों से कूद गए, जिससे 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और वे खतरे से बाहर हैं। अग्निशमन विभाग ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 4 ओवर में 2 विकेट पर 38 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। श्रृंखला के शेष 2 मैच मंगलवार और गुरुवार को इसी स्टेडियम में खेले जाएंगे। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप रही और शाम तक मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक फर्जी ऋण स्वीकृति पत्र का खंडन किया है। इसमें 3,000 रूपए से अधिक की एग्रीमेंट फीस जमा करने पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 20,00,000 रूपए का ऋण मंजूर किए जाने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि मुद्रा योजना व्यक्तियों या सूक्ष्म उद्यमियों को सीधे ऋण उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि ये एक पुनर्वित्तीय एजेंसी है।

0: आरटीआई ने लोगों से सतर्क रहने और ऐसे निराधार दावों से बचने की अपील की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करेगा। दिल्ली में आबकारी विभाग ने अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 725 प्राथमिकी दर्ज की और 730 लोगों को गिरफ्तार किया। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: Oh, lovely. Well done.
1: Business loan approved.
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
6: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि ब्रिक्स सामूहिक प्रयासों से इन उम्मीदों पर खरा उतरेगा। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स समूह में मजबूती और लचीलापन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि महामारी, जलवायु आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों ने यह दिखा दिया है कि आपस में जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए।
7: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
0: श्री दलेला ने कहा कि ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। श्री दलेला ने बताया कि शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स व्यवसाय परिषद और ब्रिक्स महिला व्यवसाय गठबंधन की भी रिपोर्ट मिली, जिनसे कारोबारियों, विशेष रूप से महिला उद्यमियों की राय नेताओं तक पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। यमन में ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने पड़ोसी देश सऊदी अरब पर नए हमलों का दावा किया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब यमन की सऊदी समर्थित सरकार ने लाल सागर के तट पर विद्रोहियों के हालिया कब्जे को अत्यंत चिंताजनक बदलाव बताया है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani. Ye Akashvani hai. Prastut hai Akashvani Archives ke sahyog se nirmit saptahik karyakram Swar Dharohar. नमस्कार श्रोताओ, स्वर धरोहर कार्यक्रम में मैं आशुतोष
1: और मैं निशा आपका स्वागत करते हैं।
0: श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाएंगे उस गायिका से जिसे सरस्वती माँ का वरदान कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की। उनके गायन को सुनना सिर्फ एक आवाज को सुनना भर नहीं है, बल्कि भावनाओं के सागर में गोते लगाने जैसा अनुभव है। चाहे खुशी के गीत हों या गम के, प्यार के गीत हों या देशभक्ति गीत, लता जी की आवाज हर गीत में अपना एक अलग प्रभाव छोड़ जाती है।

0: श्रोताओं, लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और नाट्य कलाकार थे। लता जी का नाम पहले हेमा रखा गया था, लेकिन उनके पिता ने अपने नाटक भावबंधन की एक पात्र लतिका से प्रेरित होकर उनका नाम लता रख दिया।
1: उनकी माँ का नाम शेवंती बाई था। भाई बहनों में लता जी सबसे बड़ी थी और उनके छोटे भाई बहन थे आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर। मंगेशकर परिवार ने आगे चलकर भारतीय संगीत जगत को नई ऊंचाइयां दी।
0: लता जी ने अपने संगीत शिक्षा के विषय में क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
2: मेरे पिताजी की ड्रामा कंपनी थी, वो उसमें काम करते थे। वो वैसे क्लासिकल भी गाते थे और एक दिन ऐसे हुआ कि उनके कोई शिष्य थे जो रियाज कर रहे थे, तो मेरे पिताजी ने उनको कहा कि तुम थोड़ी देर ये राग इस पे रियाज करो, मैं जाके आता हूँ। तो मैं बाहर खेल रही थी गैलरी में, तो वो कुछ गा रहे थे, वो थोड़ा सा गलत गा रहे थे, तो मैंने जाके उनको ठीक किया। मैंने कहा ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो मेरे फादर ने बाहर से सुना, उस वक्त उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरी मदर को रात को उन्होंने बुला के कहा कि भाई इतना अच्छा सिंगर घर में है और मैं बाहर लोगों को सिखा रहा हूँ, ये तो कोई खास अच्छी बात नहीं। तो दूसरे दिन मेरे पिताजी ने मुझे सुबह उठा के कहा कि तुम बैठो और मैं तुम्हें सिखा। मेरे

0: मुझे फिर और लोगों ने वहाँ सुना, जैसे अनिल विश्वास जी थे और खेमचंद प्रकाश जी थे, और फिर उनके गाने मैंने लाए, फिर श्याम सुंदर जी ने सुना, फिर उन्होंने बुलाया। इस तरह मेरा प्लेबैक सिंगिंग का ये सफर शुरू हुआ।
1: 1949 की फिल्म महल में लता जी ने आएगा आने वाला गीत गाया। ये गीत अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। इस गीत के आने के बाद तो पूरा देश लता जी की आवाज का दीवाना हो गया। ये फिल्म भी हिट रही और ये गीत लता जी और मधुबाला जी दोनों के करियर के लिए सौभाग्यशाली रहा। इस फिल्म के बाद लता जी के गीतों का दौर शुरू हो गया।

0: श्रोताओं, 1950 और 60 के दशक में लता जी ने हजारों हिट गाने दिए। प्यार किया तो डरना क्या, लग जा गले, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे जैसे गीत आज भी हर दिल में बसते हैं। वो गानों को सिर्फ गाती नहीं थी, बल्कि उनके गायन में गीत के हर शब्द की भावना प्रकट होती थी। लता जी ने भावपूर्ण तरीके से गाने के विषय पर क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
1: आर्टिस्ट के लिए सबसे जरूरी चीज है कि गाने का मूड क्या है वो समझ लें, और कविता जो होती है उसको समझ के गाना बहुत जरूरी होता है। और मैं पहले गाने की जो मीनिंग है उसको देख लेती थी, और फिर मैं महसूस करती हूँ जब भी मैं गाती हूँ कि अगर मैं वो कैरेक्टर होती और मैं इस तरह अगर सिचुएशन मेरे साथ होती तो मैं क्या करती, और ये सोच के मैं गाती हूँ।
2: लता जी की आवाज लगभग हर बड़ी अभिनेत्री की पहचान बन गई। मधुबाला, मीना कुमारी, वैजयंती माला, नरगिस, वहीदा रहमान, सायरा बानो, इन सब

0: के अंदाज को लता जी ने अपनी सुरीली आवाज में जीवंत कर दिया। उनकी आवाज हर अभिनेत्री पर बिल्कुल फिट बैठती थी।
1: लता जी ने केवल हिंदी ही नहीं, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, भोजपुरी सहित 26 से अधिक भाषाओं में गाने गाए।
2: मैंने कोशिश की है कि मैं जिस भाषा में गाऊं बराबर उसका मतलब आए और सुनने वाले ये कहें कि अरे ये बिल्कुल सही गा रही है। सबसे बड़ी चीज तो यही होती है कि आपने अगर बंगाली गाना गाया तो बंगाली लोगों को ये लगना चाहिए कि अरे ये कोई बंगला लड़की है। तो ये मैंने ज्यादा हर भाषा में कोशिश की है और मैंने 26 भाषाओं में गाया है।
0: लता जी को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले। उन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वे पहली भारतीय गायिका थी जिन्हें विदेशों में भी उतनी ही प्रतिष्ठा मिली। 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया।
1: उन्होंने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया। लता जी न केवल एक महान गायिका थीं, बल्कि एक सरल और विनम्र इंसान भी थीं। उन्हें क्रिकेट देखने का बहुत शौक था और सचिन तेंदुलकर उनके प्रिय खिलाड़ी थे। जीवन भर उन्होंने अविवाहित रहकर केवल संगीत को ही अपना साथी बनाया। वे मानती थीं कि संगीत ही उनका असली परिवार है।
0: लता जी को सफेद रंग की साड़ी पहनना काफी पसंद था। इस विषय पर उन्होंने क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
3: मुझे सफेद बचपन से पसंद है। मैं जब छोटी थी तब भी मैं घाघरा चोली पहनती थी, वो भी सफेद ही पहना करती थी। पर बीच में एक ऐसा समय आया था कि मैं कलर साड़ियां पहनना शुरू की थी मैंने, और हर रंग की मैं साड़ी पहनती थी। पर एक 2 साल के बाद एक दिन ऐसे बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि इस बात का तो कोई अंत ही नहीं है कि आज मुझे गुलाबी पसंद आई तो कल पीली तो परसों नीली, और इसका कोई एंड नहीं है। इसीलिए मैंने एक ही दिन में डिसाइड किया कि मैं आज से सफेद के सिवा कुछ नहीं पहनूंगी।
0: लता जी की आवाज सिर्फ प्रेम गीतों तक सीमित नहीं रही, उन्होंने भक्ति गीत, गजलें और देशभक्ति गीत भी गाए।
1: 1963 में चीन युद्ध के बाद शहीद सैनिकों की याद में दिल्ली के रामलीला मैदान में गाए गए उनके गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुनकर पूरा देश भावुक हो उठा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। ये गीत आज भी भारतवासियों के दिलों में देशभक्ति की लौ प्रज्वलित कर देता है।

0: 6 फरवरी 2022 को लता जी इस संसार से विदा हो गईं। उनकी मृत्यु के बाद पूरे देश ने शोक व्यक्त किया। सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। लाखों लोग नम आंखों से उन्हें अंतिम प्रणाम करने पहुंचे।
1: लता मंगेशकर केवल एक गायिका नहीं थी, वे भारत की आत्मा थी। उनकी आवाज आने वाली कई सदियों तक गूंजती रहेगी। तो अब हमें यानी आशुतोष कुमार को और
0: निशा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की

0: नमस्कार श्रोताओं, घड़ी में बज चुके हैं 8:30 और समय हो गया है आपके पसंदीदा खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आकाशवाणी के स्टूडियो से मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती। हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल मैदान की हर खबर के साथ, जिसमें हम आपको देंगे हर मैच का अपडेट और हर मैदान का हाल। तो चलिए बिना देर किए रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों का। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रिकॉर्ड 6वीं बार जूनियर एशिया कप जीता। महिला टीम ने भी खिताबी हैट्रिक लगाई। दोनों ने विश्व कप का टिकट पक्का किया। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में जारी। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एलेना रायबाकिना ने कल महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने सामने होंगे। तो श्रोताओं, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं चीन के मोकी के मैदान पर, जहां हमारे जूनियर हॉकी खिलाड़ियों ने आज वो कर दिखाया है जिस पर पूरे देश को नाज है। मोकी में भारतीय तिरंगा पूरी शान से लहरा रहा है, क्योंकि हमारी महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। महिला टीम ने चीन को 1-0 से हराकर जहां खिताबी हैट्रिक लगाई, वहीं हमारे गबरू जवानों यानी कि पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त देकर 6वीं बार इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। पूरे मैच का हाल जानते हैं और सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: सानिका चंद्रकांत माने के गोल की बदौलत भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर खिताबी हैट्रिक लगाई है। मौजूदा चैंपियन भारत के लिए सानिका ने 17वें मिनट में निर्णायक गोल किया। पहले क्वार्टर में दोनों टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे क्वार्टर के शुरू होने के 2 मिनट बाद सानिका ने शानदार सूझबूझ दिखाते हुए गोल किया। चीन को बराबरी करने के लिए एकमात्र अवसर पेनल्टी कॉर्नर से मिला, लेकिन चीन की टीम उसे भुनाने में नाकाम रही। भारत ने अंतिम क्वार्टर तक चीन को गोल करने का कोई मौका दिया और 1-0 से जीत दर्ज कर ली। पूरे टूर्नामेंट में बिना कोई मैच हारे एलीट पूल में 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ शीर्ष पर रहने के बाद भारत ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। वहीं फाइनल में चीन को हराकर लगातार 3री बार खिताब बरकरार रखा। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लगातार 4थी और कुल 6ठी बार यह खिताब अपने नाम किया। अजीत यादव, अनमोल एक्का, प्रभदीप सिंह और आशु मौर्य ने गोल किए, जबकि कोरियाई टीम के लिए एकमात्र गोल ली मिनह्योक ने किया। अजीत ने 9वें मिनट में भारत के लिए पहला गोल किया, जिसके बाद इक्का ने 13वें मिनट में गोल करके भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। पहले क्वार्टर के अंत तक भारत 2-0 से आगे हो गया। प्रभदीप ने 21वें मिनट में 3रा गोल किया। भारत ने हाफ टाइम तक कोरियाई टीम पर 3-0 की बड़ी बढ़त बना ली। आशु ने 50वें मिनट में एक और गोल करके टीम की बढ़त को 4-0 कर दिया। इसके बाद मिनह्योक ने 54वें मिनट में कोरियाई टीम के लिए गोल किया, लेकिन उनका ये एकमात्र गोल कोई खास असर नहीं डाल सका और

0: भारत ने 4-1 से मैच जीतकर छठी बार ये खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया। देवेंद्र त्रिपाठी, स्पोर्ट्स कैन।
1: इस जीत के साथ दोनों ही टीमों ने जूनियर विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है, यानी कि जूनियर विश्व कप के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में सुना। इसके साथ ही भारत ने चौथी बार यह खिताब जीतकर पाकिस्तान के लगातार 3 खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। और इससे पहले भारतीय टीम ने 2015, 2023 और 2024 में खिताब जीते थे। इस शानदार उपलब्धि पर हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ी को 3 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 1.5 लाख रुपए के पुरस्कार राशि देने की भी घोषणा की है। तो बहुत जायज है कि इस तरह के जो प्रोत्साहन राशि मिलते हैं उससे खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ता है। तो शुरुआत अच्छी रही हमारी आज की खेल जगत में, लेकिन अगर आपको लगता है कि आज भारत ने सिर्फ हॉकी के मैदान पर ही परचम लहराया है तो जरा अपनी नजरें जापान की तरफ भी घुमाइए, क्योंकि जहां हौसले बुलंद हो वहां पदक खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। हम बात कर रहे हैं जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल की, जहां हमारे स्टार खिलाड़ी और 6 बार के विश्व चैंपियन प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स में स्वर्णिम सफलता हासिल की है। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आज प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स SL3 में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष डबल्स SL3 SU5 में प्रमोद ने सुकांत कदम के साथ रजत पदक भी हासिल किया।
2: छह बार के विश्व चैंपियन प्रमोद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष सिंगल्स SL3 के फाइनल में अपने ही देश के उमेश कुमार को 30 मिनट में 21-16 21-8 से हराया। इसके बाद उन्होंने पुरुष डबल्स SL3 SU5 के फाइनल में सुकांत कदम के साथ जोड़ी बनाई। हालांकि इंडोनेशिया के हिकमत रमदानी और फ्रेडी सेतियावान से 5-21 15-21 से हार के बाद भारतीय जोड़ी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। कदम के लिए यह टूर्नामेंट खास रहा क्योंकि 12 वर्षों के करियर में उनके कुल पदकों की संख्या 100 हो गई। भारत ने विभिन्न वर्गों में कई अन्य पदक भी हासिल किए। चिराग बरेठा ने सिंगापुर के वेई मिंग टे के साथ पुरुष डबल्स SU5 में स्वर्ण पदक जीता। शशांक कुमार ने 2 कांस्य पदक जीते। दीप रंजन बिसोई और कुलदीप महकूल ने भी पुरुष डबल्स SL3 SU5 में कांस्य पदक जीता, जबकि तकर बिरी और हर्षित चौधरी इसी वर्ग में तीसरे स्थान पर रहे। अभिजीत सखुजा ने पुरुष सिंगल्स SL3 में कांस्य पदक जीता। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
1: बैडमिंटन की बात हो रही है जहां एक तरफ स्वर्णिम सफलता हासिल की है प्रमोद भगत ने, तो वहीं पे बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में 15 साल की तन्वी पत्री ने भी लड़कियों के अंडर-17 सिंगल्स का खिताब जीता। रोमांचक फाइनल मैच में आज तन्वी ने भारत की ही शाइना मणिमुथु को 11-15 15-10 15-12 से शिकस्त दी। अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: तन्वी ने इस साल पोंटियानक अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था और इसके बाद बेंगलुरु में अखिल भारतीय जूनियर अंडर 19 बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट भी अपने नाम किया। अपने करियर में 2024 में अंडर 15 एशियाई खिताब के साथ तन्वी ने इस बार महाद्वीपीय अंडर 17 खिताब भी जोड़ लिया है। दूसरी वरीयता प्राप्त तन्वी ने फाइनल तक पहुंचने के दौरान कई मुश्किल मैच खेले। तन्वी की जीत के साथ अंडर 17 लड़कियों के सिंगल्स का खिताब लगातार दूसरे साल भारत के पास बरकरार रहा। 2025 में दीक्षा सुधारकर ने यह ऐतिहासिक खिताब जीता था। पिछले साल अंडर 15 एशियाई खिताब जीतने वाली मणिमत्थु को इस बार रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अंडर 15 वर्ग में भी भारत के खाते में एक और पदक जुड़ा। लड़कों की डबल्स जोड़ी आदित्य सिंह नेगी और तन्मय वर्मा ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही भारतीय दल का इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में सफल अभियान समाप्त हुआ। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब कोर्ट के इस शटल गेम से निकलकर सीधे रुख करते हैं उस खेल की तरफ जो हम भारतीयों की रग रग में दौड़ता है, यानी कि क्रिकेट। तो आज एक नहीं बल्कि दो जगह क्रिकेट का रोमांच चरम पर है और इस वक्त हमारी नजरें टिकी हुई है दुबई पर, जहां महिला T20 एशिया कप का महामुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। 7 बार की चैंपियन भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है और ताजा समाचार मिलने तक हमारी शेरनिया क्रीज पर डटी हुई है। इस वक्त हमारे

0: सहयोगी विशेष शुक्ला स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशेष, क्या है ताजा अपडेट मैच को लेकर के?
1: जया, भारतीय टीम को शुरुआत काफी धमाकेदार मिली है। लगभग 10 के औसत से भारतीय टीम ने 8.3 ओवर में 84 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना और शफाली वर्मा अभी क्रीज पर डटी हुई हैं। भारतीय टीम ने कोई भी विकेट नहीं गंवाया है। शफाली वर्मा 27 गेंदों पर 58 रन बनाकर 8 चौके और 2 छक्के लगा चुकी हैं। वहीं स्मृति मंधाना पारी को एंकर कर रही हैं, जिन्होंने 25 गेंदों पर 31 रन बनाए हैं। 3 चौके और 1 छक्के उनकी पारी में शामिल हैं। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो श्रीलंका की ओर से चमारी अट्टापट्टू, जो सबसे बड़ा खतरा मानी जा रही थी भारत के लिए, भारतीय टीम ने उन पर ही अटैक करके 1 ओवर में 20 रन लगाए हैं स्कोरबोर्ड पर।
0: तो जिस तरह से दोनों ही टीम है अभी तक मैच में, पूरे टूर्नामेंट में देखिए तो कोई भी हार नहीं मिली है इन्हें, अब तक अजय रही है और फाइनल तक पहुंची है। अगर हम अगर हम पूरे सफर की बात करें भारतीय टीम का, तो इस कैसा सफर रहा पूरे टूर्नामेंट में?
1: भारतीय टीम का सफर जो रहा है जया, बेहद शानदार रहा है। जैसा आपने बताया कि टीम जो है, ये दोनों ही टीमें अजेय रही हैं इस टूर्नामेंट में। और पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड को 94 रन से, दूसरे मुकाबले में हांगकांग को 137 रनों से, और उसके बाद अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 55 रन पर ऑल आउट करके 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया था। सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने टक्कर देने का प्रयास जरूर किया था भारतीय टीम को, लेकिन 40 रन से भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी। भारत अपने 8वें खिताब की जद्दोजहद कर रहा है। इससे पहले 4 ओडीआई और 3 T20 प्रारूपों में भारत कुल 7 बार यह खिताब अपने नाम कर चुका है।
0: बिल्कुल, और इस बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच भी 3 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच शुरू हो चुका है। टॉस भारत के पक्ष में रहा, कप्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस मैच का क्या अपडेट है अभी?
1: जय, अगर भारत और अफगानिस्तान के मुकाबले की बात करें तो 14 ओवर में 87 रन पर 5 विकेट हो चुके हैं अफगानिस्तान का स्कोर। अजमतुल्ला उमरजाई और मोहम्मद नबी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उमरजाई 27 गेंदों पर 26 रन, वहीं नबी 22 गेंदों पर 16 रन। ये दोनों स्कोर ये दर्शाते हैं कि भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को बिल्कुल बैकफुट पर रखा हुआ है। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती ने एक एक विकेट लिया और एक विकेट जो है वो रनआउट के तौर पर हुआ है।
0: बिल्कुल, अगर एशियन गेम्स के पहले अगर हम देखें तो सीरीज कितनी महत्वपूर्ण लगती है विशेष, क्योंकि भारतीय टीम चाहेगी कि अपने हालिया फॉर्म को वो बरकरार रखे।
1: जय, अगर बात करें तो ये सीरीज जो है वो एक वार्म अप के तौर पर साबित होगी अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि एक अफगानिस्तान है जो कड़ी टक्कर दे सकता है भारतीय टीम को, क्योंकि इसके बाद भारत को एक मुकाबला जापान से खेलना है और फिर सीधे एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल में मुकाबला होगा, जहां वो पहले ही अपनी जगह बना चुकी है रैंकिंग के आधार पर। तो ये जो मुकाबला है, ये जो सीरीज है, ये भारत के लिए एशियन गेम्स का जो तैयारी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल, तो अब क्रिकेट के इस लाइव अपडेट्स के बीच आपको ले चलते हैं श्रोताओं दुनिया के उस कोने में जहां टेनिस कोर्ट पर आज रात एक नया इतिहास लिखे जाने की तैयारी हो रही है। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात अमरीका के बेन शेल्टन और जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने सामने होंगे। 23 वर्षीय शेल्टन अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेलेंगे और 2 दशक से अधिक समय में कोई बड़ा सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले अमरीकी खिलाड़ी बनने की कोशिश करेंगे। वहीं 3 महीने पहले अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले ज्वेरेव लगातार तीसरी बार किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में खेलने जा रहे हैं। यह उनका दूसरा यूएस ओपन फाइनल होगा जो उनके पहले फाइनल में पहुंचने के 6 साल के बाद हो रहा है। तो सेल्टन के पास 2 दशक के बाद कोई बड़ा खिताब जीतने वाला पहला अमरीकी बनने का मौका है। और महिला सिंगल्स की बात करें तो इसका फैसला कल रात ही हो चुका है, जहां कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने आर्याना साबालेंका को हराकर पहली बार यूएस ओपन का ताज अपने सिर सजा लिया है। यूएस ओपन की इस बड़ी खबर के बाद अगर हम बात करें तो उन कोर्ट्स की, जहां आज का दिन भारतीय फैंस के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा भी रहा है। पहले बात वियतनाम ओपन बैडमिंटन की, जहां महिला सिंगल्स के फाइनल में भारत की ईशा रानी बरुआ को थाईलैंड के खिलाड़ी से सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें उप विजेता रहकर संतोष करना पड़ा। कुछ ऐसा ही मिला जुला भाग्य कोर्ट पर हमारी स्क्वाश सनसनी का भी रहा। कतर क्लासिक स्क्वाश प्रतियोगिता में भारत की अनाहत सिंह ने बेल्जियम की टिन्ने गिलिस को 5वें गेम तक जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन अंत में अनुभव की जीत हुई, यानी कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा था तो उनसे हार का सामना करना पड़ा अनाहत को। पुरुष सिंगल्स में भी अभय सिंह और वीर चोटरानी को अपने शुरुआती दौर के मुकाबलों में निराशा हाथ लगी। लेकिन खेल का नाम यही है, कभी जीत कभी सीख, उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, पर मैदान पर देश के लिए जान लड़ाने का यह जज्बा कभी कम नहीं होना चाहिए। तो एक बार चलते चलते मैच का ताजा अपडेट्स ले लेते हैं। विशेष
1: जय, अफगानिस्तान ने 14.3 ओवर में 93 रन बना लिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। और अगर वुमेन्स एशिया कप की बात करें तो भारतीय टीम जो है शानदार प्रदर्शन उनका जारी है, लगभग 10 ओवर में उन्होंने 98 रन बना लिए हैं बिना किसी नुकसान के। तो ये मुकाबला जो है भारतीय टीम की झोली में आता नजर आ रहा है।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों इस रोमांचक मोड़ पर अब वक्त हो चला है इन सभी बड़ी खबरों के लाइव स्कोर्स को अभी यहीं समाप्त करने का। हम कल मिलेंगे फिर इसी समय, तो स्पोर्ट्स स्कैन में इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स स्कैन की ईमेल आईडी यानी sportsscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
3: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
1: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
0: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48,00,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
3: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1200

0: 51 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS is an ecosystem of solutions, stresses need to translate all outcomes of New Delhi Declaration into time-bound actions as 18th BRICS Summit concludes. Prime Minister holds 15 bilateral meetings with world leaders besides engagements with heads of international institutions on the sidelines of the summit. Home Minister Amit Shah says India should aim to become a global leader in lab-grown diamonds and jewellery sector. 6 persons killed and nearly 130 missing after Indonesian ferry capsizes in Java Sea. In hockey, India's men's and women's teams clinch Junior Asia Cup titles at Moshi in China. And in cricket, women's T20 Asia Cup final match between India and defending champions Sri Lanka underway in Dubai. Indian men's team takes on Afghanistan in the opening game of the 3-match T20 series in Delhi. And now the news in detail. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction.
3: Aap sabki maujoodgi ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
2: Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
3: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
2: Earlier, in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remained confined to one region in today's interconnected world. We have a report from our correspondent.
4: The two-day summit focused on resilience, innovation, cooperation, and sustainability with more than 50 practical outcomes. The summit deliberated on major global and regional issues, including global governance reform, international trade, terrorism, peace and security, artificial intelligence, climate change, healthcare, and sustainable development. The leaders supported a stronger cooperation in pandemic preparedness and integrated early warning system for infectious diseases,

0: shooter, rose to be a part of a medal-winning Indian team.
1: Manisha is one of those ones who came with her father on, as you very rightly said, on a cycle to see what shooting was, because she heard the pop-pop from her village, which is close to the shooting range. She never went back. 4 years later, she broke the world junior world record in Chengwan at the World Championships.
2: Guns and Glory. That was a feature written and narrated by senior sports journalist Raja Raman, bringing out the story of the rise of shooting as a sport in India. Produced by Nitish Arora, this was a presentation of the Central English Feature Unit and came to you from the Delhi station of Akashwani. Please stay tuned in for our next announcement that follows shortly.
3: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath, main Shakti Singh. नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग और प्रेरणा हो, प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
4: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
3: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
4: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की भी उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकसित केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय के आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिनों में प्रधानमंत्री ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठक की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले श्री मोदी ने कल इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात की थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और करीब

0: 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल गुजरात में बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nishit Kumar. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS's diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver the last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: Earlier, in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS groupings as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with the heads of state and governments, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provide an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. The Prime Minister today held bilateral talks with leaders of Kazakhstan, Egypt, Indonesia and Philippines, South Africa, Burundi, Nigeria and Uganda. Mr. Modi also met Nigerian Vice President Kashim Shettima. Yesterday, Mr. Modi held bilateral meetings with leaders from Ethiopia, Malaysia, UAE, Vietnam and China. On Friday, the Prime Minister met leaders from Russia and Iran and also the UN Secretary General. Union Home Minister Amit Shah has called upon the Indian gems and jewellery industry to ensure that the entire ecosystem and manufacturing chain of lab-grown diamonds remains firmly in Indian hands. Addressing the 52nd India Gems and Jewellery Awards ceremony in Mumbai, Mr. Shah said, "The nature of the diamond trade is changing with the emergence of lab-grown diamonds." The Home Minister said that lab-grown diamond market in terms of volume is expected to become nearly 50 times the size of the current diamond market, describing it as a monumental opportunity for India. In Indonesia, the death toll has risen to 6 after a ferry carrying more than 240 people overturned due to bad weather in the Java Sea today. Nearly 130 passengers and crew members remain missing. Indonesian rescuers said at least 170 people have been rescued so far as search and rescue operations continue around the vessel's last known location. In hockey, India's men's and women's teams have clinched the Junior Asia Cup titles at Moshi in China today. The Indian men's team defeated South Korea 4-1 in the final to successfully defend its title. The Indian women's team also emerged victorious, defeating host China 1-0 in the final. Both the Indian men's and women's teams have also qualified for the Junior Hockey World Cup by winning their respective Asia Cup titles. In women's cricket, India have set a target of 184 runs for defending champion Sri Lanka in the final of the Women's T20 Asia Cup in Dubai. In reply, Sri Lanka were at 18 for 1 in 3.3 overs when reports last came in. Opting to bat, India posted 183 runs for the loss of 5 wickets in their stipulated 20 overs. Shefali Verma top scored with 68 of 39 deliveries, while Smriti Mandana contributed 59 of 39 balls. Earlier, Indian skipper Harmanpreet Kaur won the toss and elected to bat. Seven-time champions India have reached the final, topping Group A with 3 wins before defeating Bangladesh by 40 runs in the semi-final. Sri Lanka also remain unbeaten in the group. In men's cricket, Afghanistan have set a target of 157 runs for India in the first T20 international of the three-match series in Delhi. In reply, India were 113 for 1 in 9 overs when reports last came in. Put into bat, Afghanistan posted 156 runs for the loss of 8 wickets in their stipulated 20 overs. Azmatullah Omarzai was the top scorer, remaining unbeaten on 64 of 44 balls for India. Arshdeep Singh clinched 3 wickets earlier. Indian skipper Shreyas Iyer won the toss and opted to bowl. And with that, we end this news bulletin.
3: नमस्कार, विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का समापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक दक्षिण के देशों द्वारा समूह पर बढ़ते भरोसे का दावा किया और प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। भारत ने ओमान के तट पर वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। 13 भारतीय चालक दल के सदस्यों को बचाया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर में तनाव के बीच ईरान और खाड़ी देशों की बैठक कल ओमान में होगी। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने चीन के मोची में जूनियर एशिया कप खिताब जीता और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
3: श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए।
2: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट realities, but together we rise through cooperation and blossom for humanity.
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के

0: नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेफ के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उपमंत्री सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल नगुएन त्रुओंग थांग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यह बैठक दोनों देशों के बीच दोस्ती के रिश्तों को मजबूत करने, क्षेत्रीय सुरक्षा को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय संवर्धित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर केंद्रित थी। भारत ने ओमान के तट के पास वाणिज्यिक जहाज MTEL गैया पर हुए हमले की निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक 13 भारतीय चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया है, जबकि एक लापता भारतीय नागरिक की तलाश और बचाव अभियान जारी है। दूतावास ने कहा कि तलाशी और बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया है। भारत ने क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने का आह्वान दोहराया है। भारत ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों, आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। ईरान अमेरिका संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
0: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका उलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य अब भी लापता हैं। इंडोनेशिया बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। नौका पूर्वी जावा से दक्षिण कालीमंतन जा रही थी और सुराबाया से बोर्नियो द्वीप के बंजार मासिन के लिए रवाना हुई थी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान समझौता करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि मिड टर्म चुनाव से पहले या उनके ठीक बाद युद्ध खत्म हो सकता है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोची में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात अमरीका के बेन शेल्टन और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के भारत मंडप

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज़, और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 12 सेकेंड। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब, और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में, जिसका नाम है हर सिंगार। हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए, और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गईं। मगर आज के इस सफर का आगाज हम करेंगे एक ऐसे नगमे से जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ दो दिलों के दरमियान का रिश्ता नहीं, बल्कि ये वो खूबसूरत एहसास है जो इंसानों को इंसानों से और मुल्कों को एक दूसरे से जोड़ता है। और जब कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक आपसी दोस्ती और सकारात्मक संदेश के साथ अपने अंजाम तक पहुंचती है तो उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाई देती है। आज ही समाप्त हुए ब्रिक्स समिट का सकारात्मक समापन भी हमें यही पैगाम देता है। मतभेद अपनी जगह, लेकिन बातचीत, सहयोग और दोस्ती का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। और ऐसे ही जज्बात को बेहद खूबसूरती से आवाज देते हैं महेंद्र कपूर साहब। फिल्म पूरब और पश्चिम के इस बेहद खूबसूरत गीत के साथ भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये महज एक गीत नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी से मोहब्बत, अपनी पहचान पर फख्र और दुनिया के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाने का एहसास है। तो आइए दिलों में मोहब्बत, रिश्तों में मिठास और दुनिया में अमन की दुआ के साथ आज के सफर का आगाज करते हैं उसी नगमे के साथ जो दिलों को जोड़ता है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपका दोस्त फेरोज, जहां हम पलट रहे हैं यादों की वो सुनहरी डायरी जो हमें सीधे लेकर चलती हैं सदाबहार रोमांटिक गीतों की दुनिया में। दोस्तों, मोहब्बत में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जोर से कहने की जरूरत नहीं होती, बस धीमे से कह दीजिए और सामने वाला दिल की धड़कनों में उन्हें महसूस कर लेता है। और ऐसा तब होता है जब आपको किसी से सच्ची मोहब्बत होती है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं मुकेश साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में, जिसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने, और यह नगमा है फिल्म गोरा और काला से। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसी नगमे के साथ हर सिंगार के इस बेहद खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आपके इस सफर में मैं हूं आपका दोस्त फिरोज। और महफिल है सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार, और हर सिंगार किस दिलकश महफिल में अब बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत फिल्म के एक गीत की। दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत किसी खत की तरह होती है जिसे पढ़ने के लिए अल्फाज की ज़रूरत बहुत ही कम महसूस होती है, बल्कि एहसासात को महसूस करने की ज़रूरत होती है। और जब इश्क सच्चा हो तो ज़माना बदल जाए, हालात बदल जाए, मगर दिल की वफादारी कभी नहीं बदलती। आज का ये अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है, मोहब्बत की कहानी कहता है। साल था 1967 का और पर्दे पर आई फिल्म फर्ज एक जासूसी और रोमांच से भरी कहानी थी। फिल्म का निर्देशन किया था रविकांत नागाइश ने और इसमें नजर आए थे जितेंद्र और बबीता। लेकिन इस सस्पेंस और भाग दौड़ से भरी कहानी के बीच एक ऐसा गीत आता है जहां जासूसी दुनिया कुछ पल के लिए पीछे छूट जाती है और दिल की आवाज

सामने आ जाती है, जो अपनी मोहब्बत का इजहार बेहद खूबसूरत तरीके से करता है। यहां आशिक अपने महबूब से कह रहा है कि हमारा रिश्ता आज का नहीं, ये तो जैसे सदियों पुराना है। वक्त की दूरी हो या हालात की मजबूरी, दिल की मोहब्बत अपनी जगह कायम है। इस गीत को अपनी मीठी आवाज दी है लता मंगेशकर जी और मुकेश साहब ने। अल्फाज हैं मशहूर शायर और गीतकार आनंद बख्शी साहब के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का। तो आज की इस खूबसूरत शाम अगर आपके दिल में भी कोई ऐसा नाम है जिससे आपका रिश्ता शायद बहुत पुराना महसूस होता है, तो ये गीत उसी के नाम। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, जहां पर नगमा दिल पर गिरती हुई फूलों की खुशबू जैसा है। हर नगमा और हर धुन किसी पुरानी मोहब्बत की याद। तो चलिए रविवार की रात की इस रूमानी बेचैनी को आप भी महसूस कीजिए और सुनिए ये लाजवाब गाना सिर्फ और सिर्फ अपने चहेते स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

रफ़ी साहब और लता जी के इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फ़िरोज़ को अब दीजिए इजाज़त हर सिंगार से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा का पुनः प्रसारण, और उसके पश्चात 11:40 पर मैं रहूँगा आपके साथ लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls on mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I am Sarabjeet Kaur.
1: Dhanyavad Sarabjeet, aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. और जैसा कि सरबजीत पहले ही बता चुकी है, हम किसी खास म्यूचुअल फंड्स के बारे में सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे. श्रोता, इससे पहले इन नंबरों से पहले हमारे फोन नंबर से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी, धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: Prime Minister Narendra Modi says New Delhi Declaration adopted at BRICS Summit will provide clear direction for shared vision and future cooperation. Global crude oil prices surged around 9% last week, and domestic investors to focus on US Federal Reserve's policy decision, macroeconomic data and geopolitical developments for Q's next week.
1: Pradhan Mantri Narendra Modi ne kaha BRICS शिखर सम्मेलन में स्वीकृत नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा. पिछले सप्ताह कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़त और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत निर्णय, आर्थिक आंकड़ों और भू राजनीतिक घटनाओं पर.
0: And before we go just any further in the program, may we remind our listeners, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें. आज की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का इकोसिस्टम है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है. श्री मोदी ने लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर सत्र के समापन भाषण में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकृत नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा.
3: हम आशा करते हैं इस समिट से, उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा. हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा. हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे.
1: इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में श्री मोदी ने कहा कि महामारियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं ने यह दिखा दिया है कि परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. प्रधानमंत्री ने आगाह किया है कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी

0: आधा बन सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ब्रिक्स लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला सहयोग प्रारूप आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक भरोसेमंद और सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा। नवाचार के तहत ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स को आपस में जोड़ेगा। उन्होंने बताया कि भारत ने नए और बड़े पैमाने पर लागू होने वाले समाधानों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप नवाचार कोष का प्रस्ताव रखा है।
1: इनोवेशन के अंतर्गत ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क हमारे स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स को आपस में जोड़ेगा। इनोवेटिव और स्केलेबल सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए हमने ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का प्रस्ताव रखा है। ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा।
2: एंड आई कैन सी आवर फर्स्ट कॉलर कनेक्टिंग फ्रॉम दिल्ली। जीवन जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: नमस्ते, मैं करंटली SIP कर रहा हूँ, पराग वारेकर फ्लेक्सी कैप 10,000, बंधन स्मॉल कैप 8,000 और मोतीलाल ओसवाल मीड लार्ज कैप और मल्टी कैप में 8,000 और एक न्यू जो था NFO आया था HDFC बैंक का निफ्टी 550 और 2525 का अराउंड 30,000 के आसपास, इन सब में मैं कर रहा हूँ SIP। तो एक ये जानना चाह रहा हूँ मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, और भी मैं 5,000 इंक्रीज करना चाहता हूँ, इन्हीं में करूँ या किसी अदर फंड में करूँ, ये फंड कैसे हैं, क्या मेरे को कोई लार्ज कैप फंड एलोकेट एडिशनल लेना चाहिए या यही मेरी नीड पूरी कर दूंगी।
4: जीवन जी, मेरे हिसाब से आपके फंड्स का चुनाव ठीक है। आप कोई नया फंड ऐड करने से मुझे नहीं लगता कि कोई खासा ऐसी कोई कमी है आपके पोर्टफोलियो में जो आप जिसकी आप पूर्ति के लिए आपको नए फंड की आवश्यकता है। आप इन्हीं फंड्स में आप SIP के माध्यम से लगा रहे हैं, लंबे समय का अगर ये पैसा है तो उसके लिए मेरे ख्याल ये पोर्टफोलियो उपयुक्त है, और इसी में आप जो भी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट आपके पास है आप इन्हीं फंड्स में अपना एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं
0: जी। और अभी आशुतोष, अगर हम फंड्स की हालत देखें, अगर खासकर अभी जो पूरी दुनिया के हालात पर हम गौर कर रहे हैं और कई तरह के फंड्स पर हमारे जो श्रोता हैं उनकी दिलचस्पी जिस तरह से हम देख रहे हैं, पिछले कुछ समय में जब देखा था हमने, कई श्रोता पूछते हैं कि विदेशी फंड्स में हम कैसे निवेश करें और किस तरह से हमें उसका लाभ मिल सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। अभी चलते हैं, एक खबर है हमारे पास कच्चे तेल से जुड़ी हुई।
2: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस नॉट शार्प वीकली गेन्स अमिड एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस ड्यूरिंग द वीक। ब्रेंट क्रूड नवंबर फ्यूचर्स सर्ज्ड 8.7% टू सेटल एट $104 and 61 cents per barrel. West Texas Intermediate Crude October futures soared 9.4% to end at $100.05 per barrel. Now we go over live to our correspondent in Dubai, Manish Shiva, for more updates from the region. Manish, oil prices rose sharply last week. Could you please provide us a quick recap of the developments in West Asia that led to this surge, and also if you could tell us about the latest situation on the ground?
5: Hi, Sarabjit. Of course, the resumption of US-Iran fighting early this month. Then, of course, the developments in Yemen, which started putting pressure on the Red Sea route of oil. And most recently, the drone attacks on the Saudi East-West pipeline. This route is estimated to carry almost 4-5% of global oil supply. Now, that has been temporarily shut. So, of course, we've seen a lot of pressure on the oil prices. The Brent is around 104. WTI is also around 100. Now, in terms of what is happening currently in the last 24 hours, there have been fresh claims by the Houthis of more attacks on Saudi infrastructure. This morning, an Iranian commercial vessel was hit by a suspected projectile in the Strait of Hormuz. So no relief there yet. In the midst of this all, though, there are some chances of diplomatic engagement tomorrow, that is on Monday. Iran and at least some Gulf states are scheduled to meet in Oman. and discuss the

0: possible way out of reopening Strait of Hormuz. Not the complete reopening is what has been reported, but a certain movement may be allowed. However, it needs to be seen if all the Gulf states will actually participate in this meeting. And also, without the involvement of the United States, whatever arrangements are actually worked out, we'll need to see if they actually are helpful in resolving this subject.
1: Well, after that update from Manish from Dubai, let's hear what Harish has to ask our next caller from Meerut. Harish ji, sawal puche.
2: मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और कॉन्ट्राफंड है. स्मॉल कैप में मेरी 30,000 की सिप है, मिड कैप में 30,000 की, फ्लेक्सी कैप में 25,000 की, कॉन्ट्रा में 10,000 की. तो क्या ये 10 से 12 साल के टाइम होराइजन में एक बढ़िया कदम है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ. और ये कंटिन्यू रहेगा 10 से 12 साल? बस ये है कि हो सकता है अगर इतना पैसा मैं इन्वेस्ट ना कर पाऊँ तो थोड़ा कम कर दूंगा या थोड़ा बढ़ा दूंगा, लेकिन करता रहूंगा. अब बस यही मेरे को उनसे पूछना था सर से कि क्या ही सही वो है चुनाव मेरा.
3: जी, आपने बताया तकरीबन आपका आधा या आधे से थोड़ा ज्यादा पैसा आपका स्मॉल, एक स्मॉल और एक मिड कैप फंड में लग रहा है, और बचा हुआ आपका एक फ्लेक्सी और कॉन्ट्रा में. देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस पोर्टफोलियो में कोई बुराई नहीं है अगर आपके फंड्स का चुनाव सही है. बस आप ये ध्यान रखिएगा आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप की मात्रा काफी अधिक है, इस पोर्टफोलियो से मुझे लगता है कि कम से कम 60% आपका पैसा स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में निवेशित हो रहा होगा. तो ये पोर्टफोलियो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा. जब मार्केट उतार चढ़ाव के दौर से निकलेगी, जब भी मार्केट में क्रैश आएगा, शायद आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरेगा. तो वो उतार चढ़ाव से आपको उस दौर में आपको संयम बना के रखना होगा. ये एक फेयरली एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल है. लेकिन अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो इस पोर्टफोलियो में कोई बुराई नहीं है. लेकिन अगर आपको मार्केट गिरने से घबराहट होती है तो मुझे लगता है कि उस सर्कमस्टेंस में स्मॉल और मिड कैप में आपको अपना एक्सपोजर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए.
4: मतलब उससे पैसे हटाकर आप फ्लेक्सी कैप में या किस तरह के फंड्स में डाल सकते हैं?
3: जी, तो पहले तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो आप कुछ ना करें, आप इस पोर्टफोलियो को बरकरार रखें. लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क को मॉडरेट करना चाहते हैं तो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, आप जो अभी तक आपने निवेश किया उसको ना छेड़े, क्योंकि आप उसको रिडीम करेंगे, टैक्स लगेगा. तो इंक्रीमेंटल जो आपके SIPs हैं, आप उनको थोड़ा सा अपने फ्लेक्सी कैप और कॉन्ट्रा फंड की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं.
4: जी, अगले कॉलर हैं भोपाल से शंकर. स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
5: नमस्ते मार्केट कंट्रोल टीम.
4: नमस्कार
5: सर. ये SIF स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड क्या रिटेल इन्वेस्टर के लिए ठीक रहेंगे? होते हैं क्योंकि अगर किसी के पास कुछ 10 लाख रुपए है, उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख का होता है ऐसा कहा जाता है, इज इट राइट ऑफ नॉट? एंड सेकेंडली, इसका एग्जिट क्या होता है, इसमें कब निकल सकते हैं? एक साल के बाद जैसे उसमें होता है वैसे ही होता है? एंड हाउ इट इज इन्वेस्टेड, डू वी हैव टू हैव डीमैट अकाउंट? Or we can simply buy as we buy other mutual fund on the SBI mutual fund website or any other website. So, अगर ऐसा ऐसा करें तो बताइए सर रिटेल इन्वेस्टर्स को हमको. थैंक यू.
3: जी, तो पहले तो आपकी जानकारी बिल्कुल सही है कि इनमें मिनिमम टिकट साइज 10 लाख का होता है. तो रिटेल इन्वेस्टर्स में भी थोड़े एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रोडक्ट उनके लिए टारगेटेड है, क्योंकि अगर आपके पास 10 लाख रुपए और आप एक SIF में लगाते हैं तो वो भी मेरा ख्याल मैं उसके अगेंस्ट राय दूंगा, क्योंकि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है. तो जिन निवेशकों का कम से कम 50-60 लाख या उससे ज्यादा का पोर्टफोलियो है तो उसमें वो SIF फिर भी कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन मेरे लिहाज से अभी SIF काफी नए हैं. जो सबसे पुराना SIF फंड है उसको भी अभी शायद अक्टूबर में एक साल कंप्लीट होगा, तो बहुत नए फंड्स हैं. आप अभी इनको ट्रैक करिए, इनको समय दीजिए. मेरे ख्याल में अभी इनमें इन्वेस्ट करने की जल्दबाजी नहीं करिए. कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में कोई बहुत ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नीड है जो कि ये फुलफिल करते हैं, जो कि आपका एक साधारण म्यूचुअल फंड से पूरी नहीं हो सकती कोई इन्वेस्टमेंट नीड. तो इनमें इन्वेस्ट करने की जल्दबाजी नहीं करिए, ट्रैक रिकॉर्ड इन्हें बनाने दीजिए, अपने आप बातें सामने आएंगी. काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड्स, SIFs, तो अपने आप इनको अपने आप को प्रूव करने दीजिए पहले, उसके बाद इसमें निवेश करने के बारे में फैसला कीजिएगा. बाकी जहां तक इनके ऑपरेशनल मोडालिटीज की बात है तो ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ऑपरेट करते हैं, उसी तरह आप इनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. डीमैट अकाउंट की इनमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है. तो जो लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो आप इनको

0: उस सेंस में एक अलग तरीके के म्यूचुअल फंड ही आप समझ सकते हैं।
1: ऑल राइट, आवर नेक्स्ट कॉलर जॉइन्स अस फ्रॉम महाराष्ट्र, गुरुनाथ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
2: जी मैम नमस्कार।
1: जी नमस्कार
2: मैम, मेरा क्वेश्चन है मैम, ये जो म्यूचुअल फंड है मैं मतलब SIP करके ही जाना चाहिए, और जो फिलहाल जो हालात है, मतलब मैं शेयर मार्केट के बारे में बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है, कुछ FIB या से पैसा निकाल के ले गए, डोमेस्टिक भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो मैम सर से मेरे को यही पूछना था कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का कितना प्रतिशत कनेक्शन रहता है, क्योंकि मैं सुना हूँ कि म्यूचुअल फंड वाले भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, और हम फिलहाल पैसे लगाना चाहिए किसी फंड में? थैंक यू मैम।
0: जी आपका पहला सवाल कि इनमें कितना कनेक्शन रहता है, तो देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का 100% कनेक्शन होता है। अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जो कि आपका पैसा आगे आपके बिहाफ पर इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो जैसे मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे उसी तरीके से आपका म्यूचुअल फंड भी बिहेव करेगा। तो कनेक्शन भरपूर है, कनेक्शन 100% है, वही उतार चढ़ाव, बस फर्क यही है कि क्योंकि आपके बिहाफ पर एक फंड मैनेजर जो कि एक प्रोफेशनल है, सूझबूझ के साथ आपका पैसा लगाता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो खराब कंपनी के स्टॉक से आपको बचाए रखेंगे, अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश करेंगे। लेकिन फिर भी जो उतार चढ़ाव है वो तो बाजार के अधीन है, तो जब मार्केट गिरेगी तो कोई भी फंड मैनेजर एक इंटरिम लॉस से आपको नहीं बचा सकता। तो आप ये मानकर ही इन्वेस्ट करिएगा म्यूचुअल फंड्स में कि उतार चढ़ाव का अनुभव तो आपको मिलेगा ही, और उसको आपको धैर्य के साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा। जहां तक आपका सवाल था कि इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं,
3: जी वो थे कि अभी जो हालात है, मार्केट कुछ ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है या गिरावट है, ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? FPI पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो फिर भी कुछ कर ही रहे हैं।
0: जी तो देखिए, अगर आपके पास कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, कम से कम आप 5-7 साल की अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप SIP के माध्यम से मार्केट में निवेश करिए। और एक लंबे समय के इन्वेस्टर के लिए तो एक्चुअली निवेश करने का अच्छा टाइम है, जब मार्केट में गिरावट है तभी आप लंबे समय में एक अच्छे प्रॉफिट का अनुभव कर पाएंगे। तो अगर आप 5-7 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव में धैर्य बनाए रखने में सक्षम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप SIP के जरिए अपना निवेश शुरू कर सकते हैं।
1: All right, moving on with some more news stories. External Affairs Ministry today said there have been a number of concrete, practical development-oriented outcomes during the BRICS summit, which concluded today. Briefing media in New Delhi this afternoon, Secretary ER in the Ministry, Sudhakar Dalela, said there are over 50 concrete outcomes across various thematic tracks, which is a significant achievement of India's leadership this year. He said BRICS has maintained consistent position on need for UN reform. India would like to have more engagements with BRICS nations going forward. Mr. Dalela informed that the session also received the report of the BRICS Business Council and BRICS Women's Business Alliance to bring the voice of businesses and particularly of women in business directly before leaders.
3: जी, आशुतोष, हम बात कर रहे थे विदेशी फंड्स की, विदेशों में निवेश करने वाले फंड्स की, और NASDAQ में जो असर हो रहा है, लेकिन अभी कुछ समय में देखा गया, अभी पिछले कुछ दिनों में, कि NASDAQ का जो ETF है उसमें काफ़ी तेज़ी दिखाई दी है, इसकी वजह क्या है और आम निवेशक को कितना लालच करना चाहिए उसे देखकर?
0: जी तो इसका रीज़न ये है कि पिछले कुछ दिन में ये देखा गया है कि जो इंटरनेशनल ETFs हैं, NASDAQ या S&P 500, NASDAQ Q50 को जो फॉलो करने वाले ETFs हैं, उनका जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडेड प्राइस है उसमें काफ़ी तेज़ी देखी गई है, और NAV से ये फंड्स काफ़ी अत्यधिक प्रीमियम पे हैं, 40-50% के भी प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अभी हाल फिलहाल तक इनकी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता था वो ये एनएवी से 20% ऊपर या नीचे के दायरे में ही हो सकता था, इनके ऊपर वो दायरा था उसके ऊपर सर्किट लग जाता था। दो दिन पहले की एनएवी से ये 20% से ज्यादा मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन हाल फिलहाल में इनकी ट्रेडिंग के जो प्राइस है उसकी रिस्ट्रिक्शंस में चेंज किया गया है और अब उसको उनके

पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से एंकर कर दिया गया है, ना कि एनएवी से। तो अगर पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस ऑलरेडी प्रीमियम पे है, आज और उसके ऊपर प्रीमियम बढ़ जाएगा, कल उसके ऊपर और बढ़ सकता है। तो अभी प्रीमियम की जो मात्रा है इनमें काफी ज्यादा बढ़ गई है, और ये ट्रेंड देखा गया इंटरनेशनल ईटीएफ्स में ही। ये रूल अपने आप में कोई गलत नहीं है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के ऊपर इसी तरह से ट्रेडिंग के रूल लगते हैं, लेकिन इंटरनेशनल

0: उसकी यूनिट्स की बढ़ जाती है और दाम अपने आप एनएवी के नजदीक आ जाता है। इन फंड्स में वो मैकेनिज्म अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि नई यूनिट्स क्रिएशन पे पाबंदी लगी हुई है, तो इस कारण से डिमांड इनकी है, सप्लाई और मार्केट में नहीं आ पा रही है। तो वो एक जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे प्ले में है, उस वजह से ये काफी प्रीमियम पे है। अब सवाल ये है कि निवेशकों के लिए इसका क्या इम्प्लीकेशन है। तो आप अगर किसी भी विदेशी ETF में निवेश करने की, इंटरनेशनल ETF में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जरूर चेक करें कि वो NAV से कितने प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कोई फंड अगर 50% प्रीमियम पे है तो ऐसा हो सकता है कि अगले दो साल में वो बहुत अच्छे रिटर्न दे, 40-50% भी रिटर्न दे, लेकिन अगर उसके बाद ये प्रीमियम वापस नीचे आ जाता है तो दो साल होल्ड करके भी शायद आप लॉस में रहें। तो ये आज की डेट में ऐसा है कि कोई 100 रुपए की दाम वाली चीज आप 150 रुपए में खरीद रहे हैं, तो इसमें आपको काफी केयरफुली, अगर आप स्टॉक मार्केट पे ETF की यूनिट्स खरीद रहे हैं, इंटरनेशनल ETF की, तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी
1: जी। यानी ज्यादा हीटेड बाजार अगर दिखाई दे तो दूर ही रहे
0: जी।
2: सो आई हैव बीन लिसनिंग टू ऑल योर पीस ऑफ एडवाइस वेरी केयरफुली आशुतोष, एंड यू स्पोक अबाउट रिस्क एपेटाइट, यू मेंशन टाइम होराइजन, नॉट रिएक्टिंग टू एवरी मूवमेंट इन द मार्केट। सो इज कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, आर दीज द की एट्रीब्यूट्स व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री?
0: ओ एब्सोल्युटली। इनफैक्ट देयर इज अ वेरी ओल्ड एडेज व्हिच इज सेड दैट टाइम इन द मार्केट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट।
2: वेल सेड।
0: सो a lot of people try to time their entry, they want to buy when the stocks are at their lowest and exit when they are at the highest. You know, on paper sounds a very noble concept, but in practice it is almost next to impossible to implement. So you just have to remain disciplined, keep investing periodically, match your investments to your cash flow patterns. You earn monthly, you save monthly, and you invest monthly. And if you keep doing that with discipline through the ups and downs of the market, let the growth of the Indian economy is and is likely to continue to be among the world's fastest growing major economies for decades from here. Let that momentum work for you and let that tailwind earn you the wealth.
2: If time permits, we'll come back to this interesting discussion. Meanwhile, let's hear from Dev, who connects with from Faridabad, what his question is.
3: Hello.
1: Ji, Dev, apna sawal puchhe.
3: Hello, sir.
1: Ji, sawal
3: puchhe. Sir, mere beti abhi 18 saal ki hui hai aur mujhe uske liye kuch funds khareedne hain, lump sum amount lagana hai aur ajin 5 se 10 saal ka hai aur mere paas फ्लैक्सी का फंड ऑलरेडी है, एक लार्ज कैप भी है, एक PSU है और ELSS है। ये फंड मेरे पास 2021 से हैं सारे, और अभी मुझे बेटी के लिए कुछ फंड खरीदना, तो किस पे मुझे लगाना चाहिए? मेरे पास अलग अलग AMCs के फंड हैं एक्चुअली
0: जी। आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑलरेडी है, अगर आप इन फंड से संतुष्ट हैं, इनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, ठीक ठाक है, आपको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो कोई नया फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप इतना ही देख सकते हैं क्योंकि आप अपनी बिटिया के लिए पैसा ही लगाना चाहते हैं। अगर एक यंग एज पर अगर अच्छा टाइम होराइजन आपके आगे है, रिस्क एपेटाइट है, तो आप थोड़ा पैसा किसी स्मॉल कैप फंड में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा एग्रेसिव आपका पोर्टफोलियो बनाएगा, थोड़ा आपका पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी बढ़ाएगा, लेकिन रिटर्न बूस्ट करने के लिए अगर आप 10-12% अपना पैसा इस पोर्टफोलियो का एक डेडिकेटेड अच्छे स्मॉल कैप फंड में लगाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। बाकी आपके पास जो फ्लेक्सी कैप वैल्यू फंड्स हैं, आप उनमें निवेश करते रहें। ELSS का अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो ELSS में कोई इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करने का कोई बहुत ज्यादा पर्पस नहीं है, क्योंकि आपको न्यू टैक्स रिजीम में ATC के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, तो आप ELSS फंड उस केस में बंद कर सकते हैं। और अगर आपको नया फंड ऐड करना ही है तो स्मॉल कैप जैसे मैंने बताया, या फिर आप मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, जिसके थ्रू भी आपको मिड और स्मॉल कैप का अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है, जो कि आजकल फ्लेक्सी कैप फंड्स में अब कम देखने को मिलता है
1: जी। और नजर डाले FPIs के हाल पर, इस महीने अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPIs ने भारतीय बाजार से पैसे निकाले हैं, जुलाई और अगस्त में उन्होंने लिवाली की थी। ताजा आंकड़ों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के कारण निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित हुई है। इसके चलते सितंबर में अब तक FPIs ने घरेलू शेयर बाजार से 13,138 करोड़ रुपए की निकासी की है। कुल शुद्ध निकासी में से 14,474 करोड़ रुपए की राशि शेयर बाजारों से निकाली गई। हालांकि प्राथमिक बाजार के माध्यम से FPIs निवेश का रुझान सितंबर में भी जारी रहा। इस महीने अब तक FPIs ने प्राथमिक बाजार में 1,336 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और अगले कॉलर है हमारे, दिल्ली से वरुण, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।

0: हाँ नमस्कार
1: नमस्कार
0: सर, मुझे पूछना है, जैसे एक मल्टीकैप, काफी फेमस मल्टीकैप फंड है, आप लोग नाम लेने मना करते हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ, तो उसका अभी प्रदर्शन काफी खराब चल खराब क्या है, मतलब उतना लोग कहता है साइज बहुत बड़ा हो गया और उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, अब क्या सर, आप समझ ही गए होंगे, तो उसमें क्या सर इन्वेस्ट स्टेट रहना चाहिए, मेरा सीट में भी यूज मनी जा रहा है उसमें ना, क्या उसको बंद करके उसका साथ में जो दूसरा फंड है जो अभी जो वैल्यू रिसर्च का हिसाब से जो अच्छा फंड है उसमें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए? थैंक यू
2: जी. देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी, इवन द बेस्ट ऑफ फंड्स गो थ्रू पैचेस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस. कोई भी फंड मैनेजर जादूगर नहीं होता है कि वो हर तरह की मार्केट कॉन्टेक्स्ट में, हर तरह की स्थिति में अच्छा ही परफॉर्म करेगा. तो फंड्स भी अपने उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे पीरियड्स आते हैं, ऐसे फेजेस आते हैं कि जब वो अंडर परफॉर्म करते हैं, तो एक एक दो दो साल तक भी वो अंडर परफॉर्म करते हैं, तो आपको उतना धैर्य बनाना पड़ेगा. अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर फंड है जो कि आपके होल्डिंग पीरियड पे उसने अच्छे रिटर्न्स दी हैं और आपको फंड में और कोई डिस्टर्बिंग चीज नहीं दिखती है कि जैसे उसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है अगर वो अचानक से बहुत चेंज नहीं हो गया है, फंड मैनेजर चेंज नहीं हो गया है, तो जो अंडर परफॉर्मेंस है वो किसी डेफिनेटिव रीजन से आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा कोई खास चिंता की जरूरत नहीं है. फंड को टाइम दीजिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए. अब आपका सवाल कि इसमें आपको SIP जो आपका कंटिन्यू हो रहा है वो बनाए रखना चाहिए कि नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि वो डिसीजन आप इस कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में बाकी कितने फंड हैं, इस फंड का कितना वेटेज आपके पोर्टफोलियो में है. अगर ये फंड ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में 25-30% वेटेज है इसकी, तो मेरा ख्याल आप इसमें अपना SIP बंद करके डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड इंडिविजुअली, तो आप उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें और पैसा लगाना है या नहीं.
1: जी, और देखें, पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रहा. MCX में अक्टूबर अनुबंध के सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान लगभग स्थिर रहा और 1,52,784 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं दिसंबर अनुबंध की चांदी में 1.1% की गिरावट आई और ये 2,34,974 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ.
3: Domestic investors are expected to focus on key market triggers in the holiday shortened week ahead, including the US Federal Reserve's policy decision, macroeconomic data, foreign institutional investor flows, commodity prices, and bond yields. Indian stock markets will remain closed tomorrow for Ganesh Chaturthi. Meanwhile, market participants will closely track key economic indicators, including retail and wholesale inflation data, import-export figures, and employment data. The primary market is also set for another busy week with 5 main board IPOs opening for subscription. Global monetary policy will remain in focus beyond the US, with the Bank of England and Bank of Japan also scheduled to announce their policy decisions during the week.
1: आशुतोष, आज वक्त इतना ही है कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
2: जी धन्यवाद.
3: Listeners, before we wrap up, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi says New Delhi Declaration adopted at BRICS Summit will provide clear direction for shared vision and future cooperation. Global crude oil prices surge around 9% last week. And domestic investors to focus on US Federal Reserve's policy decision, macroeconomic data and geopolitical developments for Qs next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं, जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं और उस पुराने दौर में वापस कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो दौर जो हमेशा के लिए अमर हो गया, उस दौर के नगमे, उस दौर की फिल्में हमेशा के लिए अमर हो गई। उसी दौर से एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं 1960 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म कोहिनूर से। इसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और लता जी की। इस फिल्म के गीतों को लिखा है शकील बदायूनी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है नौशाद साहब ने। तो आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं इसी बेहद खूबसूरत फिल्म कोहिनूर के इस बहुत ही प्यारे नगमे के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह नगमा था एक बेहद खूबसूरत फिल्म कोहिनूर से। आप सुन रहे हैं हमारा बेहद खूबसूरत ये प्रोग्राम जिसका नाम है गीत मेरे मन मीत। ये वो फिल्मी सफर है जहां हर नगमा अपने साथ एक दौर की खुशबू, एक कहानी और कुछ हसीन यादें लेकर आता है। आज का ये अगला गीत हमें ले चलता है सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जब मोहब्बत में इजहार कम और इशारे ज्यादा हुआ करते थे, जब नजरों की शरारत ही पूरी दास्तान कह देती थी। साल था 1956 का और फिल्म थी चोरी चोरी। राज कपूर और नरगिस के दिलकश जोड़ी से सजी इस फिल्म ने अपने गीत संगीत के जरिए श्रोताओं के दिलों में एक खास जगह बनाई। इसी फिल्म का एक बेहद प्यारा नगमा है, बहुत ही चुलबुला सा, जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो। इस गीत को अपनी खूबसूरत आवाजों से सजाया है लता जी और मन्ना डे साहब ने। गीतकार थे शैलेंद्र, जिनकी शायरी में सादगी के साथ साथ जिंदगी की गहरी समझ दिखाई देती थी, और संगीत की जिम्मेदारी थी उस दौर की बेहद कामयाब संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की। इस गीत की खासियत है इसकी नोक झोंक और मीठी शिकायत, नायिका जैसे अपने चाहने वाले से कह रही हो, मैं जहां जाती हूं तुम वहां कैसे पहुंच जाते हो, और जवाब में नायक की मौजूदगी मानो यही कहती है कि मोहब्बत में दूरी भला कहां टिकती है।

मन्नाडे साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में नगमा था फिल्म चोरी चोरी से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में अगला नगमा बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। आज के इस सफ़र में हम लेकर चलेंगे 1951 के उस दौर में जब हिंदी सिनेमा अपनी एक नई पहचान बना रहा था और फिल्मी गीत महज मनोरंजन नहीं बल्कि जज्बातों की जबान हुआ करते थे। फिल्म थी आवारा, राज कपूर की वो यादगार फिल्म जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा को देश की सरहदों के पार भी पहचान दिलाई। फिल्म में राज कपूर और नरगिस की जोड़ी ने पर्दे पर मोहब्बत, मासूमियत और इंसानी जद्दोजहद की ऐसी तस्वीर पेश की जिसे आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है दम्बर जो उधर मुंह फेरे। ये बेहद खूबसूरत नगमा इस गीत को अपनी आवाज दी है मुकेश साहब और लता मंगेशकर जी ने। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत से सजाया है मशहूर और मारूफ जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की। मुकेश की आवाज में जहां दर्द की एक खामोश लहर महसूस होती है, वहीं लता जी की आवाज में मोहब्बत की नजाकत और चंचलता है। दोनों आवाजें मिलकर इस गीत को एक ऐसी रूमानी संवाद में बदल देती है जिसमें प्यार भी है, छेड़छाड़ भी और एक दूसरे से दूर होने का डर भी।

आवारा फिल्म का यह नगमा था और ये फिल्म आई थी 1951 में। आवाज़ें थी मुकेश साहब और लता जी की। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल थी आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत में ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये नगमे आपको कैसे लगे, हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए। और उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे fmgoldia@daily@gmail.com पे। इसी के साथ मुझे यानी फ़िरोज़ को अब दीजिए गीत मेरे मनमीत से इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आप सुनेंगे अगला प्रोग्राम जिसे लेकर हाजिर रहेंगी आपके बीच मंजू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र

0: हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने कल मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के 2 दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार हमारे जीवन में ऊर्जा, ज्ञान और सकारात्मकता लाता है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 183 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the

0: आत्मनिर्भर भारत के पावन संकल्प को धरातल पर साकार करती पीएम स्वनिधि योजना ने अनगिनत छोटे व्यवसायियों के जीवन में उम्मीद का एक नया सवेरा जगाया। आज हमारे बीच एक ऐसी ही कर्मठ और स्वाभिमानी लाभार्थी उपस्थित हैं, साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि पीएम स्वनिधि योजना आखिर क्या है, किस प्रकार से इसका लाभ लिया जा सकता है और कैसे ये लाखों लोगों के जीवन में एक उम्मीद जगा रही है। तो मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ हैं श्री शैलेश कुमार, आप महाप्रबंधक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद नीलम जी।
0: हमारे साथ हैं श्री राजेश कुमार, आप महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक से। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद नीलम जी।
0: और हमारे साथ हैं श्रीमती बबीता शर्मा, जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। बबीता जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: आपको सबको मेरा नमस्कार है और सबको धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं सबके बीच में आमंत्रित हो पाई।
0: तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं अपने विशेषज्ञों से, हम इनके जवाब जानेंगे और साथ ही योजना के बारे में आज हमारी जानकारी बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इस योजना यानी स्वनिधि योजना का उल्लेख किया है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: तो श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आइए अब हम अपने उन सवालों के जवाब जानते हैं जिनके कुछ जवाब हमारे पास पहले से हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारे विशेषज्ञ हमारे बीच हैं तो ये हमें बताएंगे कि किस तरह से छोटी छोटी मदद लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाती है और जब जिंदगियां बदलती हैं तब देश किस तरह से बदलते हैं। तो शैलेश जी,

0: मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जब हम कहते हैं पीएम स्वनिधि योजना, तो किस प्रकार से आप इस योजना के बारे में बताएंगे, कैसे रेडी पटरी विक्रेताओं के साथ ये जुड़ी है योजना?
1: धन्यवाद नीलम जी मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए, और मैं इसमें बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने लोगों के साथ दिन रात मेहनत करते हैं सड़कों पे, फुटपाथ पे, गलियों पे, और उनको हम कैसे और उनका जीवन स्तर हम उठा सकते हैं और उन्हें और समृद्ध बना सकते हैं। सो इस संदर्भ में आपने हमें मौका दिया है कि हम इस योजना को उनके बीच कैसे सरलतम रूप से प्रस्तुत कर पाएं। प्रधानमंत्री महोदय ने इस पे दो उदाहरण दिए हैं अपने मन की बात प्रोग्राम में, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा, यह योजना बहुत ही सरल है। जो भी वेंडिंग का काम करते हैं, हॉकर्स हैं, किसी भी सड़क मोहल्ले गली में काम करते हैं, जैसा आपने कहा कि कुछ रेहड़ी और जो ठेला लगाते हैं या छोटे मोटे खोखे लगाते हैं, वो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, निबंधन कराना पड़ेगा, जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हम लोग बोलते हैं, वहां उनको एक प्रमाण पत्र जारी होगा वेंडिंग का, और उसके बाद केवल एक आधार की जरूरत है, और कुछ राज्य हैं जैसे असम और मेघालय, वहां पे मतदाता पहचान पत्र की जरूरत है
0: जी।
1: बस इतने ही कागजात के आधार पे वो आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए एक पोर्टल भी है और ऐप की भी सुविधा है, उसके थ्रू वो आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो स्थानीय निकाय के लोग होते हैं, शहरी स्थानीय निकाय के लोग, वो लोग भी उनकी मदद करते हैं अप्लाई करने में, आवेदन करने में। और ये लोन आज के डेट में पूरी तरह डिजिटल हो गया है, उन्हें किसी शाखा में जाने की भी जरूरत नहीं है, वो अपना जो दिन भर का काम है वो भी कर सकते हैं और साथ में वो लोन भी ले सकते हैं। उसमें केवल आधार में जो मोबाइल नंबर रहता है उस पे कुछ ओटीपी आएगा और वो ओटीपी को डाल करके वो अप्रूवल मिल जाता है और खाते में उनके ये पैसा आ जाता है। तीन चरण में ये योजना है। पहले चरण में हम अब 15,000 रुपये तक देते हैं
0: जी,
1: और इसमें ब्याज की भी चिंता नहीं करनी है। ब्याज में 7% की सब्सिडी, यानी अगर आपका जो भी ब्याज लग रहा है उसमें 7% जो सब्सिडी है वो सरकार देती है, और 15,000 का जो ऋण मिलता है उसे चुकाने के लिए लगभग 12 महीने का समय मिलता है, और इसको जो है वो चाहें तो इसका अर्ली भुगतान भी कर सकते हैं, और वह मिनिमम 6 महीना है। 6 महीने के बाद या 12 महीने के बाद इसका भुगतान करने के बाद दूसरे चरण का लोन मिल सकता है, और वो 15,000 के बाद जो अगले चरण का लोन मिलेगा वो 25,000 का होगा
0: जी।
1: और अगर वो उसे भी चुका देंगे उसके लिए 18 महीने का समय मिलता है, फिर जो अगले चरण का जो ऋण मिलेगा अब वो 30,000 से बढ़ के 50,000 हो गया है, और इसमें क्रेडिट कार्ड की भी अब सुविधा है, अब क्रेडिट कार्ड का भी लिमिट मिलता है, ताकि वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो होलसेलर हैं, जो थोक व्यापारी हैं, उनसे नॉर्मली ये लोग अपना सामान खरीदते हैं जो बेचते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अपने थोक विक्रेता से जिनके यहाँ से ये अपना सामान लाते हैं वो क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान कर सकते हैं
0: जी। मैं राजेश जी आपसे जानना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि परिवार के एक से ज्यादा सदस्य इस तरह का काम कर रहे होते हैं
2: जी, जी।
0: तो अगर किसी एक व्यक्ति ने बैंक से स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण लिया है तो क्या अन्य सदस्यों को भी मिल सकता है?
2: जैसा कि शैलेश जी ने मुक्त जो योजना है उसका पूरा पूरा बताया है
0: जी,
2: इसमें जैसा कि उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, और वो आधार कार्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए, और एक COB जिसको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग कहते हैं, जो अर्बन लोकल बॉडी शहरी स्थानीय निकाय करती है, अगर घर के सदस्य अलग अलग कार्य में लगे हैं तो निश्चित रूप से वो लाभान्वित हो सकते हैं, उनकी पात्रता है इसमें
0: जी।
2: सबसे बड़ी जो एक महत्वपूर्ण काम हुआ पीएम स्वनिधि लाने का, इसके द्वारा जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल ग्रुप था, जिनको कोई बैंक में खाता तो है बट जानकारी नहीं थी, उनको जोड़ा गया, तो उनको एक रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें कि अर्बन लोकल बॉडी का बहुत बड़ी भूमिका है, और उसके बाद बैंक की भूमिका है कि उनको हैंड होल्डिंग करे, कि डिजिटल से अवेयरनेस, चाहे वो लोन देते वक्त जब हम देते हैं लोन तो उनको QR कोड भी देते हैं, तो बैंकों की जो भूमिका रही है ना वो डिजिटल अवेयरनेस में बहुत ही सक्रिय रूप से उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया, ताकि आप देखिए कि हर ठेले खोमचे शॉप पे आपको QR कोड हर बैंक का मिलेगा, और कितनी सुविधा हो गई है। हमारे लोग हो सकता है कम पढ़े लिखे हों, लेकिन उनको जब ये हैंड होल्डिंग उनके साथ जो काम किया गया तो वो उसमें भी डिजिटल में भी बहुत ही सफल हुआ। तो ये सब पीएम स्वनिधि जो कहते हैं प्रधानमंत्री

0: स्वनिधि आत्मनिर्भर निधि
1: जी,
0: तो इसका मुख्य काम यही था कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, वह जागरूकता कैसे लाई जाए, चाहे वो डिजिटल हो या बैंकिंग से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के बारे में हो
1: जी।
0: तो अर्बन लोकल बॉडी और बैंक की बहुत बड़ी भूमिका रही इसको सफल बनाने में और इसको आगे भी ले जाएंगे। तो मेरा है कि लोग को बताने पर, हैंड होल्डिंग करने पर वो सब समझदारी उनके अंदर आ जाती है जो कि इसको सफल बनाया है।
1: चाहे शुरुआत में वो जाना चाहें एक बार, लेकिन जब वो समझ जाते हैं पूरी प्रक्रिया तो आसान प्रक्रिया है,
0: बहुत ही आसान।
1: बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से ऋण ले सकते हैं और उसकी किस्त भी चुका सकते हैं। जी, ये आपने बताया। बबीता जी, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपका नाम लिया है, आपका जिक्र किया है और आपके नाम से बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए हैं, प्रेरित हुए हैं। आप बताएं कि लोग किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या बात आपसे कर रहे हैं आजकल?
2: मेरे पास बहुत कॉल आते हैं
1: जी,
2: जैसे डीएम जी से मिलके आई हूँ तो उन्होंने मेरा सम्मान किया है और डूडा विभाग से जहाँ से मैं ये योजना का मुझे लाभ मिला था वहाँ भी मुझको सम्मानित किया गया था। तो मैं तो सभी लोगों से यही कहूँगी कि इस लाभ को लेने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। किसी को भी इतनी दिक्कत है कि मतलब छोटे छोटे लोन नहीं ले पाते, पहले नहीं मिलता था, मुझे भी नहीं मिलता था कि गारंटर जरूर चाहिए था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अपना आधार कार्ड ले जाकर और एक पीला कार्ड बनता है जो लाभार्थी का बनता है, वो बहुत जरूरी है, उसको लेकर अगर जाएंगे तो लोन बहुत जल्दी से अप्लाई होता है, कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है और मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ। तो मैं तो यही चाहूंगी अगर आप किसी भी को भी योजना चाहिए तो अपना पीला कार्ड और आधार कार्ड लेकर जरूर जाएं।
1: जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जब आप अपना काम कर रही थी तब शुरुआत में किस तरह की दिक्कतें आई, कैसी परेशानी आई?
2: मैंने लॉकडाउन से पहले जब कोरोना काल हुआ था उस टाइम पे मेरा काम था
1: जी,
2: लेकिन कोरोना काल आने के दौरान मेरा काम बिल्कुल बंद हो चुका था
1: जी।
2: तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो लेकिन एक मेरे भाई हैं जो डूडा विभाग में ही काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक पीला कार्ड बन रहा है बहन, उसको बनवा ले और उससे तुझे थोड़ी सहायता मिलेगी। तो मैं पीला कार्ड बनवाने के लिए मैं गई थी डूडा विभाग में, तभी मुझे सारी टीम ने मुझे समझाया कि इससे 10,000 रुपए का लोन लेकर आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं
1: जी।
2: तो मैंने 10,000 का लोन लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और मेरा काम थोड़ा अच्छे से चला
1: जी। बहुत अच्छी बात है, आपसे और भी मैं सवाल करूंगी। ये बताइए कि आप अपनी पसंद का कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
2: मेरी पसंद का गाना है मदर इंडिया मूवी का, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।
1: आपने बहुत ही प्रेरित करने वाला गाना चुना है, लीजिए आपकी पसंद का यही गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। हमारे विशेषज्ञ इस समय हमारे साथ हैं। हमारे साथ श्री राजेश जी हैं, आप महाप्रबंधक, शैलेश जी महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और श्री राजेश कुमार महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक से। और हमारे साथ इस योजना की लाभार्थी हैं श्रीमती बबीता शर्मा। शैलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बबीता जी ने जिक्र किया पीले कार्ड का, क्या ये वही वेंडर्स कार्ड है जिसकी आप उल्लेख कर रहे थे?
1: ये अर्बन लोकल बॉडीज इशू करती है, जो शहरी स्थानीय निकाय हैं वो इशू करते हैं
0: जी।
1: लेकिन अब इस योजना का विस्तार जो है शहरों से निकलकर छोटे छोटे कस्बों में भी जा रहा है
0: जी।
1: सो वहाँ पे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनको दिया गया है कि वो एक LOR इशू कर सकते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो वैसे जगहों के लिए जहाँ अर्बन लोकल बॉडीज नहीं है, वहाँ पे जो वीडियोज LOR इशू कर रहे हैं यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यानी अनुशंसा पत्र जो इशू कर रहे हैं
0: जी,
1: उसके आधार पे भी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या हॉकर्स हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है
0: जी। जैसा कि बबीता जी ने भी जिक्र किया, पहले ये धारणा थी कि अगर हमें बैंक से लोन चाहिए तो हमें किसी ना किसी तरह की गारंटी जो है वो देनी पड़ेगी, और ये आश्वासन देना पड़ेगा बैंक को कि हम आपका लोन जरूर चुकाएंगे। मैं विशेष तौर से आपसे जानना चाहूंगी, स्वनिधि योजना से जुड़ी क्या इस तरह की कोई नियम और शर्त है?
1: बिल्कुल नहीं, ना ही किसी की गारंटी देनी है, ना ही कुछ भी आपको अपना संपत्ति या कुछ भी बंधक में रखना है। और जो लोग ठेला वगैरह चलाते हैं वो ठेला भी, उसमें भी कुछ लागत लगती है उनकी, तो उस पे भी कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता है
0: जी।
1: ना ही मॉर्गेज क्रिएट होता है, ना ही हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट होता है, कुछ भी नहीं होता है। वो पूरी तरह से उनके खाते में ये पैसा मिल जाता है। जैसे बबीता जी ने बताया कि इन्हें 10,000 का लोन पहली बार में मिला था
0: जी।
1: अब ये राशि बढ़कर 10,000 से 15,000 हो गई है। और जैसे कि राजेश जी ने बताया कि हर वेंडर्स के पास हम लोग QR कोड लगा रहे हैं ताकि जो भी वो खुदरा बिक्री करते हैं उसका लेन देन जो है डिजिटली हो जाए
0: जी।
1: तो उसपे भी उन्हें कैशबैक मिलता है। और जिस थोक विक्रेता से वो अपना माल खरीदते हैं
0: जी,
1: उसको भी अगर वो डिजिटल लेन देन करते हैं तो वहां पर भी कैशबैक है। वहाँ पे भी 2,000 रुपए के ऊपर के ट्रांजेक्शन पे उनको कैशबैक मिलता है
0: जी। यहाँ मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि किन्हीं परिस्थितियों में अगर जिसने ऋण लिया है वो ऋण ना चुकता कर पाए बैंक का, तो ऐसे में क्या होता है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या कोई दंड का प्रावधान है?
1: इसमें जैसा आपने कहा कि कोई गारंटी लगती है कि नहीं लगती है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की एक संस्था है CGTMSE
0: जी,
1: जो सिडबी के द्वारा प्रमोटेड है, प्रायोजित है। तो यहाँ पे सरकार इसका गारंटी फी देती है इस संस्था को, तो ये ऋण जो है उस संस्था के द्वारा गारंटीड रहती है। जब इसमें डिफॉल्ट होता है या लोग नहीं चुका पाते हैं, उसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं कि ये अकाउंट NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया
0: जी,
1: तो वैसे केस में बैंक को कुछ पैसा, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ पैसा, उस गारंटी फी के बदले में वो जो कंपनी जो CGTMSE जो गारंटी प्रदान कर रही है
0: जी,
1: उससे कुछ पैसा बैंकों को मिल जाता
0: है। लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो?
2: बिल्कुल, ऐड करना चाहूंगा कि बैंक का लोन खराब होगा, लेकिन सबसे बड़ी जागरूकता की बात है, इस आकाशवाणी के माध्यम से सारे श्रोताओं को बताऊंगा कि किसी भी लोन में भी, हम स्वनिधि में भी उस तरह से, कि आपका जो CIC है उसमें डिफॉल्ट अगर आता है तो भविष्य में आपको कोई भी ऋण लेने से आपको शायद बाधा पहुंचे
0: जी।
2: तो इसलिए है कि जागरूकता की 10,000 नहीं, 15,000, 25,000, 50,000 नहीं, उसके आगे भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध है
0: जी।
2: तो जो लोग सफलतापूर्वक इसको पुनर्भुगतान करते हैं उनका एक क्रेडिट हिस्ट्री तैयार होता है जिससे उनको आगे लोन लेने में सहायता मिलती है। अगर उन्होंने पहला लोन खराब कर लिया या इसमें किसी भी स्तर पे खराब किया तो उनका जो सिविल स्कोर या CIC बोलते हैं
0: जी,
2: जो हिस्ट्री है क्रेडिट की, उसमें डिफॉल्ट दिखेगा तो आगे लोन लेने में उनको असुविधा होगी।
0: यानी अगर नियमों का पालन करते हुए सही समय पर लोन चुकाते हैं तो आगे एक बहुत बड़ी राशि भी मिल सकती है और वो बड़ा काम कर सकते हैं। और अगर परिस्थिति वश कभी

0: ऐसा हो जाता है कि आप नहीं चुका पाए तो उसका आगे फिर नुकसान हो सकता है। जी
1: नीलम जी, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो सरकार के द्वारा इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिलना है जो 7% है
0: जी,
1: वो सब्सिडी का फायदा भी तभी मिलेगा जब आप समय से ऋण को चुकाते हैं। और इसमें जो CIC में जो उनका डिफॉल्ट नजर आता है उसको कह सकते हैं कि मार्केट में आपकी साख चली गई
0: जी।

0: रिकॉर्ड में नजर आएगा कि ये इस लोन में इन्होंने डिफॉल्ट किया था, तो यहाँ पे साख जो है आपकी गिर जाएगी।
1: जी, यानी बहुत सरल तो इस विधि को रखा गया है, लेकिन इसमें विश्वसनीयता बनी रहे इसका भी ध्यान रखा गया है। और यदि अपने काम को लेकर कोई गंभीर हो, सच में उसे जरूरत है, तभी वो लोन के लिए अप्लाई करे। यहाँ मैं शैलेश जी आपसे आपकी पसंद का कोई गाना जानना चाहूंगी, हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना आप सुनवा रहे हैं?
0: लाल पत्थर फिल्म का है, गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैं, ये जी विनोद मेहरा पे फिल्म आया।
1: जी, वो पियानो बजा रहे हैं इस गाने में। ठीक है, तो हम यही गाना सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को।

0: हूँ मैं। गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए आपने बताया कि QR कोड आप देते हैं जो भी वेंडर्स हैं उनको, ऐसे में ये बताएं कि बैंक में आवेदन प्राप्त होने के बाद लोन स्वीकृति जो होती है और जो वितरण होता है उसमें लगभग कितना समय लगता है, और कई बार हमारे जो वेंडर्स होते हैं वो ऐसी स्थिति में भी होते हैं कि बहुत ज्यादा लिखना पढ़ना वो नहीं जानते हैं, तो क्या बैंक की ओर से उन्हें कोई इस तरह की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है कि उनकी ओर से ये काम बैंक स्वयं कर दे?
1: जहां तक बात है कि लोन का डिजिटल होने में, अगर जिस बैंक ने स्वनिधि योजना जो है उसको अगर डिजिटल में कर लिया
0: जी,
1: जो तीनों चरण हैं इसके, प्रथम द्वितीय और जिसमें अलग अलग राशि का लोन दिया जाता है, तो इसमें 1 से 2 दिन लगता है
0: जी।
1: और अगर उससे हटकर ऑफलाइन मोड में, जैसे अर्बन लोकल बडी के पोर्टल पे एप्लीकेशन आया, बैंक के पास गया, तो इसमें 3 से 5 दिन में सैंक्शन हो जाता है
0: जी।
1: और इसके लिए मुख्यतः उनको जागरूकता या उनको इसकी समझदारी बढ़ाने के लिए कि वो किस प्रकार से डिजिटल में या पोर्टल में, उसके लिए हम लोग अपने बैंक कर्मियों, जैसे बैंक में जो स्टाफ है, ऑफिसर है और या BC कॉरेस्पोंडेंट है
0: जी,
1: उन सब की सहायता लेकर के और हैंड होल्डिंग करके अर्बन लोकल बॉडी के साथ मिलकर आउटरीच

0: प्रोग्राम्स करते हैं, कैंप्स करते हैं और वहाँ जो लाभार्थी हैं उनको बुला करके वन बाय वन पोर्टल से अवगत कराया जाता है। डिजिटल लेंडिंग अगर उपलब्ध है उस बैंक में तो उसको डिजिटली कैसे करना है, क्योंकि शैलेश सर ने बताया कि ओटीपी आती है और आने के बाद वेरीफाई होता है और लोन सैंक्शन और डिसबर्स हो जाता है अकाउंट में। चूंकि इसकी राशि बहुत बड़ी नहीं है और चूंकि इसमें सीजीटीएमएससी की गारंटी उपलब्ध है, तो मैं निर्भीक होकर जो अपना काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बैंक भी इसमें बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दे रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। और हैंड होल्डिंग बीसी कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंक कर्मी और यूएलबी के लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं, तभी ये इस मुकाम पे पहुंचा है ये।
1: जी राजेश जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमने ये तो बात की कि अगर लोन समय से चुकता नहीं हो पाता तो बाजार में साख जो है वो खराब होती है, लेकिन अगर समय से लोन जो है वो चुकाया जा रहा है और अच्छा हमेशा व्यवहार रहा है तो क्या इसका लाभ मिलता है और किस बड़ी राशि की हम अभी बात कर रहे थे?
0: निश्चित रूप से पीएम स्वनिधि एक मैं कहूंगा कि प्रथम चरण है
1: जी,
0: जिसमें हमने और भारत सरकार ने, बैंकों ने, अर्बन लोकल बड़ी ने मिल करके जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको जोड़ा है, उनका फाइनेंशियल वित्तीय समावेशन क्रेडिट लिंकेज करके किया, ये शुरुआत हुई और इसको जिन लोगों ने सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया वो हमारा आप जानते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें कि 20 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है और शुरुआत में ये 50,000, 5 लाख और 10 लाख, और 10 लाख का सफल होने पे वो फिर 20 लाख का लोन भी ले सकते हैं। और उसके लिए भी इतनी ही सरलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन है, आधार कार्ड हो गया, और जैसे अगर बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी हैंड होल्डिंग बैंक की चाहिए होती है उसमें, कि उनका जो बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रारूप लेकर के और उसको पोर्टल पर ही, उसके लिए भी पोर्टल बना हुआ है, वहां से करके सैंक्शन हो जाता है और वो 50,000 का सैंक्शन सफलता करते हैं, नेक्स्ट में वो जैसे शिशु, किशोर एंड तरुण, तीन चरण है जिसमें 50,000 और 5 लाख और 10 लाख। तरुण यदि आपने सफलतापूर्वक कर लिया भुगतान तो तरुण प्लस जो कि 20 लाख का लोन होता है मुद्रा योजना के अंतर्गत भी, इसमें भी कोई गारंटी नहीं, कोई बंधक नहीं, और आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है तो आप उसके लाभान्वित हो सकते हैं। ये है और उसके आगे तो अंत नहीं है। बैंक जिस तरह से आज सुदृढ़ स्थिति में है, अपने वित्तीय जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका रीढ़ बना हुआ है, तो निश्चित रूप से जब एक अलग तरीके का एक कैटेगरी तैयार हो रहा है पीएम स्वनिधि के माध्यम से, जो निश्चित रूप में एक बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने में सहायता प्रदान करेगा।
1: जी ऐसे में ये बताएं कि जैसा आपने कहा कि किसी ने लोन लिया और समय पर चुका भी दिया, लेकिन या तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या वो ज्यादा जानकारी नहीं है उन्हें अन्य कामों की, लेकिन जैसा आपने कहा कि उनका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा है, साख उनकी अच्छी है, बैंक उन्हें ज्यादा लोन दे सकता है, तो क्या ऐसी भी कोई योजना है कि एक व्यक्ति अगर कोई बड़ा काम न कर पाए तो छोटे छोटे समूहों में मिलकर वो लोन ले और कोई बड़ा काम शुरुआत कर सके उसकी?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत पहले से जो ये कह लें कि अर्बन और रूरल दोनों जगह में लाइवलीहुड मिशन के तहत जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है भारत में, और इसमें मुख्यतः भारत की नॉर्थ ईस्ट, बिहार, यूपी, राजस्थान और अपना जो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह का निर्माण करके जो लोग समूह बना करके लोन ले सकते हैं, और ये शुरुआत में 6 महीने की डेवलपमेंट उनकी ग्रूमिंग होती है कि उनको बैंकिंग प्रणाली की और बैंकिंग लेन देन की समझदारी दी जाती है उनको, उसके लिए लाइवलीहुड मिशन है जो काम करता है बैंकों के हेल्प से, और इसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ा समूह उभर के आ चुका है ऊपर, जो लगभग करोड़ करोड़ के लोन उन लोग को मिल रहा है जब वो लेवल वाइज उठते जाते हैं उससे, तो निश्चित रूप से SHG ग्रुप है और JLG भी है, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, जिसमें नाबार्ड के हेल्प से हम लोग काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये जब समूह बनाएंगे तो बैंक में और सरकार ने योजना दी हुई है जिनकी मदद से वो एंटरप्रेन्योरशिप को और ऊपर ले जा सकते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं।
1: जी व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और उसके लिए सुविधाएं हैं। जी ये बताएं कि आप कौन सा गाना सुनवाना चाह रहे हैं हमारे श्रोताओं को?
0: मैं चूंकि पीएम स्वनिधि के कार्यक्रम में आया हूँ
1: जी,
0: और तो मैं चाहूंगा कि न सर झुका के जियो न मुंह छुपा के जियो।
1: वाह बहुत अच्छा गाना आपने ये चुना है सुनील दत्त साहब का, आपकी पसंद का यही गाना हम सुनवा रहे हैं।

तो श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। योजना की लाभार्थी हमारे साथ हैं बबीता शर्मा जी, और साथ ही हमारे विशेषज्ञ हैं बैंकिंग सेक्टर से, जो बता रहे हैं कि किस प्रकार की योजनाएं और सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं और छोटी छोटी सी प्रक्रियाएं हैं, उनका पालन करते हुए, कुछ नियमों का पालन करते हुए लोग अपना काम करते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, लेकिन जिस पैसे से पैसा कमाया जाता है वो शुरुआती धनराशि जो है वो जुटाना बहुत मुश्किल होता है, और कभी बहुत मिन्नतें करनी पड़ती थी, किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था, और कभी अपनी कोई पसंदीदा चीज छोड़नी पड़ती थी, गिरवी रखनी पड़ती थी, तब धनराशि मिलती थी, तब जाकर लोग अपना काम शुरू करते थे। लेकिन ये सारी जो दुविधाएं हैं इन्हें दूर कर चुकी

0: है पीएम स्वनिधि योजना, क्योंकि अब शुरुआती धनराशि जो है भले ही वो थोड़ी छोटी है लेकिन अपने काम की शुरुआत करने के लिए बहुत जरूरी धनराशि बैंक से मिल जाती है और धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाते हुए अपनी मेहनत के बल पर बैंकों से और धनराशि प्राप्त की जा सकती है, अपने समूह को बड़ा किया जा सकता है और इस तरह से अपने सपने को भी छोटे से बड़ा किया जा सकता है और फिर उसी सपने से जुड़ता है पूरा परिवार, जैसे बबीता जी का परिवार जुड़ा हुआ है। बबीता जी, ये बताएं कि अभी परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और आपके काम से सीधे कौन जुड़े हैं?
1: मैं सबसे अपने श्वेता से हाथ जोड़कर सबसे कहना चाहती हूँ, मेरे परिवार में 3 बेटे हैं मेरे जी। और एक मैं, 4 हम प्राणी हैं
0: जी।
1: मेरा परिवार जिस तरीके से चलता है शायद मैंने कभी उम्मीद नहीं की होगी, ये पीएम सुनिधि योजना से जुड़कर पीएम माने साक्षात पीएम जी मेरे साथ चलते हैं। उस सुनिधि का मतलब है हो गया मेरा सुनहरा पल
0: जी,
1: सुनहरा सफर मेरा चालू हुआ जब मुझे इस योजना से जुड़ने का अवसर मिला। तो आज मैं इस मकाम पर हूँ कि इससे अपने बच्चों की फीस भी भर पाई हूँ और अच्छे कुछ लोग हैं जो मैं गरीब बेटियों की शादी में भी कन्यादान मुक्त दे देती हूँ। और एक एनजीओ है मेरी, ये बात सुनो, तो उसमें कभी कभी 31 बेटियों की शादी भी होती है तो उसमें मैं अपने पूजा का सामान सारा ऐसी भेजती हूँ उनके कन्यादान के लिए
0: जी।
1: मुझे इतनी खुशी है आज शायद उसका फल मुझे आज मिला जब मैं यहाँ इस मकाम पर पहुंची। यार मोदी जी का मुझे थोड़ा उन्होंने मेरा जिक्र जैसे किया है तो मैं चाहती हूँ जैसे आज मेरा जिक्र किया सभी महिला है या पुरुष है इसी योजना का लाभ उठाकर वो भी बन सकते हैं आज
0: जी।
1: मोदी जी के जिगर के करीब आज मैं इतनी खुश हूँ कि नहीं बता सकती हूँ कि मैं आज कितनी मुझे खुशी हो रही है सब लोगों से मिलकर कि इस मंच पर मैं आज पहुंची। तो कहीं ना कहीं पीएम जी की शुभकामनाएं मेरे साथ या उनका साथ मेरे लिए बना रहा। लाभ भारती का मतलब होता है कि लाभ, किस तरह का लाभ, एक मैं लाभ भारती किस लिए भी क्यों इस योजना का लाभ मुझे मिला तो आज मैं लाभ भारती का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मैं आज अपने परिवार को अच्छे से पाल पाई और उनको अपने पैरों पे खड़ा कर पाई और अपनी इज्जत से मान सम्मान अपने माँ बापों का नाम रोशन कर पाई, तो इसलिए सब लोगों का आभार प्रकट करती हूँ
0: जी। तो आपके बेटे जो हैं वो आपके काम में हाथ बटाते हैं?
1: जी, मेरे जब ये कोरोना काल था तो हम तीनों माँ बेटा बड़े दुबक दुबक कर पर्ची लेकर अंदर से सामान दिया करते थे। बेटे मेरे सुबह स्कूल जब जाते थे तो दुकान खोल करके जाते थे तो मैं इतना उनका लंच बना देती थी, तो जब वो स्कूल जाते थे तो मैं दुकान पर बैठ जाती थी, तो जब वो दोपहर को आना 1 घंटे बाद उनको आराम करके तो शाम के टाइम उनको बैठा कर फिर खाना बनाने जाती थी। तो मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चली और मेरे
0: और
1: बच्चों
0: अभी
1: ने
0: मुझे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं
1: जी
0: आपके?
1: मुझे मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया
0: जी।
1: हर बच्चे ऐसे हों जो एक माँ को सपोर्ट करें एक हस्बैंड के जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं मैं सभी बच्चों को ऐसी एक वो देती हूँ, मेरे बच्चों में आज किसी चीज का ऐब या कोई ये नहीं है कि बहुत से बच्चों को देखती हूँ मैं कि माँ जॉब करने जाती है, तो मैंने इस तरीके को रख के देखा कि अगर आज मैं जॉब करने जाऊंगी तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, तो मैंने ये कार्य अपनाया क्योंकि मेरे छोटे बच्चे थे तो उनको बड़ा शौक था, तो 2-2 रुपए की कभी टॉफी लेकर आते थे तो दरवाजे पर रखकर एक स्टूल बैठ जाते थे, तो जैसे हमारी गली है तो उसी में ही सब बच्चों को बुलाकर इतने में उस चीज को बेच देते थे
0: जी।
1: तो मुझे कहीं
0: छोटी उम्र से ही आपने स्वावलंबन सिखाया उन्हें,
1: मुझे ये कहीं ना कहीं लगा कि स्वाभिमानी से भी जीना है और मेरे बच्चे साथ मेरे रहेंगे तो मैं उनको पाल भी पाऊंगी और उनको अच्छे से परवरिश भी दे पाऊंगी, तो इसलिए मैंने जॉब को ना कर कर ये
0: अपना
1: रास्ता
0: काम
1: अपनाया
0: किया।
1: तो इसमें मुझे अच्छा एक रिस्पांस मिला अपने बच्चों से भी, तो सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे आज मेरे बच्चे आज मेरे साथ में सपोर्ट कर बन के खड़े हैं और आज मैं यहाँ हूँ कुछ न कुछ उसमें आज मेरे बच्चों का भी सपोर्ट है, तो सबके बच्चे ऐसी बने और अपनी माँ का नाम रोशन करें और मेरी तरह एक महिला बनके अपने आप में सम्मान को बचा सकती है और पैरों पे खड़ा हो सकती है
0: जी। बहुत सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से बबीता जी मैं आपको देती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये सुनना, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि महिला अपने स्वाभिमान के साथ ये काम कर सकती है और दूसरा आपने अपनी जो कहानी हमें बताई है उससे हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता प्रेरित जरूर हुए होंगे जो जीवन में इस समय कहीं किसी कठिन दौर का सामना कर रहे हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो अपने आसपास के लोगों से मदद मांगिए, उनसे जिक्र कीजिए, क्योंकि हमारे हमारे लिए ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं सरकार की ओर से दी गई होती है, जिनकी कई बार हमें जानकारी नहीं होती और जानकारी के अभाव

0: आव में जो हमारा संघर्ष का समय है वो थोड़ा सा और जटिल लगने लगता है, लेकिन जब मदद का हाथ मिलता है तब हमारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। और बबीता जी इसका साक्षात उदाहरण हमारे सामने इस समय हमारे स्टूडियो में बैठी हैं। बबीता जी, आपसे मैं और बातें करूंगी और आपसे बहुत कुछ जानना है। शैलेश जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, इसने जो अनौपचारिक क्षेत्र है हमारा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जैसे रेडी पटरी वाले और अन्य खोमचे वाले हैं, खोखे वाले हैं, इनको मुख्य धारा की बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का किस तरह का स्वाभिमान दिया है, किस तरह का आत्मविश्वास इस योजना ने दिया है?
1: यह योजना एक तरीके से कहें तो बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है
0: जी,
1: क्योंकि ऐसे जो वो मनी लेंडर या जो बाजार में जो लोग उधार देते हैं, अब वह काफी महंगा होता है और उनके वसूली की प्रक्रिया भी काफी कठिन होती है
0: जी।
1: और ऐसे में ये बिल्कुल ही सरल है और इससे ना ही उसमें उनमें केवल आत्मनिर्भरता आई है, स्वावलंबन आया है, इसको हम लोग स्वनिधि से समृद्धि की ओर का भी एक हम लोग देख सकते हैं कि रास्ता तैयार हो रहा है। और जैसा कि राजेश जी ने कहा कि आगे अगर वो मुद्रा योजना का भी लाभ लेते हैं
0: जी,
1: तो हम केवल यहाँ पे स्वरोजगार की बात नहीं है, यहाँ पे आप रोजगार का सृजन भी करते हैं और समाज के दूसरे लोगों को भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं
0: जी।
1: तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि इस छोटे से स्वनिधि से आप प्राप्त कर सकते हैं और यह बैंकरों को भी काफी संतोष और खुशी प्रदान करता है कि मात्र 15,000 रुपये के ऋण से शुरुआत करके वो हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो यह सबके लिए, जिसको कहते हैं विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, ये सभी के लिए काफी अच्छा है, देश के लिए, समाज के लिए, बैंक्स के लिए, सबके लिए अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुख्य धारा में जुड़ें और देश की आर्थिक विकास में सहयोग करें
0: जी। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा कहा जाता है कि कई बार जो आर्थिक परेशानियां होती हैं वो व्यक्ति को किसी न किसी अपराध की तरफ भी धकेल देती हैं, तो आपका क्या विचार है इस बारे में कि जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ते हैं, एक डेटा तैयार होता है, तो क्या इससे अपराधों में भी कमी आई है?
2: निश्चित रूप से, जब रोजगार के अवसर नहीं होते हैं तो भटकाव एक बहुत सारे ऐसे तत्व हैं हमारे समाज में जहां पर कि लोगों को ध्यान आकर्षित करते हैं और कुछ बह जाते हैं उसमें। निश्चित रूप से पीएम स्वनिधि योजना, इसमें 18 वर्ष से ऊपर जो ऋण के लिए पात्रता होती है उन सबको एक अवसर दे रही है कि वो किस तरह से अपना रोजगार, स्वरोजगार आरंभ कर सकते हैं और उसके लिए कि स्वनिधि से समृद्धि की तरफ, तो बहुत ही अच्छा एक अवसर है कि वो सारे युवा, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, या जो भी इसमें योग्यता पात्रता के हिसाब से हैं, इसका लाभ उठा करके निश्चित रूप से इस अपराध के जो अवसर थे उसमें कमी आई है और लोग रोजगार की तरफ बढ़े हैं, अपने जीवन के स्वावलंबन की तरफ बढ़े हैं
0: जी। बबीता जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब सबसे पहले आपको लोन की पहली किस्त मिली तो क्या बदलाव आया, उसका आपने क्या किया?
3: मैंने उसका, उस टाइम पे मेरा काम बंद था तो उसमें अपना सामान उठाकर अपनी दुकान में लगाया और व्यापार मैंने अपना चालू किया
0: जी।
3: तो ये अभी सर ने बोला कि 5,000-15,000 का मतलब नहीं है, अगर मुझे लगन और मेहनत, एक मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, मेहनत करना मेरे पापा ने सिखाया और हिम्मत और साथ मेरे पीएम जी ने मुझे दिया, तो मुझे दोनों को मिलकर मेरी हिम्मत बनी। तो मतलब 5,000 से नहीं होता, मतलब होता कोशिश करने से। 10,000 से मैंने कोशिश की तो मैं यहाँ तक पहुँची
0: जी।
3: तो 10,000 का अगर किसी इंसान को अगर लगन हिम्मत होगी तो 10,000 पे से अपना व्यापार चला सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें 1-2 लाख रुपए चाहिए, 5,000 से भी बिजनेस चालू कर सकते हैं, लेकिन एक जुनून होना चाहिए
0: जी। और आपको जो ऋण आपने चुकाया बैंक को, वापस दिए पैसे, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई?
3: नहीं, मेरा पेटीएम से लेन देन होता है तो जब मेरा कारोबार बढ़ा तो उसमें किस्त अपने आप ही उससे ही कट जाती है
0: जी। और अब आप क्या सोच रही हैं आगे?
3: अगर पीएम सुनिधि जी का मुझे साथ मिला और ऐसे सर मेरे सामने बैठे, इनका हाथ जोड़कर वो करती हूँ, धन्यवाद जो ऐसे लोग हम लोगों के लिए सेवा में लगे हैं
0: जी,
3: मौका मिला तो कुछ अच्छा कर पाऊँ और आप लोगों के बीच दोबारा आ पाऊँ यही निवेदन करती हूँ।
0: तो बबीता जी आपका ये हौसला बना रहे, हम यही चाहेंगे। ये बताइए कि आप अपनी पसंद का एक और

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स ही विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस प्रणाली

0: परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने कल मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के 2 दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जूनियर महिला हॉकी टीम को एशिया कप का टाइटल बचाने के लिए बधाई दी है। उन्होंने जूनियर पुरुष हॉकी टीम को भी फाइनल में 4-1 से शानदार जीत के साथ एशिया कप जीतने के लिए बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह शानदार जीत युवा खिलाड़ियों के असाधारण टैलेंट, अनुशासन और पक्के इरादे को दिखाती है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीत सिंह। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत फिल्म पतंग से। संगीत था चित्रगुप्त का और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। ये फिल्म आई थी 1960 में और इस फिल्म को इस फिल्म का निर्देशन किया था हरगोविंद दुग्गल और सूरज प्रकाश ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, उल्हास, अचला सचदेव, रणधीर, राज मेहरा और मनोरमा ने। इस फिल्म की कहानी राजन यानी राजेंद्र कुमार की कहानी है, जो शांति नाम की एक ऐसी लड़की की मदद करने की कोशिश करता है जो आंखों से देख नहीं सकती, और उस संघर्ष को बहुत ही उस प्रेम को बहुत ही सुंदर तरीके से इस फिल्म में दर्शाया गया है। और अगला गीत रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

फिल्म का नाम बहू बेगम और आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। ये फिल्म आई थी 1967 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था एम सादिक ने। फिल्म में अभिनय किया था प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, अशोक कुमार ने और फिल्म को संगीत से सजाया था रोशन साहब ने और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है फिर से रफ़ी साहब की आवाज़ में।

मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 1:33 और 10 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में।

फिल्म का नाम दिल एक मंदिर और आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। ये फिल्म आई थी 1963 में और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन किया था सीवी श्रीधर ने और इस फिल्म की पटकथा लिखी थी राज बलदेव राज ने और इस फिल्म में अभिनय किया था राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, राजकुमार और महमूद ने। संगीत शंकर जयकिशन का था और इस फिल्म के सभी गीत हिट हुए थे और सभी को पसंद भी आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और पांचवें स्थान पर रही थी। अगला गीत लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ में।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत, फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब, और ये फिल्म आई थी।

1961 में, और इस फिल्म को लिखा, निर्मित और निर्देशित किया था नासिर हुसैन ने। ये नासिर साहब की पहली फिल्म थी जिसका उन्होंने निर्माण किया था। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद और आशा पारेख ने। प्राण ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। राजेंद्रनाथ सहायक भूमिका निभाई थी। और इस फिल्म का संगीत काफ़ी सराहा गया था दर्शकों के द्वारा। और अगला गीत रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

वक्त हुआ है 1:51 और 10 सेकेंड और आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। मैं हूं आपके साथ मंजू और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए दिशा स्पष्ट करेगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुख

0: प्रमुखों के साथ 15 बैठकें कीं। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी कीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने कल मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 183 रन बनाए। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जूनियर महिला हॉकी टीम को एशिया कप का टाइटल बचाने के लिए बधाई दी है। उन्होंने जूनियर पुरुष हॉकी टीम को भी फाइनल में 4-1 से शानदार जीत के साथ एशिया कप जीतने के लिए बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीत सिंह। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. The External Affairs Ministry said the BRIC summit in New Delhi produced a number of concrete and development-oriented outcomes. Briefing the media in New Delhi, Secretary Economic Relations in the Ministry, Sudhakar Dalela, said more than 50 concrete outcomes had been achieved across various thematic tracks, describing this as a significant achievement of India's BRICS chairship.
3: India's chairship has focused on deliverables. The summit has endorsed a substantial package of outcomes across our four priority pillars. There are concrete over 50 outcomes across various thematic tracks, which is a significant achievement of India's chairship this year.
1: Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Union Home Minister Amit Shah will address the inaugural session of Hindi Divas 2026 and the 6th All India Official Language Conference in Mumbai today. The two-day conference, organized by the Department of Official Language under the Ministry of Home Affairs, will bring together scholars, literateurs, educationists and senior government officials to discuss the promotion of Hindi and its coordination with other Indian languages. India has condemned the attack on the commercial vessel MT El Gaia off the coast of Oman. In a statement, the Indian Embassy in Oman said 13 Indian crew members have been rescued so far, while search and rescue operations are continuing for one missing Indian national. The embassy said it is closely monitoring the situation and coordinating with Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. It also thanked the Omani authorities for their support in rescuing the Indian nationals. Diplomatic efforts are gaining renewed focus as the ongoing US-Iran conflict continues to affect the Gulf region. Iran and Gulf countries are expected to meet in Oman today to discuss the Strait of Hormuz and broader regional security. Iran has said it has reached an understanding with Oman on a possible entry and exit route through the strait. However, an immediate reopening of the strait appears unlikely, as Iran has linked it to the US agreeing to its conditions. In women's cricket, India defeated Sri Lanka by 72 runs in the final of the Women's T20 Asia Cup in Dubai tonight. Batting first, India scored 183 for 5 in 20 overs, while Sri Lanka managed 111 for 7 in their 20 overs. And with that, we end this news bulletin.

रात के 2 बज रहे हों और मैं किसी के दिमाग में चल रही हूँ। रात के 2 बज रहे हों और मैं किसी के दिमाग में चल रही हूँ, एक बहुत सुंदर याद की तरह भी। तब भी मैं कहूँगी ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इतनी ज़रूरी मैं कभी ना बनूँ कि किसी की नींद की जगह ले लूँ। सादिश पिलो 1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 7 सेकंड। रात सुरमई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई जहां हम अपने दिल के एहसास को, जज्बात को गीतों से, बातों से समझने की, समझाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गज़ल के साथ। आवाज़ है जगजीत सिंह की।

अगर मेरे आने से आपके चेहरे पर स्माइल आई है तो फिर इस स्माइल का साइज थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको तो मालूम ही है जब आप मुस्कुराते हैं तो मेरे साथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। और आज मैं आपके लिए सदाबहार गानों के साथ साथ प्यार भरी बातें लेकर आई हूँ। तो अगला गीत आप ही के लिए, रफ़ी साहब की आवाज़ में।

फूल तो मैं आप तक नहीं भेज सकती, लेकिन हाँ प्यारी प्यारी बातें आप तक ज़रूर पहुँचेंगी, ऐसा वादा ज़रूर रहा। और वैसे भी फूलों का साथ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता, और मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि खुशबू से पीछा छुड़ाना आसान होता है, बस वो आवाज़ें हैं जो पीछा करती हैं। अगला गीत आप ही के लिए।

तुम्हारे बाद तुम नहीं आते, तुम्हारे बाद तुम नहीं आते, दुख आता है और खटखटाता है मेरे मन की सांकल, मन के खुलते ही भर भर आते हुए गिर पड़ती हैं यादें, मुंदी आंखों में कलपता है कोई दिन, कोई साल, कोई शहर रह रहकर। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 2:35 और 20 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।

गानों में कहना कितना आसान हो जाता है ना कि दो लफ्ज़ों की कहानी है इश्क और कुछ नहीं है, जबकि कई बार पूरी ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो जाती है और हम सामने वाले को या सामने वाला हमें समझा नहीं पाता है ना। कई बार क्या होता है कि हम वक्त रहते हम सामने वाले को समझा नहीं पाते, और जब समझाने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला समझना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में हमें ऐसा लगता है कि हम अपना खालीपन, जो इंसान जा चुका है, हम अपना खालीपन उसके पास बार बार लेके जाते हैं, लेकिन उस इंसान ने उस खालीपन को भरा है या नहीं भरा ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए अब कोई जगह

उसके पास है ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इसे लोग समझते ही नहीं है। कोशिश पे कोशिश करते हैं, जो एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये एक बौद्धिक विकार है, एक बौद्धिक असंतुलन है। इसलिए इश्क को समझने के लिए पूरी जिंदगी नहीं, समय रहते समझना चाहिए। अगला गीत आप ही के लिए।

नीले नीले अंबर में चांद के साथ साथ हम भी आपसे मुखातिब हैं और बातें हो रही हैं इश्क की, मोहब्बत की और दिल की। और जब बात दिल की हो और इश्क कबूल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अगला गीत आप ही के लिए।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी कि 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी माधुरी। मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर वैश्विक नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। भारत इस महीने की 15 से 18 तारीख तक गुजरात के गांधीनगर में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 की मेजबानी करेगा। ये

0: प्रोग्राम सर्कुलर इकोनॉमी लोगों और समृद्धि के लिए बदलाव थीम के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मिलकर मंगलवार को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनमें उद्योगपति, उद्यमी, नवोन्मेषक, शोधकर्ता, नीति निर्माता और शिक्षा भी शामिल हैं। ये फोरम ग्लोबल साउथ के साथ साथ सहयोग, निजी निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा देगा। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के 2 दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले रिकर्व तीरंदाज धीरज बोम्मदेवरा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कल मेक्सिको के साल्टिला में रोमांचक शूट ऑफ में जापान के नाकानिशी जूनिया को हराकर तीरंदाजी के विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनने पर गौरव हासिल किया।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीत सिंह। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS groupings as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Union Home Minister Amit Shah will address the inaugural session of Hindi Divas 2026 and the 6th All India Official Language Conference in Mumbai today. The two-day conference organized by the Department of Official Language

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। और हमराही वो कार्यक्रम है जिसमें हम खास तौर पर लेकर आते हैं डुएट सॉन्ग। जी हाँ, युगल गीतों की खास पेशकश।

शतरंज फिल्म से ये गीत पहुंचा आप सभी तक मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ों में, शंकर जय किशन के संगीत से सजा था ये गीत। तुम ठहरो और फिर किसी मंजिल की जल्दी न रहे, तुम रुको और फिर किसी सफ़र की ख्वाहिश न रहे, तुम बैठो जैसे सारी थकान को कंधा मिल गया हो, तुम खो जाओ मगर दुनिया में नहीं मेरे होने में। कितना खूबसूरत है ये लम्हा जिसमें ये सब कुछ कहा जा रहा है, जिसमें तुम हो, जिसमें मैं हूँ और जिसमें ख्वाहिशों का एक मेला है।

ये खूबसूरत सा गीत आप तक पहुंचा फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से, आशार मोहम्मद रफी की आवाजों में ओपी नैयर के संगीत के साथ। कितना खूबसूरत होता है किसी का यूं ठहरना, बैठना, उलझना और उसमें फिर खो जाना, कुछ लम्हों के लिए नहीं, उम्र भर के लिए। बस एक दूसरे में ऐसे ठहर जाएं जैसे दुआ में सुकून ठहर जाए और सुकून में हर वो चीज़ मिल जाए जो बस ख्वाबों में सोची थी। और ऐसा ही साथ हमारा और आपका है कि लगता है कि ये जो दामन है ना, ये कभी नहीं छूटेगा।

हमारे ख्वाब तुम्हारे, फिल्म से ये गीत सुना आप सभी ने, मदन मोहन का संगीत आशार मोहम्मद रफी की आवाजों में। सब कहते थे संभल जाएगा ये दिल एक दिन, फिर वो दिन भी आया और रात ढल गई। लोग बदल गए, उनकी बातें बदल गईं, पर मेरी यादें वहीं की वहीं ठहर गईं।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है हमराही का, जिसमें आपको हम सुनवाते हैं खास युगल गीत। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो गीत आप तक पहुँच रहे हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे। समय हो गया है सुबह के 3:29 और पूरे 30 मिनट हो चुके हैं अब, और अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म नीला आकाश से।

जी हाँ, फिल्म नीला आकाश से ये गीत आप तक पहुंचा मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ में मदन मोहन के संगीत के साथ। अगर बहुत दूर तक साथ चलना है तो याद रखना, हर मोड़ पर एक दूसरे को समझना होगा। कई बार अपने क्रोध को, अपने गुस्से को त्यागना होगा और बहुत बार एक दूसरे को माफ़ करना होगा। यही प्यार, सम्मान और एक दूसरे को समझना ही तो प्यार है।

ये गीत आप तक पहुंच रहा था फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से, लता और किशोर के आवाज़ों में, खयाम के संगीत के साथ और बोल लिखे गुलजार ने। तुम साथ हो तो ऐसा लगता है जैसे अधूरी ख्वाब जो हैं वो सब पूरे हो गए। मोहब्बत चेहरे से नहीं दिल से होती है, इसलिए सच्चा प्यार हमेशा हमेशा खूबसूरत होता है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है हमराही का जिसमें मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ, और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं फिल्म जाने अनजाने से।

सच में प्यार का तीर कब किसे घायल कर दे ये कहाँ पता चलता है। और ये प्यारा सा गीत हम सभी ने सुना फिल्म जाने अनजाने से मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ों में, शंकर जय किशन के संगीत से सजा था ये गीत। प्रेम की सबसे खूबसूरत बात यही तो है कि इसे जानबूझ के शुरू नहीं किया जा सकता। न जाने कहाँ दो अनजान दिल मिल जाएं और बात बन जाए, न जाने कौन सी किसी की बात आपको समझ आ जाए, प्यारी लग जाए और फिर दिल उसी ओर बढ़ता चला जाए। हो सकता है प्यार में देरी हो जाए, हो सकता है आपको प्यार जल्दी मिल जाए, लेकिन हाँ कभी कभी ये भी होता है कि इसके आस में उम्र भी गुजर जाती है। लेकिन प्यार सिर्फ एक ही चीज़ से थोड़ी होता है, बहुत सारी चीज़ों से होता है। बस मन को कहीं लगा कर देखिए।

ये वादा तो हमने भी निभाया है। और ये जो गीत आपने सुना फिल्म जॉनी मेरा नाम से था, किशोर और आशा की आवाज़ में कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो वादा हमने यूं निभाया कि देखिए हमराही का ये पूरा कार्यक्रम युगल गीतों से सजा हुआ आप तक पहुंचाया, और ये आखिरी गीत भी आप तक पहुंच रहा है। इस गीत के बाद अगले कार्यक्रम में हम मिलेंगे 4:10 पे, अरुणिमा लेकर आऊँगी मैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन में आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दो दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और उसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आज से विकासशील देशों के लिए मानव अधिकारों पर 6 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम ITEC के अंतर्गत आयोजित होने वाले इस सत्र में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। इसका उद्घाटन NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति VRamana Subramanian करेंगे। आयोग के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागी देशों के मानव अधिकार संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करना और बेहतर तौर तरीकों के अनुभवों को साझा करना है। भारत कल से 18 तारीख तक गुजरात के गांधीनगर में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करेगा। ये फोरम सर्कुलर इकोनॉमी लोगो और समृद्धि के लिए बदलाव थीम के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Navneet Singh. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, "BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions." He said their discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
2: Earlier, in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping, as pandemics, climate disasters, and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. The External Affairs Ministry said the BRICS summit in New Delhi produced a number of concrete and development-oriented outcomes. Briefing the media in New Delhi, Secretary Economic Relations in the Ministry, Sudhakar Dalela, said more than 50 concrete outcomes had been achieved across various thematic tracks, describing this as a significant achievement of India's BRICS chairship.
3: India's chairship has focused on deliverables. The summit has endorsed a substantial package of outcomes across our four priority pillars. There are concrete over 50 outcomes across various thematic tracks, which is a significant achievement of India's chairship this year.
2: Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Union Home Minister Amit Shah will address the inaugural session of Hindi Divas 2026 and the 6th All India Official Language Conference in Mumbai today. The two-day conference, organized by the Department of Official Language under the Ministry of Home Affairs, will bring together scholars, literators, educationists and senior government officials to discuss the promotion of Hindi and its coordination with other Indian languages. President Draupadi Murmu has extended greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. In her message, she said, "Lord Ganesha symbolizes wisdom, prosperity and auspicious beginnings." The President prayed that Lord Ganesha brings happiness, peace, good health and prosperity to everyone. India has condemned the attack on the commercial vessel MT El Gaia off the coast of Oman. In a statement, the Indian Embassy in Oman said 13 Indian crew members have been rescued so far, while search and rescue operations are continuing for one missing Indian national. The embassy said it is closely monitoring the situation and coordinating with Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. It also thanked the Omani authorities for their support in rescuing the Indian nationals. In women's cricket, India defeated Sri Lanka by 72 runs in the final of the Women's T20 Asia Cup in Dubai last night. Batting first, India scored 183 for 5 in 20 overs, while Sri Lanka managed 111 for 7 in their 20 overs. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the first T20 international of the three-match series in Delhi last night, chasing a target of 157 set by Afghanistan. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा के सफर में मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ। मुश्किलें तो हम सभी के जीवन में आती हैं, पर वो कमजोर पड़ जाती हैं जब आपको मजबूत पाती हैं।

जिंदगी बहुत ही प्यारी है, बस ये यूं ही ख्यालों में खिलती रहे, फूलों सी महकती रहे और ये महक हमारे साथ साथ चलती रहे। ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म मशाल से किशोर कुमार की आवाज़ में।

सागर तो खुद शक्ति का प्रतीक है और सागर के सामने जब खड़े होते हैं उसकी लहरें आती हैं जाती हैं, छोटी बड़ी सब जिंदगी का राग सुनाती हैं। सागर फिल्म से ही ये गीत सुन रहे थे आप किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में आर डी बर्मन के संगीत के साथ।

याराना फिल्म से गीत सुन रहे थे आप किशोर कुमार की आवाज में। अगर नीयत अच्छी हो ना तो नसीब भी बुरा नहीं होता। जीवन में किसी को प्यार देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्यार पाना सबसे बड़ा सम्मान।

अमर प्रेम फिल्म से ये गीत सुना आपने, किशोर कुमार की आवाज़ में आर डी बर्मन का संगीत। कुछ तो लोग कहेंगे, बल्कि लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, और उस कहने पे शायद हमें गुस्सा भी आ जाए। हो सकता है हमें बुरा ना लगे, लेकिन जब बुरा लगे तो आपको जाहिर सी बात है सबको आता है, और बुरा लगना भी एकदम कायदे का अमल है। लेकिन ये जो गुस्सा और ये जो बुरा लगना है ना, ये हमारी अच्छाइयाँ ले जाता है। वहीं सब्र भी अकेला ही होता है, लेकिन हम में सारी अच्छाइयाँ भर देता है। यानी गुस्सा जहाँ हमारी अच्छाइयों को निकालता है, सब्र वो सब कुछ लौटा देता है। तो जब भी गुस्सा आए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा, देखिएगा चीज़ें जो हैं वो पलट जाएंगी, आपके हक में हो जाएंगी।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है भोर अरुणिमा का और साथ में हूँ मैं माधुरी। समय हो गया है 4:41 और 32 सेकंड।

रात के इस पहर में अब क्या कहूँ कि हम मुसाफिर हैं, एक कश्ती के दोस्त बन जाएं तो बुरा क्या है। अभी सोचा है खुश रहें, देखे तकदीर में लिखा क्या है।

किस्मत फिल्म का ये गीत आपने सुना येसुदास की आवाज में। खिलते हुए फूल जितने सुंदर लगते हैं उसी तरह खूबसूरत दिखते हैं हंसते मुस्कुराते लोग। वैसे तो लोग खुशियों का राज ढूंढने में लगे रहते हैं, पर खुशी का कोई राज नहीं होता, ये तो एक तरीका है जीने का।

और इसी के साथ अरुणिमा से वक्त इजाजत लेने का वक्त आ गया है। आप बने रहिए आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दो दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC आज से विकासशील देशों के लिए मानव अधिकारों पर 6 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम ITEC के अंतर्गत आयोजित होने वाले इस सत्र में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। इसका उद्घाटन NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन करेंगे। आयोग के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागी देशों के मानव अधिकार संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करना और बेहतर तौर तरीकों के अनुभवों को साझा करना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में बहुत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत का आज पहला दिन है। इस दौरान लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियां स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार हमारे जीवन में ऊर्जा, ज्ञान और सकारात्मकता लाता है। उन्होंने कहा कि ये पवित्र पर्व सभी को जीवन में नए संकल्पों के साथ तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कामना की कि भगवान गणेश सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और शांति लाए। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भोर सुहानी लेकर माधुरी है आज आप सभी के साथ। सुप्रभात।

बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ले आते हैं।

जिंदगी में आप कितनी ही बार हारें, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। बहुत सारी हार के बाद मिली हुई जीत भी सबसे अनमोल होती है।

अगर आप में हिम्मत का जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। न मायूस हो न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रास्तों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है भोर सुहाने का, जिसे लेकर आज की सुबह मैं हूँ आपके साथ माधुरी। और एक बार फिर जब उठ गए हैं हमारे सारे श्रोताओं, सभी को इस नई सुबह की मुबारकबाद, सुप्रभात।